ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली और प्रातःकालीन सभा अब मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने जा रहे हैं, अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: पर सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आज का विचार। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे संयम रखना सीखें विषय पर विचार। वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
1: धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। श्रोताओं, ये दुहा हमें संयम रखने के प्रति जागरूक करने वाला दुहा है। संयम बहुत बड़ी शक्ति है। धीर मन और अधीर मन दो भिन्न भिन्न दशाएं हैं। जब मन धीरता को धारण करता है तो वो बड़े बड़े संकटों, मुसीबतों, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए रास्ता खोल देता है। और जीवन में हम खोजते ही क्या हैं? हम जीवन में रास्ता ही तो खोज रहे हैं। कौन सा रास्ता मिल जाए जिससे उस पार पहुंचा जा सके। लेकिन इसमें जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। एक बंदर और कछुए ने बगीचा लगाया बराबर बराबर। बंदर रोज पौधों को उखाड़कर फल देखता कि लगे हैं या नहीं लगे। नहीं मिलने पर पौधों को वापस रोप देता, लेकिन कछुआ धीरज से पौधों को पानी देता रहा, निराई गुड़ाई सब कुछ करता रहा। फसल के दिन बंदर की फसल 0 और कछुए की फसल 100% उपलब्ध हुई। हमें कर्मों की खेती करनी होती है, लेकिन बंदर की तरह करेंगे तो सब व्यर्थ चला जाएगा। हमें कछुए की तरह धीरज को धारण कर फसल उगानी होगी, तभी जाकर हम सफल हो सकते हैं। धीरज बड़ा गुण है, मन में संयम रखने से पैदा होता है। बिना इसके सारा काम बेतरतीब और बिखरा बिखरा हो जाता है। संयम अकेला नहीं आता, संयम के साथ हिम्मत, धैर्य, आत्मविश्वास आदि आदि गुण भी चले आते हैं और साथ ही चले जाते हैं। धीरज संयम से पैदा होता है। अगर हम अपने बेसब्रेपन से धीरज खो देंगे तो संयम नहीं रख पाएंगे। बिना संयम के कोई भी काम उल्टा पुल्टा होते देर नहीं लगती। संयम एक सतत साधना है। यह इंद्रियों कर्मों की बजाय स्वभावगत ज्यादा होती है। हमारा स्वभाव कैसा है, इसी बात पर संयम के पैर टिके हैं। आमतौर पर हमारा स्वभाव चंचल होता है। चित्त का प्रधान गुण चंचलता होता है। चंचल मन स्थिरता पूर्वक निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप किसी भी काम में लगते हैं तो श्रद्धा और सबूरी के साथ लगें। सब्र का दामन छलका नहीं कि काम की असफलता की गारंटी बन जाती है। सुनार धीरज से गहने बनाता है, तभी बारीक से बारीक काम को अंजाम दे देता है। लोहार धीरज से काम लेता है, घन की चोट का प्रयोग करते हुए लोहे के यंत्रों का निर्माण कर देता है। सबसे बड़ी बात जो इस संदर्भ में करनी है वो है छात्र जीवन की क्रियाविधि। एक छात्र एक वर्ष में एक कक्षा उत्तीर्ण करता है। अगर वह सब्र और संयम से रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अभ्यास करेगा तो मानकर चलिए उसने आधी सफलता तो प्राप्त कर ही ली। शिक्षा के क्षेत्र में संयम साधना एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें विद्यार्थी को लंबी अवधि तक धीरज और एक मना रहना होता है, जिसमें क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है। इसी क्रमबद्ध साधना के कारण छात्र की स्मृति तेज हो जाती है और कोई भी अधूरा पाठ आसानी से पूरा हो जाता है। छात्र जीवन के अलावा खेलों की दुनिया में भी संयम और धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से क्रिकेट का बल्लेबाज क्रीज के अंदर बंद तूफान की तरह रहता है। वहाँ पर जरा सी जल्दबाजी, जरा सा बेसब्रापन पूरी बाजी को ही पलट देता है। इसलिए मित्रों, आइए हम इस नित्य प्रति के जीवन संयम और धीरज को अपनाएं, ताकि हमारे कामों पर सफलता की मोहर लगे, असफलता का कलंक नहीं।
0: अभी आप सुन रहे थे संयम रखना सीखें विषय पर विचार। वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। इसी के साथ कार्यक्रम आज का विचार यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल आप सुन रहे हैं। सुबह के 6:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये पहला भजन हम

ये भजन अभी आपने सुना नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ में। लीजिए कार्यक्रम वंदना में ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के स्वर में।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 6:30 होने को है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप इसमें सुनेंगे बालकांड के दोहा संख्या 218 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 220 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर है शोभा जोशी का और संगीत है सतीश भाटिया का।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्रीराम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

मानस गान आज आपने इसमें सुना बालकांड के दोहा संख्या 218 से 220 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर था शोभा जोशी का और संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 6:40 हुए हैं और ये समय है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके विवरण का।

0: हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से रात्रि 10 बजे सुनना न भूलेगा कार्यक्रम आपनों राजस्थान। इसी केंद्र से शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और दोपहर 12:10 पर सुन सकेंगे सिंधी कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से अब से कुछ ही देर में सुनिएगा कार्यक्रम खेती की बातें और ठीक 7 बजे सुनना न भूलिएगा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आज कार्यक्रम विशेष रहेगी एक भेंट वार्ता जिसका विषय रहेगा ओरल हाइजीन और इससे जुड़ी भ्रांतियां। इस विषय पर डॉक्टर अंशुल गुप्ता से श्रीमती मीनाक्षी मलिक की बातचीत आप सुनेंगे। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। 7:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम सौरभ सुनना न भूलिएगा 8:30 पर और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कविता पाठ कवित्री डॉक्टर रेणुका व्यास को। 8:45 पर रेडियो का सफरनामा आप सुनेंगे जो कि आधारित है श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर। लोक संगीत का समय रहेगा 9:10 से और वहीं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे सुनना ना भूलिएगा फिल्म संगीत और 11 बजे से फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम जारी रहेगा लेकिन इसमें आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। दोपहर 12:40 पर एक बार पुनः हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत और दोपहर 1:05 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज चर्चा रहेगी पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, ग्रामीण युवतियों के लिए करियर काउंसलिंग, मानसून से पूर्व की तैयारी, जल संचयन और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती के बारे में। वहीं कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स रसोई और ब्यूटी टिप्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का समय रहेगा 2:30 पे और हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:05 पर। आज की बात में इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी करियर का चुनाव सोच समझ कर करें। लघु जानकारी में विषय रहेंगे विविधताओं का देश भारत, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान और नमक उद्योग मैक्लोडगंज पहाड़ों का शहर, और इसके साथ कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स रोजगार समाचार और क्विज टाइम रहेंगे। फिल्म संगीत सुनना ना भूलिएगा शाम 6:05 पर और ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7 बजे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी मूंग की उन्नत किस्में, बीज दर व बीजोपचार, बरसात से पूर्व टीकाकरण जरूरी, जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, अपना गांव बने हरा भरा गांव, और इसी के साथ कार्यक्रम के रेगुलर सेगमेंट्स लोकगीत, मौसम की जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सुगम संगीत का समय रहेगा 7:45 से और फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 8 बजे से। लोक संगीत सुनना न भूलिएगा 8:30 से और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे एक बार पुनः फिल्म संगीत। 9:30 पर भेंट वार्ता सुनना ना भूलिएगा वरिष्ठ साहित्यकार मालचंद तिवाड़ी से डॉक्टर नमामि शंकराचार्य की बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास, संयोजन श्री अमित सिंह और 9:53 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सुगम संगीत में गजलें। श्रोताओं ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका विवरण। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज आप इसमें सुनेंगे अधिक दूध उत्पादन हेतु आवश्यक बातें। वाचक स्वर होगा श्री बजरंग सारस्वत का।
1: पशुपालन सु किसान बयाने मोकड़ा लाभ है। इन्हें खेती रे सागे सागे अपा आसानी सु कर सका है। घर्रा सगड़ा सदस्य इरमाय ने अपारी सहायता करे है। पशुपालन रो उचित लाभ अपा ने जदी मिले जद पशु चोखी मात्रा में दूध देवे और दूध में फैट है यानी कि वसा या चिकनाई कह सका है जिकी अच्छी मात्रा में हुए क्योंकि बाजार में दूध चिकनाई रे आधार पर ही बिके है। इस वास्ते अपा ने जरूरी है अच्छी नस्ल रा दुधारू पशु अपा

0: खरीदा। दूध रो बत्तो उत्पादन होना अरबी में फैट रो घना होना दुधारू पशु री नस्ल है बीरे माथे आधारित होवे है। आ बात थाने पशु खरीदती वेला ध्यान रखनी पड़ेला। इर वास्ते आप पुराना पशुपालक है या पशु वाला जानकार या पछे पशु चिकित्सक आ सबसु आप सलाह ले सको हो। अब बात करा दूध उत्पादन कम होने रा कारण री, तो कारण है एक तो संतुलित आहार री कमी होवे पशु में जद वो दूध कम देवे, या बीरी देखभाल में कमी होवे, या बीरे बच्चेदानी री खराबी या दूजी बीमारी होवे, या पछे टीका लगाने रो साइड इफेक्ट हुए, या चारे पानी रे प्रबंधन में कोई कमी होवे तो दूध में कमी हो सके है। अब बात करा पशुवारो संतुलित आहार काई किसो होनो चाहिए। थाने पशुवारी नस्ल वीरी कद काठी और दूध देने री क्षमता रे अनुसार संतुलित आहार देनो चाहिए। कई खास बात आपा ध्यान में लावा तो पशुआ ने संतुलित आहार में 60% हरो चारो और 40% सूखो चारो या दाणो या खड़ मिलार बाने खावण ने देना चाहिए। जे हरो चारो देवा तो भी में घास हरी घास या बरसीम देनी चाहिए और सूखे चारे में गेहूं मक्को ज्वार बाजरो आ सबरो मिश्रण बनार भूसेर सागे देनो चाहिए और सागे ही पशुआ ने दिन में 30-40 लीटर या वारी उचित आवश्यकता रे अनुसार पानी पिलावण ने देनो चाहिए। दुधारू पशुवारो दूध बढ़ाने वास्ते गाय ने हर रोज 5 किलो खड़ चूरी या चापड़ दोनों टाइम रो मिलार या भैंस ने रोज रा दोनों समय रो मिलार 10 किलोग्राम चाटो या बांटो खावण ने देनो चाहिए। पशुआ ने सरसों अलसी या बिनोलरी खल देवनी ठीक रहे। खड़ देवण सु दूध बढ़े है, सागे दूध में फैट री मात्रा में बढ़ोतरी हुए है और खनिज लवण रे रूप में 2 किलोग्राम नमक या दूजो साधारण नमक 1 किलोग्राम आपने मिलावणो है। प्रति 100 किलोग्राम चूरी चापड़ या खड़ भी 100 किलो चूरी चापड़ खड़ रे महीने मिलार आपने 1 किलोग्राम नमक मिलावणो है या 2 किलो खनिज लवण देवना है। वे आपा देवा तो पशुवारो हाजमो सही रेवे और पशु पानी बत्तो पीवे और सागे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होवे। खड़ देवा जिकी टाइम आपने ओ ध्यान रखनो है के सर्दी रे मौसम में आपा रात भर खड़ ने बिजोर और दिनों गेरी वेला आपा पशु ने दुण पहली या भी वेला ही आपा खावण ने देवा है। गर्मिया में अड़ो करनो को नहीं है, दूध दुवण सु 2-3 घंटा पहले ही खड़ बिजोनी है और वो ध्यान रखनो है कि खड़ अच्छी तरह गलर नरम हो जावे तो ठीक रहे। अब बात करा दूध बढ़ाउन सारू और फैट बढ़ाउन सारू कई सुझावारी। दुधारू पशुआ में दूध और फैट बारी नस्ल री सीमा सु आपा बत्तो को नहीं बढ़ा सका नहीं। फिर भी जे कोई पशु आपरी नस्ल री विशेषता सु कम दूध या फैट देव तो लागे तो बिन दूध ने फैट ने बढ़ाने वास्ते कई सुझाव इन भांत हो सके है। पशुआ ने रात रा विश्राम वास्ते आपा बांधा तो 250 मिलीलीटर यानी 1 पाव सरसों रे तेल ने 500 ग्राम गेहूं रे आटे में मसल बिने बोज को आटो है सरसों रे तेल उ मसलोड़ो वो पशु ने खावण वास्ते देनो चाहिए। बीरे पछे पीवण आलो पानी देनो कोनी है। आ बात विशेष ध्यान रखिया, चिकनाई दिया पछे पानी देनो कोनी है और सर्दी रे मौसम रे मायने आपारो पशु है तो बिने दोनों समय 1-1 पाव गुड़ गर्म पानी में मिलार भी पछे भी पानी ने ठंडो कर पीवण वास्ते देनो है और सर्दी में ही बाजरी रो दलियो गुड़ या नमक सु बनेड़ो एक समय देवा तो ठीक रेवे। अरे चोकी फैट आप चाहो तो आपने चाहिए कि दूध दुवण सु 2 घंटा पहली पानी पीवण ने देवो पशु ने बीरे पछे देनो कोनी है, यहाँ करने सु भी दूध बढ़ सके है। अरे दूध दुवण सु पहली आ पशु रे बच्चे ने यानी टोगड़िए टोगड़ी ने दूध पिलावणो है क्योंकि पहली आलो दूध है भी में फैट कम होवे और पछे आले में बत्तो होवे है। जे आपरो पशु 10-12 लीटर दूध देवे है तो बीरो 1/4 दूध दूर बर्तन बदल लेनो चाहिए। बाद में जिको दूध आपा दुआ ला भी में फैट पहली आले सु अच्छी होवेला। और अगली बात आ ऐसा के दिनों के रसिंजारी वेड़ा दूध निकालने सु पहली पेलड़ो दूध है वो थोड़ी देर बछड़े बछड़ी ने पिलावणो है। बाद में बिने गाय रे सामे बांध देनो है जिके ने वा गाय चाटेला दुलार करेला। अपारा माइत कहता है कि स्नेहपूर्ण वातावरण होवे वात्सल्यमय वातावरण होवे तो गाय घणो दूध देवे।
1: अभी आप सुन रहे थे अधिक दूध उत्पादन हेतु आवश्यक बातों के बारे में जानकारी, वाचक स्वर था श्री बजरंग सारस्वत का। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए

0: अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:55 होने को हैं। अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जकार्तायां इंडोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इंडोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतम्।

आज के सुप्रभात में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज के सुप्रभात में आपके लिए बहुत खास बातें होंगी। कार्यक्रम में सुनना ना भूलिएगा एक भेंट वार्ता, जिसका विषय जो है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है और कई बार हम उस विषय को अवॉइड करते हैं। तो कार्यक्रम में फिलहाल बात करते हैं जिंदगी की। जी हाँ, आँख खुलते ही सबसे पहले ये ध्यान आता है कि आज हमें क्या क्या करना है, आज के दिन की हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी, कौन कौन से काम हमें निपटाने हैं, अभी कौन से काम करने हैं, रात तक कौन से काम कर लेने हैं, ये सभी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं इस कश्मकश में, इस जद्दोजहद में हम भूल जाते हैं कि हमें खुश भी रहना होता है। अगर हम खुश नहीं हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं। और स्वस्थ रहने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम बीमारियों से परे हों। जी हाँ, WHO की परिभाषा भी यही कहती है कि स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि हम केवल, हमारे शरीर में केवल बीमारियां नहीं हों, बल्कि हमें हर प्रकार से, यानी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों प्रकार से बेहतर होना ज़रूरी है। और आजकल इसके अंदर एक चीज़ और जुड़ गई है जिसे हम कहते हैं सामाजिक रूप से। जी हाँ, सामाजिक स्वास्थ्य भी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रसन्न रहने के लिए ज़रूरी है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना। जब तक हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बीमारियां भी पनपती रहेंगी, और जब हम मिलने जाते हैं दूसरों से तो उसका असर भी हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि हम अपने पूर्ण रूप में नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, या फिर परेशान हैं, या खींच रहे हैं बिना बात की बातों पर, और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर, हमारे दोस्तों पर, हमारे अपनों पर भी पड़ता है। तो अपना ध्यान रखें, और विशेष रूप से जब गर्मियां होती है ना, तो गर्मी में अलग ही तरीके की एक तकलीफ, या फिर अंदर कह लीजिए कि अंदर एक अलग ही तरीके की फ्रस्ट्रेशन सी डेवलप होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इचिंग हो रही होती है, या फिर गर्मी से हम परेशान हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक अजीब सी खिसियाहट सी होती है, और उसकी वजह से लगता है कि कोई बात ना करे तो अच्छा है, लोग दूर रहे तो अच्छा है, खाना खाने का भी ज़्यादा मन नहीं करता है। लेकिन ऐसे में गर्मी से बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहली बात कि हम अपने आप को तरीके से ढक करके रखें, सनबर्न से बचें, और धूप में अनावश्यक रूप से इधर से उधर घूमने से बचें। ठंडा गर्म का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए एकदम एसी से निकल करके तेज़ धूप में, और तेज़ धूप से निकल के बिल्कुल एसी में ना जाएं। और अगर आपको कहीं जाना है तो 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले एसी बंद कर दें, या उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो बाहर जाते एकदम क्लाइमेट से एक्सट्रीम लेवल पर नहीं डील करें। और ऐसे में पानी और फ्रूट्स जो है उनका जो अपने ऊपर प्रभाव है वो, और अपनी दिनचर्या में शामिल जो करना है वो अधिक से अधिक रखें, क्योंकि जीवन तो है वो मधुबन जो कि हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए ही बना है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, अगर हम प्रसन्न नहीं हैं, तो ये जीवन की जो खूबसूरत लम्हे हैं वो हमसे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं।

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति। हेल्दी बीकाना,
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं या फिर गर्मी से बचाव के उपाय की बात करते हैं, तो इसमें शामिल होता है हमारा ओरल हाइजीन भी। जी हाँ, हमारा ओरल हाइजीन हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी और हमारे स्वास्थ्य को भी। कहीं ना कहीं जब बैक्टीरिया मुंह के अंदर जब डेवलप होने लगते हैं या फिर हमारा पेट अगर ख़राब होता है, तकलीफ़ होती है, तो उसका असर हमारे मुंह तक भी आता है, स्मेल आने लगती है या फिर हमारे मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं और बहुत सारी और तकलीफ़ें जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये भेंट वार्ता, ओरल हाइजीन और इससे जुड़ी भ्रांतियां, और इस विषय पर डॉक्टर अंशुल गुप्ता से बातचीत कर रही हैं श्रीमती मीनाक्षी मलिक। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का है।
2: कहते हैं शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है और इस मुस्कुराने के पीछे हाथ है दांतों का। अगर हमारे दांत सुंदर हैं, यूं कहें साफ हैं, तो मुस्कुराहट और भी अच्छी लगती है। पर इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि रोज दांतों की सफाई करें। पर कई बारी इसमें हमें ओरल हाइजीन को लेकर कुछ शंकाएं आ जाती हैं, कुछ भ्रांतियां हमारे दिमाग में आती हैं। पर इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता। आप डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मैम।
2: मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन क्या है और ये क्यों जरूरी है?
3: मैम, ओरल हाइजीन बेसिकली ये आता है कि हमारे मुंह का जो स्वास्थ्य है उसमें सारी चीजों को सही रखना, जिसमें दांत भी आते हैं, मसूड़े भी आते हैं, हमारी जीभ भी आती है और हमारे मुंह के अंदर हमारा गाल, हमारा तालू, ये सब आता है, और उन सबको स्वस्थ रखना, साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज जाती है तो उसका सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट जिसको बोलते हैं वो हमारा मुंह है। तो अगर हमारा मुंह साफ नहीं रहेगा, मुंह में गंदगी रहेगी, तो वो सारी गंदगी शरीर में जाएगी, जिससे और भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अलग अलग कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं जिससे ये चीज फाइनलाइज हुई हुई है कि अगर हमारा मुंह साफ नहीं रहता है तो उससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, ये सब भी हो सकते हैं। तो मुंह को साफ रखना हर तरीके से ही ओरल हाइजीन है।
2: डॉक्टर साहब, क्या बच्चों को ही बताना जरूरी है ओरल हाइजीन, या बड़े भी इसके शिकार हैं, उन्हें पता ही नहीं है?
3: बड़ों की ओरल हाइजीन ज्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि बच्चों के पास एक ऑप्शन होता है कि दूध के दांत है मुंह में और अगर वो खराब हो भी गए तो गिर जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे। बड़ों के साथ ये ऑप्शन नहीं होता। अगर दांत खराब हो गया और चला गया किसी भी वजह से तो वापस नहीं आएगा, नकली ही लगवाना पड़ेगा। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग दांतों के प्रति थोड़े लापरवाह हैं बहुत।
2: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी कौन सी आयु होनी चाहिए कि उन्हें ब्रश स्टार्ट कर देनी चाहिए?
3: मैम, वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो जिस दिन मुंह के अंदर

0: पहला दांत आए
1: जी
0: उस दिन से ब्रश चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हम खाना उस दिन से चालू करते हैं जिस दिन पैदा होते हैं
1: जी।
0: तो मुंह के अंदर तो सब कुछ जा रहा है, जैसा ओरल हाइजीन मैंने आपको बताया कि सारी चीजें उसके अंदर आती है, हमारी जीभ भी आती है। दांत भले 6 महीने के बाद आने चालू होते हैं पर बाकी चीजों की सफाई जरूरी है। 6 महीने की एज से ब्रशिंग चालू करनी चाहिए, उससे पहले सिलिकॉन ब्रशेज आती है, कॉटन है, इन सबसे मुंह की सफाई रखनी चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, पर हमारे जो बुजुर्ग हैं ये कहते हैं कि छोटे बच्चों को ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए कम से कम 2 वर्ष तक, उनके दांत कमजोर हो जाएंगे, क्या ये सही है डॉक्टर साहब?
0: नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गलत तरीके से कोई भी चीज की जाए तो वो नुकसानदायक
1: होती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, अगर ब्रशिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए जो ब्रशेज आती हैं वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि दांत जो है उनका वो बन रहे होते हैं, उनमें मिनरलाइजेशन हो रहा होता है, तो बहुत सॉफ्ट हाथों से ब्रशेज करनी चाहिए। छोटा जो बच्चा होता है 2 साल से नीचे, उसको खुद को ब्रशिंग करने की इतनी एक्सपर्टनेस नहीं होती, उसको नहीं पता कि ब्रश कैसे करना है। पेरेंट्स को अपनी प्रेजेंस में करवाना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि आजकल पेरेंट्स बिजी है, फिर बाद में दिक्कत आती है बच्चों के दांतों में
1: जी। तो दांत पहली बार आए तभी से हमें ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये भ्रांति है कि इससे दांत गिर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है, अगर मैं बीकानेर की खासकर बात करूँ, तंबाकू सेवन से या अल्कोहल से भी क्या दांत खराब हो सकते हैं?
0: देखिए, तंबाकू तो वैसे ही दांत को नुकसान करता ही है। हम लोग जो देखते हैं वो सिर्फ होता है कि दांतों पे धब्बे हो रहे हैं, स्टेन्स हो रहे हैं, लेकिन तंबाकू और भी तरीके से नुकसान करता है। हमारे मुंह के अंदर दांत भी हैं, मसूड़े भी हैं, हमारे गाल जो है उसकी चमड़ी भी है, तंबाकू उस सबको नुकसान करता है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल जनरली एसिडिक होता है नेचर में। जैसा हम लोग बोलते हैं ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, दांत खराब होते हैं। मिठाई दांतों को खराब इसलिए करती है क्योंकि वो मुंह का जो लार हमारी होती है उसको एसिडिक बना लेती है, अम्लीय बना देती है, तो वो दांत को खराब करता है, डैमेज करता है। अगर हम एसिड में हमारा दांत डालेंगे तो गलेगा, वैसे ही अल्कोहल भी नुकसान करता है हमारे दांतों को।
1: डॉक्टर साहब, आजकल वैसे भी चलन है जंक फूड्स का और छोटे बच्चे तो समझते भी नहीं है, तो क्या जंक फूड भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे दांत खराब करने के लिए?
0: बहुत ज्यादा, क्योंकि जंक फूड जो होता है ज्यादातर ऐसा होता है जो नरम होता है
1: जी,
0: उसको चबाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो दांतों में बहुत ज्यादा चिपकता है, फंसता है, क्योंकि हम चबाते नहीं है तो मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो हमारा जबड़ा वीक होता है। दूसरा ये है कि क्योंकि वो दांतों में बहुत ज्यादा फंसता है तो दांतों को हम बार बार साफ नहीं करते हैं, वो दांतों को नुकसान करता है। सिर्फ मीठा ऐसी चीज नहीं है जो हमारे दांतों को नुकसान करे, हमारे दांतों में अगर कोई भी चीज फंस रही है, चिपक रही है, तो वो बराबर नुकसान करेगी, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो किसी भी फ्लेवर का हो। दांतों के अंदर बैक्टीरियाज लगते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको स्वाद के बारे में नहीं पता होता, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए जिसपे वो लग सके, तो वो नुकसान किसी भी तरीके से हो सकता है अगर कोई भी चीज दांतों पे फंसी हुई है तो।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार पेय पदार्थ, अगर हम बात करें ड्रिंक्स की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें या फिर बात करें चाय की, कॉफी की, क्या ये भी हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है?
0: देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो अलग तरीके से डैमेज करती हैं, क्योंकि वही वो एसिडिक होती है नेचर के अंदर, तो कार्बोनिक एसिड होता है, वो कार्बोनिक एसिड दांतों को नुकसान करता है। कोल्ड ड्रिंक्स इस प्रकार से नुकसान करती है हमारे दांतों को। अगर उनके अंदर कलरिंग एजेंट्स हैं वो वैसे नुकसान करेंगे स्टेनिंग पे, क्योंकि उनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो चीनी दांतों के लिए नुकसानदायक वैसे है, तो वो हर प्रकार से दांतों को नुकसान करते हैं। जहां तक चाय कॉफी की बात है, उनका मेन जो नुकसान होता है वो होता है स्टेनिंग, दांतों पे निशान पड़ने का, और वो थोड़ा सा एडिक्टिव भी होती है चीजें, तो लॉन्ग टर्म में वो दांतों को नुकसान उसी प्रकार से करते हैं जैसे गुटखा या तंबाकू कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कई लोगों को आदत है चाय पीने की या कॉफी पीने की या कई जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी, तो उसका निवारण क्या किया जाए? लेट्स से हमने चाय पी ली तो क्या गार्गिल इसका एक सोल्यूशन है?
0: सबसे इजी तरीका वही है कि चाय पीने के बाद अगर आप सिर्फ 2 घूंट पानी लेके उससे मुंह साफ कर लें, तो पहला तो आपका मुंह का जो लार है, जो एसिडिक हो चुका है, अम्लीय हो चुका है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, तो नुकसान नहीं होगा। दूसरा, स्टेनिंग पे जो इफेक्ट है चाय या कुछ भी हम लेते हैं, तो हमारे दांतों पे जो लेयर बन जाती है उसकी वजह से वो हट जाएगी, नुकसान नहीं होगा। हम मुंह के स्वाद में चेंज जरूर आ जाएगा, क्योंकि वो चाय या कॉफी का टेस्ट नहीं रहेगा मुंह के अंदर, पर दांत सेफ रहेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर भी रहे हैं ओरल हाइजीन की, तो कितनी बार डॉक्टर साहब ब्रश करनी चाहिए दिन में?
0: देखिए, आइडियली ये होता है कि अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो ये है कि अगर हम रात को सोते वक्त ब्रश करके सो रहे हैं तो वो सफिशियंट होता है, क्योंकि रात को हमने ब्रश किया, उसके बाद दांत साफ हो गए, हम सो गए, सुबह हम उठे तो हमने रात भर में कुछ खाया नहीं है, तो हमारे दांतों पे कुछ लगा हुआ नहीं है, हम ब्रश करके किसी चीज को साफ नहीं कर रहे हैं। सुबह उठ के ब्रश इसलिए जरूरी होती है कि मुंह से स्मेल आ रही होती है, इसलिए अगर अपन

0: सुबह उठ के माउथवॉश ढंग से यूज कर लें तो भी काम चल सकता है,
1: जी
0: पर रात को ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम रात को ब्रश नहीं कर रहे हैं तो पूरी रात में बैक्टीरिया को अपना जो भी काम करना है वो
1: वो आराम
0: कर
1: से
0: लेगा।
1: करेंगे डॉक्टर
0: बिल्कुल।
1: साहब। डॉक्टर साहब, दुर्गंध जो मुंह की है वो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है?
0: देखिए, मुंह से दुर्गंध आने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं। अगर
1: जी
0: मैं साइंटिफिकली बात करूं तो 150 से ऊपर ऐसे कारण हैं जिससे मुंह से बदबू आ सकती है। अगर डेंटल पॉइंट ऑफ बात करूं तो उसमें सबसे कॉमन जो चीज होती है वो होती है मुंह का सूखना। हम
1: जी
0: बहुत देर तक अगर कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं, सुबह उठते हैं बदबू इसीलिए आती है क्योंकि हम रात से लेके सुबह तक मुंह हमारा बंद रहता है, मुंह ड्राई हो जाता है, सुबह स्मेल आने लग
1: जी
0: जाती है। माउथवॉश उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो आप माउथवॉश यूज करें। मार्केट में कॉस्मेटिक माउथवॉश आते हैं,
1: जी
0: नहीं तो अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। पानी स्वास्थ्य के हर पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर इज वेरी गुड, तो
1: जी
0: पानी बीच बीच में पीते रहें वो बहुत अच्छा रहता है दांतों के लिए।
1: तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही मैं कहूँ कॉस्ट इफेक्टिव तरीका बताया अपने दांतों को साफ रखने
0: जी
1: का और
0: बिल्कुल
1: दुर्गंध को दूर रखने का।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, हम खाना कई बार ही खाते हैं तो ब्रश तो आपने बताया कि सिर्फ 2 बार ही करनी चाहिए या जरूरी मतलब सफिशियंट है, तो क्या 3-4 बार हम खाना खा लेते हैं तो उसका क्या उपाय है कि हम अपने दांतों को कैसे सेफ रख सकते हैं?
0: खाना खाने के बाद कुल्ला करना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप फ्लॉस यूज कर सकते हैं तो फ्लॉस यूज
1: जी
0: करें। फ्लॉस एक धागा होता है जो दांतों के बीच में सफाई करने के काम में आता है। बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला करें, उस पानी से सिर्फ मुंह साफ करें, उस पानी को पिए ना, मुंह
1: जी
0: साफ करके उसको थूक दीजिए। पीना इसलिए अवॉइड हम बोलते हैं क्योंकि जब हमारे पेट में वो पानी जाएगा तो हमारे एसिड जो होते हैं पेट में जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं वो उनको न्यूट्रलाइज करेगा, खाने को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सिर्फ मुंह से कुल्ला करके आप चाहे तो उंगली इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह साफ कर लीजिए कि कुछ भी दांतों में फंसा हुआ ना रहे।
1: जी
0: बस अगर ये हो जाता है तो वो सफिशियंट है।
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप बहुत बखूबी हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं कि ब्रश 2 बारी काफी है, पर
0: जी
1: डॉक्टर साहब ब्रश करने का तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं, वो कहते भी हैं कि हम ब्रश कर रहे हैं फिर भी कीड़ा लग जाता है।
0: देखिए, ब्रश जनरली सब लोग करते हैं
1: जी
0: लेकिन फिर भी हम लोगों के पास इतने लोग आते हैं जिनके प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो तरीका उसका कहीं ना कहीं
1: सही नहीं है।
0: कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम लोग ये बोलते हैं कि ब्रश मिरर में देख के करना चाहिए ताकि हमें पता चले हमारा ब्रश किस किस दांत पे जा चुका है, किस किस पे नहीं गया है। हर दांत के आगे और पीछे 2 सरफेसेज होते हैं, पीछे वाले दांतों में 3 सरफेसेज होते हैं, एक जहां से हम बाइट करते हैं। हर सरफेस पे हर जगह पे 2 या 3 बार ब्रश रब होना जरूरी है, तभी हम मान सकते हैं कि हमने ढंग से साफ किया है। ब्रश आप कितनी भी अच्छे से कीजिए दांतों के बीच में ब्रश नहीं पहुंचता है, तो ब्रश करने के बाद फ्लॉस इज रिकमेंडेड। ये पूरा प्रोसेस अगर हम ढंग से करते हैं तो करीबन करीबन 2 मिनट लग जाते हैं इस चीज में।
1: जी डॉक्टर साहब, ब्रश के साथ साथ फ्लॉस जरूर यूज करना
0: करना
1: चाहिए,
0: चाहिए
1: तभी
0: बिल्कुल।
1: हमारी दांतों की सफाई पूरी तरह से हो पाएगी।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, मान लो कीड़ा लग गया
0: जी
1: और उसको ट्रीट नहीं किया तो क्या वो बहुत भयानक रूप ले सकता है?
0: देखिए, कई बार होता है कि हमारे जैसे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, इसलिए तो पेशेंट जो होते हैं या लोग जो होते हैं उनके ये होता है दांत में कीड़ा लग गया, ध्यान नहीं दे रहे।
1: जी
0: ध्यान उस दिन देते हैं जिस दिन दर्द होता है, उस दिन भी जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास आए। दर्द की गोली ले ली, दर्द हुआ सही
1: पेन
0: ठीक
1: किलर्स
0: है,
1: ले लिए।
0: काम चल गया। पर अगर आपका दांत सड़ रहा है, उसमें खड्डा या कैविटी हो गया है, तो सिंपल सी बात है कि उसमें खाना फंसेगा। खाना एक ऐसी चीज है जो अगर हम नॉर्मली भी टेबल पर रख दें तो सुबह का रखा हुआ शाम तक सड़ जाता है। तो अगर हमारे मुंह में खाना फंसा हुआ है और वो सड़ रहा है तो क्या ये चीज सही है कि हम उस मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं और खाना खाने में जिसमें एक सड़ी हुई चीज ऑलरेडी
1: ऑलरेडी
0: रखी
1: रखी
0: है,
1: है। जी
0: तो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वो। दांत अगर खराब है तो जितना जल्दी हो उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए ताकि वो चीज आगे ना बढ़े और
1: जी
0: नुकसान ना हो।
1: क्या डॉक्टर साहब, दांत एक बारी खराब हो गया तो वो अपने आप को रिपेयर करके वापस ओरिजिनल जैसा हो सकता है?
0: नहीं, उसके लिए डेंटिस्ट की ही जरूरत पड़ेगी।
1: जी
0: दांत हमारी बॉडी का एक ऐसा टिश्यू है जो अपने आप रिपेयर नहीं होता है किसी भी तरीके से।
1: जी तो इसलिए थोड़ा सा भी हमें लगे अगर पेन है या कीड़ा लग रहा है या स्टेन दिख रहा है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और उसका उपचार करें।
0: बिल्कुल
1: और डॉक्टर साहब, RCT बहुत सुना है,
0: जी
1: ये क्या रहता है? क्या ये कीड़े का एंड स्टेज है?
0: हाँ, मतलब कीड़ा दांत को जब डैमेज करता है तो RCT बेसिकली हम लोग उसको रूट केनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। हम उसको दांतों की नस का इलाज भी कह सकते हैं। दांत जो होता है उसके अंदर जैसे हमारे शरीर में नस होती है,
1: जी
0: ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व्स भी होती है, वैसे दांत के अंदर भी होती है। जब कीड़ा दांत में लगता है तो धीरे धीरे और डीप जाता है, दांत की नर्व जो होती है वहां पे टच करता है। जब वो स्टेज आती है तो हमारा दांत पेन करने लगता है।
1: जी
0: डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो डेंटिस्ट उस दांत को ड्रिल करता है, जो डैमेज्ड नर्व है उसको हटा देता है।

0: जी
1: और वहां पर आर्टिफिशियल मटेरियल भर के दांत को पैक कर देता है। इससे आपका दांत बच जाता है, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम नहीं उसका इलाज कराते हैं तो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो दांत की नर्व पे आएगा, उसके बाद वो जबड़े की नर्व पे आएगा, इन्फेक्शन होएगा, पस सोजन आ सकती है, उस कंडीशन में दांत निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। प्लस हड्डी को जो डैमेज हो चुका है वो एक अलग पार्ट हो जाता है कि वो डैमेज और हो गया है, उसका ट्रीटमेंट अलग करवाना पड़ जाता है कई बार।
0: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि जब नर्व को कीड़ा टच करने लगता है तब आरसीटी जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सिचुएशन आए ही ना, और हम कोशिश करें कि ब्रशिंग का जो तरीका है वो सही से करें, कम से कम 2 मिनट हम ब्रश जरूर करें और फ्लॉस का भी यूज करते रहें।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, कई बार मसूड़ों में खून आता है और हम उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, और कई लोग कह भी देते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि कीड़ा नहीं लगा है।
1: जी,
0: तो क्या ये सही है?
1: नहीं, ओरल हाइजीन का मतलब दांत ही नहीं है, मसूड़े भी हैं,
0: जिसको हम कंफ्यूज कर देते सिर्फ दांतों की सफाई से।
1: मसूड़े जो है वो दांतों को होल्ड करके रखते हैं, दांत को अपनी जगह पे रखने वाली दो चीजें होती है, एक होती है हड्डी, एक होता है मसूड़ा। अगर हम मसूड़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे जाके पायरिया नामक बीमारी के अंदर तब्दील होएगा। मसूड़ा धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ेगा, मसूड़े में सोजन आना या ब्लीडिंग होना एक अलग चीज है। जैसे जैसे मसूड़ा अपनी जगह छोड़ेगा, दांत का जो सपोर्ट है वो कम होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि आपका दांत जो है वो एकदम सही है लेकिन वो हिलना चालू हो गया है क्योंकि सपोर्ट खत्म हो गया है, और वो बिना कीड़ा लगे बिना डैमेज हुए भी मुंह से निकल सकता है, उस कंडीशन में भी वो एक लॉस है। इसलिए मसूड़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: जी डॉक्टर साहब, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, कई भ्रांतियां जुड़ी हैं जो हमने शुरू में भी बात की थी कि दांत निकलवाने से कैंसर हो जाता है, तो क्या ये सही है?
1: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जहां पर भी जा रहे हैं दांत निकलवाने के लिए, वहां हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैलाने वाली चीज हमारी लार होती है, खून से भी ज्यादा। उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट साफ ना होना जो है वो भी एक ऐसी चीज है जो बीमारियों को आगे बढ़ावा दे सकता है। कई बार पेशेंट जब आते हैं, लोग जब आते हैं, तो वो अपना दांत निकलवाना या इलाज करवाना तब चालू करते हैं जब वो चीज ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। उस कंडीशन में दांत निकालने से हम शरीर से बीमारी हटा रहे हैं, हम शरीर में बीमारी जोड़ नहीं रहे, तो दांत निकलवाने से कैंसर नहीं होता है। अगर कोई चीज ऐसी है तो वो पहले से शरीर में है, वो प्रेजेंट बाद में होना चालू हो सकती है,
0: उसके सिम्टम्स बाद में
1: आएंगे डेफिनेटली, पर ऐसा कुछ नहीं होता है।
0: डॉक्टर साहब, एक और भ्रांति, जैसे कि हम कहीं पे भी डेंटिस्ट को अवॉइड करते हैं, कहीं भी रोड साइड पे किसी के पास भी जो आम लोग घूमते हैं उनसे हम दांत निकलवा लेते हैं, क्या ये सही है?
1: नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट रूपी लोग आपको मिल जाएंगे जिनको हम क्वैक्स बोलते हैं, जो सड़क के किनारे बैठे रहेंगे। हम लोग अगर कोई चीज के एक कॉस्ट ले रहे हैं तो वो लोग उस नेग्लिजिबल कॉस्ट में कर लेंगे, और हिंदुस्तान में डेंटिस्ट्री फिर भी बाकी जगहों के मुकाबले सस्ता है, पर वैसे देखा जाए तो डेंटिस्ट्री
0: और क्वैक्स में देखा जाए तो थोड़ी सी महंगी है।
1: बिल्कुल, फर्क वो प्राइस का आता है क्योंकि एजुकेशन और स्किल्स का बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन हाइजीन मेंटेन नहीं होता है और वो चीज आगे दूसरी बीमारियों में बदल सकती है। बिल्कुल, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं और जो होते हैं वो भी हाइजीन मेंटेन नहीं हो सकता है, तो वो फिर दिक्कत होता है। हम अपने दांत का ट्रीटमेंट जो है वो सड़क के किनारे बैठे इंसान से करा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है हिंदुस्तान में कि हमारे शरीर में और कोई दिक्कत हो रही है, हम हार्ट का ऑपरेशन क्यों नहीं कराते हैं सड़क के किनारे बैठे हुए? क्योंकि वो हम उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, दांतों को हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं तो करवा लेते हैं, पर फिर वो सस्ती चीज बाद में बहुत महंगी पड़ती है।
0: जी डॉक्टर साहब, सेंसिटिविटी बहुत सुनने में आता है कि ठंडा खाने से या गर्म खाने से, ये किस ओर संकेत करता है?
1: इसका मतलब हमारे दांतों में डैमेज जो है वो स्टार्ट हो गया है, दांत घिसने चालू हो गए हैं। बहुत अलग अलग कारण है, लोगों को एसिडिटी की बहुत ज्यादा इश्यू होती है, जंक फूड की वजह से दांतों को डैमेज करता है, ब्रश ज्यादा जोर से करना दांतों को डैमेज करता है। इसका मतलब यह है कि आपके दांतों में जो ऊपर की जो परत है उसका घिसना चालू हो गया है। वो घिसना बहुत अलग अलग कारणों से, जैसे अभी हम खाने की बात कर रहे थे, खान पान भी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
0: एसिडिक नहीं होना चाहिए
1: खाना। अगर वो चीज चालू हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल करवाना चाहिए, वरना आगे ऐसी स्टेज भी आ जाती है। हमारे पास लोग ऐसे भी आते हैं कि मटकी का पानी भी नहीं पिया जा रहा, तो वो नौबत आए उससे पहले कोई भी दिक्कत हो रही है, टाइम से उसका ट्रीटमेंट है तो ईजी हो जाता है, संभव होता है।
0: जी, क्या डॉक्टर साहब इनके लिए कोई खास पेस्ट होती है?
1: जी, वो पेस्ट आते हैं इस तरह के जो सेंसिटिविटी रोकते हैं, पर
0: ये परमानेंट इलाज नहीं है,
1: परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि एडवर्टीजमेंट देख के

0: पेस्ट को इस्तेमाल ना करें जब तक आपका डॉक्टर आपको वो सजेस्ट नहीं कर रहा है यूज करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस पेस्ट में क्या केमिकल है और वो किस लेवल की सेंसिटिविटी के लिए बना है। डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं फिर ही यूज करें। आजकल छोटे छोटे बच्चे यूज करने लग गए हैं क्योंकि एड आ रहे हैं, पर वो नुकसानदायक।
1: क्या डॉक्टर साहब छोटे बच्चों की पेस्ट अलग होती है और बड़ों की अलग होती है, या डिपेंड करता है दांत?
0: देखिए पेस्ट एज के हिसाब से भी आते हैं, पेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आते हैं। बच्चों के लिए पेस्ट जो होते हैं वो इस हिसाब से बने हुए होते हैं कि पहला वो दांतों की मिनरलाइजेशन में हेल्प करें, दूसरा उनमें थोड़ा सा फ्लेवर हो ताकि बच्चा बहुत आसानी से उसको कर ले
1: और इंटरेस्ट लेके करे।
0: बिल्कुल। और फिर ये होता है कि उसमें फ्लोराइड जो होता है उसकी मात्रा नियमित की जाती है, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं है कि हर बार पेस्ट करने के बाद कुल्ला करके मुंह साफ करें। कई बार वो पेस्ट ब्रश पे लगा हुआ होता है तो सबसे पहला जो चीज होती है वो ये होती है कि वो पेस्ट खा जाते हैं, तो वो नुकसान ना करें अंदर जाने के बावजूद भी,
1: इसलिए वो थोड़ी सी सॉफ्ट बनाई जाती है।
0: बिल्कुल, वो हेल्दी पेस्ट होते हैं।
1: डॉक्टर साहब टीथ लाइन जब होती है हर किसी की अलग है
0: जी,
1: क्या उस वजह से भी किसी को कीड़ा लग सकता है, किसी की इम्प्रॉपर है
0: जी,
1: उसको या तो ठीक किया जाना चाहिए, और ठीक किया जाना चाहिए तो कैसे किया जाना चाहिए, या ये भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे दांतों को खराब करने में?
0: बिल्कुल है, 100% इससे नुकसान होता है। अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अलाइनमेंट में नहीं है, तो सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है दांतों की, उससे हमारे दांत भी डैमेज होंगे, हमारे मसूड़े भी डैमेज होंगे, और हमारे जबड़े का जो जोड़ है जिसको TMJ या बोलते हैं, जिससे हमारा जबड़ा चलता है, उसका भी सही दांतों का मिलान ना होने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। दांतों का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। हम लोग ये बोलते हैं कि 15 साल से पहले उम्र में ना करवाएं, क्योंकि वो बढ़ती उम्र होती है, जबड़े का साइज चेंज हो रहा होता है, दांतों की पंक्ति को सेट करना थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं होता है। और आजकल तो वैसे भी पहले वायर का ट्रीटमेंट चलता ही था टेढ़े मेढ़े दांतों को सही करने के लिए, आजकल इतने ज्यादा एडवांसमेंट आ गए हैं, सब कुछ डिजिटल बेसिस पे हो गया है, AI बहुत ज्यादा आ गया है डेंटिस्ट्री के अंदर, वायरलेस ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं, ऐसे ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं जो किसी को पता भी नहीं चलता है कि ट्रीटमेंट चल रहे हैं, बहुत फास्ट हो जाते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं पेशेंट्स के
1: जी,
0: लिए।
1: डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो एक आपने बताया वायरलेस और एक शायद अलाइनर्स
0: जी,
1: तो दोनों में से अच्छे कौन से हैं?
0: टेढ़े मेढ़े दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो दो अलग अलग तरीके से होता है, या तो वायर से या बिना वायर से। वायरलेस ट्रीटमेंट को ही अलाइनर्स का ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्लियर अलाइनर्स होते हैं, दांतों में पहना जाता है वो, और वो दांतों की पंक्ति को धीरे धीरे करके सेट कर देता है। वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, पहले से पता होता है हमारे को, हम पहले दिन मरीज को ये बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद दांत कैसे दिखेंगे, और हर तरह से उसमें मॉडिफिकेशन भी संभव है, कंफर्टेबल भी बहुत रहता है वो मरीजों के लिए
1: जी। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी प्रश्न, दांत खराब नहीं है अगर, तो भी रूटीन चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए?
0: बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने दांतों को इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि हमारे दांत खराब नहीं है
1: जी?
0: क्योंकि दांत का हर सरफेस हमको मुंह के अंदर नहीं दिखाई दे सकता, हम मिरर के सामने खड़े होकर देखेंगे नहीं दिखेगा, वो अच्छे से इवैल्यूएट सिर्फ डेंटिस्ट ही कर सकता है। सबसे कॉमन होता है दो दांतों के बीच वाली जगह, उसमें कीड़ा बढ़ जाता है, दोनों दांत इफेक्ट हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है, क्योंकि हमें तब पता लगेगा जब दर्द
1: बहुत
0: होगा,
1: लेट हो चुका होगा।
0: तो इसलिए 6 महीने में दांतों का एक बार इवैल्यूएशन कराना चाहिए, ताकि कुछ भी कचरा जमा है तो वो क्लीन हो जाए, हमारे दांतों की और मसूड़ों की दोनों की हेल्थ मेंटेन रहे। और दांतों का रखरखाव कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हमारे दांत भगवान ने इस हिसाब से बनाए हैं कि वो काफी लंबे चले, वो काफी लंबे इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते
1: जी, उसको बिल्कुल निगलेक्टेड समझते हैं
0: जी,
1: बॉडी पार्ट्स
0: बहुत सारे होते हैं तो लोगों को लगता है कोई नहीं, एक दो चले भी जाएंगे तो काम चल जाएगा
1: जी। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रहे हैं कि ओरल हाइजीन में सिर्फ दांत की सफाई नहीं, और भी चीजें सफाई में आती हैं। डॉक्टर साहब आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं लोगों को, श्रोताओं को एक ही चीज बोलूंगा कि दांत बहुत सारे होने की वजह से उनकी वैल्यू कम ना समझे। हमारे एक चीज कही जाती है कि एक एक दांत की कीमत एक एक हीरे से ज्यादा होती है, क्योंकि आप हीरा ला सकते हैं, भगवान का दिया हुआ दांत वापस नहीं ला सकते। तो इनको अगर आप संभाल के रखेंगे तो ये आपके शरीर को संभाल के रखेंगे, खाना आपको इन दांतों से ही खाना है,
1: और सुंदर बनाए रखेंगे,
0: खाना ही आपके शरीर को आगे हेल्दी रखेगा, तो आप इनका ध्यान रखें, ये आपका ध्यान रखेंगे
1: जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से हमारे श्रोता को जानकारी दी कि ओरल हाइजीन क्या है और इससे जुड़ी भ्रांतियां क्या है, भ्रांतियों को दरकिनार करें, सफाई पे ध्यान दें दांतों की, और फ्लॉस का भी यूज करें, और दिन में 2 बार अपनी ब्रशिंग करें और अपने दांतों का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।
2: तो श्रोताओं अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता ओरल हाइजीन और इससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में, और इस विषय पर डॉक्टर अंशुल गुप्ता से श्रीमती मीनाक्षी मलिक कर रही थी बातचीत। प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास।

और संयोजन श्री अमित सिंह का था। और अब आज के सुप्रभात में इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल सुबह फिर से आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर। 7:30 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। साथ दिया था अन्य साथियों ने, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत था शिव हरी का।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं और लीजिए।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं और लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कभी कभी से। इस गीत को गाया है मुकेश ने, बोल है साहिर लुधियानवी साहब के और संगीत है द वन एंड ओनली खयाम का।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए अगला गीत सुनिए हेमंत कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जाल। बोल हैं साहिर लुधियानवी के और संगीत है एसडी बर्मन का।

0: बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

मन्ना डे और साथियों की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। बोल थे शैलेंद्र के और संगीत था शंकर जयकिशन का, किशोर कुमार की आवाज में। लीजिए ये अगला गीत सुनिए फिल्म पड़ोसन से। बोल हैं राजेंद्र किशन के और संगीत है आर डी बर्मन का।

हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म 20 साल बाद से। बोल थे कैफी आजमी के और संगीता हेमंत कुमार का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने जा रहे हैं। अब सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।

0: वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम हैं। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक

0: कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन,

0: ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
0: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बाइलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बाइलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली।

0: बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President.

चाणक्य, प्रेम तो बसता है आत्मा की नाभि में, मह मह महकता है जब, बावला सा हो जाता है आदमी, बौराया सा ढूंढता है प्रेम हर चमकती आंख में, हर लरजती आवाज में, रूप के घने मायावी जंगल में, देह की दुर्गम घाटियों में, पर सर्वाधिक पददलित रास्तों पर कभी नहीं मिलता प्रेम। रोमांचक यात्राओं का प्रेमी, अनछिन्हे ठिकानों का अन्वेषी प्रेम अक्सर मिलता है वहां जहां उसके होने का कभी ख्याल भी नहीं आता। रंग, होली के रंग लिपटकर चेहरे पर प्रकट करते रहे होंगे अंतस का उल्लास पहले कभी, अब तो रोजमर्रा के जीवन की पीड़ा, रिश्तों के धोखे, कटु अनुभवों के दंश छिपाने के काम आते हैं होली के रंग। निष्ठा, अपने दायित्वों के प्रति मेरी निष्ठा जैसे जैसे होती गई गहन से गहनतर, बढ़ता गया मेरे कांधों पर पराई अपेक्षाओं का बोझ। मेरी निष्ठा को बनाकर खूंटी टांग दिए उन्होंने अपने बोझ भी, पर एक दिन उलट दिया मैंने सारा बोझ उन्हीं की तरफ, सीधे खड़े हो झटक लिए कांधे, क्योंकि पूजा जैसी निष्ठा मेरी इंसान बनाती है मुझे, बोझ ढोने वाला पशु नहीं। क्या ऐसा होगा कभी, तिनके सी उड़कर आक्रोश की आंधी में, प्रतिशोध के बवंडर में बहते हुए कभी सहानुभूति की लहरों पर पहुंच जाती हूं अक्सर मैं वहां जहां नहीं होना चाहिए मुझे। क्या ऐसा होगा कभी कि आंधी और बवंडर ढाते रहें कहर, लहरें कोहराम मचाती रहें, मैं खड़ी रहूं शांत उस जगह जहां होना चाहिए मुझे। रास्ता, उद्दाम लालसा बहने की भरी है नदी में, रास्ते का क्या, वह तो बहने की लालसा के समक्ष अपने आप बनता चला जाता है। पुकार, नदी तो श्वेत निद्रा में सोई पड़ी है पहाड़ों पर, जो दिख रही है वह तो प्रत्युत्तर है सागर की पुकार का, पुकार जो सोती हुई नदी को हर हराते हुए बुला लेती है अपने तक। अफसोस, मन चीते एकांत के सर्जनात्मक अंधेरे में हर रात हामला होती हूं मैं, सुबह जागती हूं लबरेज भावों से, कुछ सृजन की बेचैनी से भरी, पर दिन भर भागते दौड़ते घर नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच कब जाया हो जाता है हमल मुझे पता ही नहीं चलता, शेष रह जाता है बस अफसोस एक अजन्मे शिशु के चले जाने का, जो इस कटीली दुनिया में खिला सकता था आनंद के फूल। सुध, सदियों के बाद सुध आई है अपनी, लौट पड़ी हूँ उल्टे पांव, तलाश ने उस जगह को जहाँ खोया था मैंने खुद को। मृत्यु, डूबने के लिए स्त्री के प्रेम में मरना पड़ता है तुम्हारे अहंकार को, सोचो कहीं मृत्यु भय से कांपते हुए तो नहीं कहा तुमने कालरात्रि, नरक और मृत्यु स्त्री को। मोक्ष, जब तुम कहते हो स्त्री को मोक्ष, देखती हूं मैं तुम्हारा शिशुवत निर्दोष अंतर तृप्ति से जगमगाता मुखमंडल, देखती हूं कि आनंद का अतिरेक कंठ में ही अटक जाता है तुम्हारे शब्द न बन पाने की अतुलनीय गरिमा से लक दक होकर। ओ नदी, बाहर तो केवल प्रतिबिंब है ओ नदी, असल में तो तुम बहती हो मेरे भीतर, हर सांस के साथ अपने आप को तराशती, अपने अस्तित्व की एक एक इंच जमीन पर जीतती हारती, हांफती हर हराती, फैलती और सिकुड़ती, जब मैं बढ़ती हूँ अपने पूर्णत्व के अदृश्य सागर की ओर, उस समय मुझ में तुम ही तो होती हो। समझती है स्त्री, धूप की चिड़, बादलों की नाराजगी, बसंत का अनमनापन, हवा का रुदन, नदी की कराह, धरती की पीड़ा, समझ सकती है स्त्री, क्योंकि तर्कों से नहीं हृदय से समझती है स्त्री। आप्तकाम, हरियल पात के पट्टे पर पूरी रात उकड़ू बैठी, ओस की बूंद प्रतीक्षारत है, कब खुले सूरज का झरोखा, झांके कब सुनहरी किरण, गले में जिसके डालकर बाहें झूल जाए वह, और चूमते हुए मुख खो दे अस्तित्व अपना, हो जाए आप्तकाम। भय, डूबते ही सूरज के सांझ का मुखौटा लगाए रात झपट पड़ती है दिन की सुनहरी रंगत पर, वैसे ही जैसे झपट पड़ते हैं अंतर मन के भय, कमजोर पड़ते ही आत्मबल की ज्योत झकझोर डालने के लिए मनुष्य का अस्तित्व। प्यास, अपने आप कब बरसता है बादल, यह तो धरती की प्यास है जो विवश करती है बादल को खाली हो जाने के लिए। हर दिन नीले आकाश को देखकर हुमक उठता है मन, उमंग से सिहर सिहर जाता है।

0: तन फैलाकर पंख, उड़ना चाहती हूँ मैं असीम विस्तार की ओर, पर देखकर अस्त व्यस्त घर, रसोई घर में जूठे बर्तन, अलगनी पर फैले मैले कपड़े और कुछ विश्वास भरी आंखें, ठिठक जाती हूँ मैं, टाल देती हूँ विचार उड़ने का कल के लिए। उस समय जब मन बुन रहा होता है सुंदर सी कविता, उस समय जब मन बुन रहा होता है सुंदर सी कविता, मैं अपने आप से मांग रही होती हूँ एक अच्छा सा लेख, कोई आगे कर देता है कटोरी एक कलछी दाल के लिए, रख देता है थाली मेरे सामने गर्मा गर्म रोटी के लिए, अवाक रह जाती हूँ मैं, क्योंकि थाली में रोटी की जगह नहीं परोसा जा सकता है लेख, दाल की जगह कटोरी में नहीं डाली जा सकती कविता। हवेली। प्रोषित पतिका नायिका सी उदास हवेली, सुबह से शाम तक ऊँघती रहती है, फर्राटे से दौड़ते वाहन शहर का कोलाहल भी तोड़ नहीं पाते उसका उनींदापन, रात को सो जाने पर शहर के जागती है वह, हौले से खोलते हुए स्मृतियों के भारी भरकम कपाट, उतरती है अतीत के तलघर में, मन में ठिठके कुछ क्षणों को मंत्रों की तरह बुदबुदाते हुए वह पुनर्जीवित करती है काल के प्रवाह में बह गए कुछ दृश्यों को भैरवी की तरह। दबंग पहरेदार की रौबिली आवाज़ से सिहरती हुई वैभव के दर्प से तन जाती है, षोडश श्रृंगारों से सज्जित अलंकृता रूपसियों के रूप की आभा से चुंधियाए हुए आंगन को देखती है होते हुए गर्वित, अवगुंठन में शर्माती इशारों में बतियाती नवोढ़ाओं के नुपुरों की किण्वन को जी भरकर सुनती है, हवेली के मन का कोना कोना जगमगा जाता है झरोखों से झांकती कुंवारी युवतियों की आंखों की आस के उजास से, गलियारों में दौड़ते बालकों की खिलखिलाहट को सहलाती आर्द्र नयना वह आंगन में सूखते पापड़ मसालों और अचारों की गंध के बीच सहलाती है अपनी अलग सी भूख को, श्रीमंत मालिकों की बैठकों से निकले आदेशों को, वाणिज्य व्यापार की उठा पटक को, सिक्कों की खनखनाहट को, राज रजवाड़ों से बनते बिगड़ती साठगांठ को सांस रोत कर सुनती है वह ना सुनने का नाटक करती हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे ये कविता पाठ, कवित्री थी डॉक्टर रेणुका व्यास। लीजिए अब कार्यक्रम में आगे सुनिए ये देशभक्ति गीत।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे प्रकाश पर्णिकर और कल्पना जोराकर साथी के और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सौरभ यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादें। वाचक स्वर है श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा और संयोजन श्री अमित सिंह का है।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
2: रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं आकाशवाणी के इतिहास में गोते लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आज के हमारे श्रोता इतिहास के जानकार हैं और आपने इतिहास पर अनेक साहित्य रचना की है। आप हैं BL भादाणी, वरिष्ठ साहित्यकार, इतिहास विशेषज्ञ, और अब जानते हैं आपने आकाशवाणी के नाम पर क्या कहा।
3: आकाशवाणी का नाम जो है, अगर आप देखें तो हमारी परंपराओं से लिया हुआ है, क्योंकि आज भी हम लोग कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में आकाशवाणी का बहुत जिक्र होता है। तो मेरे ख्याल में जिसने भी इसकी एक कल्पना की होगी, परिकल्पना की होगी, तो उनके जहन में यही होगा कि हमारे धार्मिक संस्कारों में भी आकाशवाणी का बहुत महत्व है। तो इसलिए नाम तो उसका उसी से लिया होगा और 100% उसी से लिया होगा। और एक ज़माने में जब ये आकाशवाणी यहाँ से जब भी शुरू हुआ, तो इसका लोगों के, मतलब समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग महत्व था। मुझे याद है कृषि से संबंधित कार्यक्रम आते थे, साहित्यिक कार्यक्रम आते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आते थे।

0: भजन कार्यक्रम आते थे, और सुबह सुबह मुझे याद है कि आप सुबह ही अगर आप करते तो बहुत अच्छे भजन आते थे। तो मैं देखा है कि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे तो वो सुबह सुबह ये कहते थे, अरे रेडियो लगा दे मुझे, तो उससे पहले जो धुन आती थी तब समझ लेते थे कि वो शुरू होने वाला है। तो आमतौर पर जो सुबह के वक्त जो भजन आते थे वो भजन इतना एक वातावरण, सांस्कृतिक धार्मिक वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण बना देते थे, जिसकी वजह से बुजुर्गों में इतना ही था कि देखिए सुबह सुबह भजन आते हैं, तो उसकी वजह से था।
1: आकाशवाणी ने साहित्य और बौद्धिक वर्ग में क्या परिवर्तन किया? बीएल भादानी के शब्द क्या कहते हैं?
0: इस साहित्यकारों ने, विद्वानों ने अलग अलग सब्जेक्ट पे, तो उसकी वजह से पूरे बौद्धिक वर्ग में उसका बहुत महत्व बढ़ गया।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पर चर्चा करते हुए आपने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो आकाशवाणी से जुड़ा ना हो।
0: और ये 90 साल का जो आप सफर बता रहे हैं बहुत लंबा सफर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जब से मैंने समझ पकड़ी 64 से ले लीजिए, 64 के बाद से मैं प्राय, हम लोग वही था, रेडियो था हमारा, तो रेडियो की वजह से हम लोग सब, और जितने भी कार्यक्रम थे, आज जैसे लोग बाग बच्चे जितने हैं टीवी पे अटके पड़े रहते हैं, हम लोग उस जमाने में क्या आकाशवाणी से क्या प्रोग्राम, क्यों, और कोई था ही नहीं प्रोग्राम, वो उसी के प्रोग्राम होते थे, और जब उनका प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा करते थे कि आज के बाद नहीं है, तो हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि कार्यक्रम बंद हो रहा है, अब क्या सुनेंगे, और अलग अलग उनके प्रोग्राम्स थे। तो कोई भी समाज का ऐसा वर्ग नहीं था जो उस समय आकाशवाणी से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरे ख्याल में समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो आकाशवाणी से अपने आप को संबद्ध नहीं मानता।
1: संस्कारों को लेकर आकाशवाणी का महत्व पर क्या कहा भादानी जी ने, आप भी सुनिए।
0: ये आकाशवाणी न केवल बौद्धिक क्षेत्र के लिए, बल्कि ये आपके मनोरंजन के साधनों के लिए, आपके सांस्कृतिक यात्राओं के लिए, आपके धार्मिक संस्कारों के निर्माण के लिए उसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। और आप समझिए कि उसका इतना असर था कि अगर कोई आदमी आपके संस्कारों की बात कर रहा है तो उसको जरूर सुना जाता था, ताकि ये लोगों के जहन में रहता था कि हमारे घरों में, परिवार में संस्कारों का निर्माण करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। देख लीजिए, अब जब से ये हुआ है, अब जब से टेलीविजन वगैरह आ गए, तो वो चीज़ रही नहीं। पहले सुबह सुबह जो इतने अच्छे मतलब धार्मिक भजन आते थे, संस्कारों की बात होती थी, और जो अच्छे अच्छे लोग की हमारे परिवारों में क्या संस्कार होने चाहिए, जो आज बिल्कुल हमको संस्कारों की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता, ये सोचते हैं कि ये बैकवर्ड लोग हैं, लेकिन उस समय इसने पूरे पीढ़ियों के, एक दो तीन पीढ़ी को कम से कम इन संस्कारों का निर्माण किया, उसमें इस आकाशवाणी का बहुत महत्व रहा है।
1: श्रोताओं, रेडियो सेट के साइज की बात भी इन्होंने की और अपने अनुभव बताए।
0: तो मैंने सबसे बड़ा रेडियो खरीदा था और वो अब तक लास्ट तक रखा, हो सकता है, मुझे पता नहीं, याद नहीं है कि, हो सकता है कि हमारे यहाँ रखा भी हो या कुछ हो। तो मैंने सबसे बड़ा पहले वही काम किया, मेरा एक कमरा था पुराना, उस कमरे में वो बना के स्टैंड बना के ऊपर लगा रखा था।
1: आकाशवाणी के आरंभिक संकेत ध्वनि को बिना सुने जिंदगी की शुरुआत ही नहीं होती, ऐसा लगता था भादानी जी को।
0: सुबह सुबह आप जैसे ही लगाएंगे तो उसके जो धुन आती थी शुरुआत की, तो लगते थे कि अभी, हम लोग मजाक में बात करते थे कि अभी इसके ताले खुल रहे हैं, मतलब खुल रहे, उसके बगैर जिंदगी की शुरुआत ही नहीं होती थी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रमों की रूपरेखा को ध्यान से सुनकर ये नोट कर लिया जाता था कि मुझे कौन सा कार्यक्रम सुनना है, और फिर उस समय उस कार्यक्रम को सुना जाता, और अगर कोई कार्यक्रम नहीं सुन पाते तो बहुत अफसोस होता कि अरे कार्यक्रम निकल गया। ये बात तो अब भी है, जैसे अभी इस कार्यक्रम को जो नहीं सुन पा रहे हैं वो बाद में एक दूसरे को पूछते हैं कि अरे आज के सफरनामा में क्या हुआ, किसकी यादें सुनाई गई। श्रोताओं, भादानी जी ने एक रोचक अनुभव बताया कि आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने वाली वार्ता आदि को स्वयं तो सुनते ही थे, लेकिन अपने मित्रों को भी सुनने के लिए बोलते थे। आपने अपने समय के साथियों का जिक्र किया, जिसमें डॉक्टर छगन मोहता, नंद किशोर आचार्य का नाम भी लिया।
0: उसके बाद उनका अनाउंसर जो जो कार्यक्रम होता था वो फिर दिन भर का कार्यक्रम बताता था। जो हमारे मित्र होते थे वो हमको कहते थे कि आज कल जो है, मान लीजिए छगन मोहता साहब का है, नंद किशोर आचार्य का है, भादानी जी का है, किसी का भी है, तो दूसरे दिन पूछते थे सुना आपने हमारा, तो अगर मान लीजिए चूक जाते थे तो बड़ा अफसोस होता था, क्या रहा मतलब, क्या आपके निकल गया था, भूल गया रे।
1: परिवार के साथ रेडियो सुनना और संस्कार की बात होना, साथ ही जिसके घर में रेडियो होता उसे संपन्न माना जाता था। और क्या कहा सुनिए।
0: कि उसमें परिवार के जो बुजुर्ग लोगों की नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें शुरू होते ही भजन आएंगे, फिर संस्कारों की बात आएगी, फिर धार्मिक चीजें आएगी, तो उसमें अलग अलग था। तो परिवार के लोग शाम को भी अगर जैसे फारिग हो गए

0: सब बैठ करके देखा करते थे कि वो प्रोग्राम आना है, हमको देखना है, इसलिए उसका बहुत बड़ा। और रेडियो तो उस जमाने में जिसके घर होता था वो ही मानते थे कि ये आदमी बहुत मतलब थोड़ा संपन्न है। तो हमारे मोहल्ले में एक पहले था जिसके पास, तो वहाँ सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती थी देख कोई न्यूज सुनने के लिए किसी के लिए।
1: श्री वाधानी जी ने कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए ट्रांजिस्टर को साइकिल पर सेट करके कार्यक्रम सुने जाने की बात कही।
0: मैंने इसको बहुत देखा क्योंकि जब हम फील्ड वर्क में भी कभी जाते थे ना आर्कियोलॉजी के, तो हम देखते थे गांव में लोग भीड़ लगी हुई है, वो एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ, जब ट्रांजिस्टर आ गए थे तो रखा हुआ, और उसका तो इतना ज्यादा था कि लोगों ने फिर वो ट्रांजिस्टर अपनी साइकिलों पर लगा लिए थे। वो जब चले तो हर वक्त मतलब उसके बगैर रह ही नहीं सकते थे। जैसे आज आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल आपके कोई भी आदमी देख लीजिए, मोबाइल जेब में होगा या हाथ में होगा। पहले लोगों के पास साइकिलों पर जो है वो ट्रांजिस्टर छोटा सा आता था, लगा लेते थे, और हम सोचते थे ये टांगों पे लगा रखे थे। कार्यक्रम चल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कुछ और अलग अलग रुचि थी। मान लीजिए कोई फिल्मी गाने आ रहे हैं तो फिल्मी गानों का उनका टाइमिंग अलग था, सुगम संगीत का अलग था, कल्चरल प्रोग्राम्स का अलग था, व्याख्यान के अलग थे, धार्मिक प्रवचन के अलग थे, संस्कारों से निर्माण से संबंधित अलग अलग थे। तो इतना लंबा चौड़े उनके कार्यक्रम होते थे। और एक बात और थी कि जैसे आज तो आज टीवी जब चला के बैठ जाए 24 घंटे आते हैं, उनके कार्यक्रम के टाइमिंग्स थे, ये नहीं था कि वो 24 घंटे चलते ही रहेंगे, तो उस टाइम का भी ध्यान रखते थे लोग कि अब इसके बाद में ब्रेक हो जाएगा, फिर शाम को 5 बजे सायंकालीन संस। तो इस तरीके से लोगों के जीवन में जितना ज़्यादा आकाशवाणी ने भूमिका अदा की उतना तो मेरे ख्याल में कोई नहीं कर पाया। आज कौन संस्कारों की बात करता है, ना कोई सुनता है।
1: आकाशवाणी की भूमिका क्या है, इस सवाल का जवाब सुनिए।
0: पहले एकमात्र यही साधन था, इसलिए इसका लोगों के जीवन में सांस्कृतिक उन्नयन में उनके सारे संस्कारों के निर्माण में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी अपनी ये थी कि जब मैं रेडियो खरीद लेता तो इतना एक्साइटमेंट रहता था कि वो रेडियो सुबह से पहले 5 बजे से पहले ही हम लोग ऑन कर देते थे ताकि वो धुन सुनाई पड़ती रहे। तो लोग आप सही कह रहे हैं कि हम घड़ी भी मिलाते थे, उससे एग्जैक्ट टाइम होता था। उस टाइम जैसे ही वो धुन खत्म होती थी कि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला, तब फिर वो घोषणा करता था कि अब ये कार्यक्रम है, तो घड़ी भी मिलाते थे। और टाइमिंग थी उनकी, मतलब 24 घंटे नहीं चलता था। तो मेरे ख्याल में समाज में जितना भूमिका निभाई हमारी आकाशवाणी ने, और जो आजकल मेरे ख्याल में दोबारा इसको रिवाइव किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए जिसको जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं यार बादन साहब कल आप ध्यान रखिए, कल मेरा फला चीज मेरा भाषण है, मेरा प्रवचन है वहाँ पे। ये मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड से आ जाता है कि सब मेरा आने वाला है। हमारे रावत साहब हैं, एक और हमारे दो तीन स्टूडेंट है, वो पहले ही बता देते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम है साहब, आप देख के बताइएगा।
1: आकाशवाणी के नए प्लेटफॉर्म की चर्चा की और महत्व तो बताया।
0: तो आजकल मोबाइल पे अब पहले ये भी नहीं कह सकते कि अब आपका कुछ नहीं, मोबाइल पे आपके सब मेरे पास सारे उसके आप खोल के देखिए सब जगह आपको मिलता है। ये मेरे को जब बुलाया था, मैं जब यहाँ फ्री होकर के रिटायर हो गया था, तो फिर मेरे को एक दफे मैं गया था, तब देखा कि स्ट्रक्चर वगैरह बहुत शानदार उनका, तो सारा अलग अलग सेक्शन से सब काम कर रहे हैं।
1: भाषा और उच्चारण की चर्चा वाधानी जी से करना आवश्यक था क्योंकि आप भाषा साहित्य के ज्ञाता हैं। आपने उद्घोषक और समाचार वाचक पंचदेव पांडे का जिक्र भी किया।
0: देखिए भाषा का तो बहुत सजगता, आपने ऐसे एक बात मुझे याद दिलाई कि आपको अगर मान लीजिए किसी चीज के बुलाया है तो आपको पहले वो लेख देना पड़ता था। भाषा की दृष्टि से देखते थे कि भाषा में ऐसी चीज नहीं है या कोई उस आलेख में कोई अंतर्विरोध नहीं है। ये सब चीज चेक करने के बाद जो डायरेक्टर होता था फिर वो कहता था अब इनका करवाइए, फिर रिकॉर्डिंग होती थी। अब भी मतलब जैसे बहुत होता है तो आपको वो कहते हैं कि क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमसे तो वो कहते हैं आके बोल दीजिए तो बोल देते हैं, लेकिन वो नए लोगों का पूरा ध्यान रखते हैं कोई ऐसा। और भाषा के उच्चारण की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो मैंने देखा था कि मतलब उसके जरिए लोगों के उच्चारण भी ठीक हुए, क्योंकि जो लोग बोलने जाते थे वो उनका उच्चारण भी बहुत, जैसे मैंने पांडे जी की बात बता रहा हूँ, इनकी आवाज़ इतनी मधुर, खैर अनाउंसर थे, आवाज़ इतनी मधुर थी और इनके सुनने का उच्चारण इतना अच्छा था। क्योंकि यहाँ राजस्थान में अब तो देखिए, फिर भी मैं अपने दौर की बात बता रहा हूँ कि अगर हम हिंदी में बात करते थे तो हमारे दोस्त मजाक उड़ाते थे। प्रोनाउंसिएशन हमारे में राजस्थानीकरण आज भी हमारे बोलने के अंदाज में फट से पकड़ लेंगे कि आप राजस्थान के हैं क्या। यूपी के लोगों का उधर के जो भाषा का जो क्षेत्र था उससे लोग आते थे, तो इनको पंचदेव पांडे साहब को मैंने पहली बार सुना था, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे थे, आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनके उच्चारण और आवाज़ की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उच्चारण भी था, खाली आप आवाज़ से ही नहीं चलता था, उच्चारण कितना अच्छा बोलता है, क्योंकि उसका

0: हिंदुस्तान के कितने लोग उसको सुनते थे। अगर आप भाषा ही बात शुद्ध बोल रहे हैं, आपका उच्चारण बात करने का तरीका है, या आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो हो नहीं पाएंगे। और जहाँ तक मान लीजिए आप किसी विषय पर बोलना चाहते हैं तो कम से कम आपकी विद्वता ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई ऐसी कोई पकड़ ना सकें कि जो बात कह रहे हैं सब ये आकाशवाणी से बात गलत बात बता रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। तो उसकी भी पूरी जाँच होती थी कि ऐसी बात ना कह दें जिसकी वजह से आकाशवाणी की मजाक उड़े। तो ये जो चौकसी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि भाषा का स्तर बढ़ा और उसकी जो विषय वस्तु थी उसमें भी गहराई आई। तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा भूमिका मतलब साहित्यिक क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में ले, संस्कारों के निर्माण के लिए, धार्मिक जो वास्तव में जो धार्मिक प्रथाएं थी, हमारी जो पौराणिक कथाएं थी, अगर उसके बारे में देखें तो इन सब में, और गाँव के लोगों को जो जोड़ के रखा, गाँव के लोग भी जो है पूरी उसी से, आज किसानी खेती की चर्चा होगी इसके बारे में बात करेंगे, तो ये उससे उनको भी बहुत फायदा हुआ। और उसमें हर कोई को नहीं बुलाते, जो एक्सपर्ट्स होते थे वो बताते थे। तो समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था, खिलाड़ियों का अलग प्रोग्राम आते थे हर तरह, तो समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो आकाशवाणी से प्रभावित नहीं था। तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसने हमारे समाज के व्यक्तित्व निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और इस संस्कारों के परिवारों में हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि कार्यक्रम आ रहा है संस्कारों के निर्माण के लिए।
1: श्रोताओं, ये थे आज के मेहमान श्रोता श्री बीएल भादानी। आपने हमें अपनी यादों में बहुत कुछ बताया। श्रोताओं, आज के सफर को यहीं विराम देते हैं। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेघा की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अगले मंगलवार को इसी समय मिलने के वादे के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का

श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा भी आप सुन रहे थे। वाचक स्वर्ता श्रीमती मधु शर्मा का, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेखा और संयोजन श्री अमित सिंह का था। ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान का साक्षी भी बनेंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां वे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता

विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों को पुरस्कार वितरित करेंगे। विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये योजना छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभावी भाषण कला तथा कौशल विकसित करती है। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भाग लिया। देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से हो रही इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। करौली जिले में पांचना बांध से समझौते के अनुसार सिंचाई के लिए नहरों में पानी का प्रवाह कल फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच देर शाम आई तकनीकी खामी के कारण कुछ देर प्रवाह बाधित रहा। हालांकि जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने पूरी रात तकनीकी खराबी को दूर कर प्रवाह सुचारू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज सुबह जारी बयान के अनुसार तकनीकी समस्या वाले गेट को आज तड़के खोल दिया गया, जिसके बाद नहरों में जल प्रवाह सामान्य हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क अवसंरचना के विस्तार और भविष्य की राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उधर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय व्यय सचिव, राजस्व सचिव और रक्षा सचिव से मुलाकात कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जीएसटी सुधारों और मेक इन इंडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज रफ्तार, अवैध पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष अभियान 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर में यातायात और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में पर्यटन, पुरातत्व, नगर निगम, यातायात पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आमेर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटकों के सुगम आवागमन और आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि आमेर आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। नीम का थाना में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बिस्तरों वाले

0: अत्याधुनिक राजकीय मातृ और शिशु अस्पताल का राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने लोकार्पण किया। ये अस्पताल प्रधानमंत्री केयर्स फंड से तैयार किया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गोविंद छापोला ने बताया कि इसमें आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई, बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी।
1: ये जो महिला अस्पताल बना है निमका थाना में, ये बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा बना है। कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक के जो आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्पेस है, तो इस क्षेत्र के लिए ये संस्था बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगी।
0: प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश जोधपुर शहर में दर्ज की गई। दौसा, पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू और सवाईमाधोपुर में कई स्थानों पर हल्की तो कई जगह मध्यम बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बाड़मेर जिले में कल दोपहर बाद अंधड़ के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान नोखड़ा इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। सेड़वा, धनाऊ और चौहटन सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।
3: जिले में कल तीसरे पहर तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय के अलावा सेड़वा, धनाऊ और चौहटन समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। नोखड़ा इलाके के गाँवों में जमकर बादल बरसे। मानसून की पहली बरसात से किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच किसान खरीफ की फसलों की बुवाई में लग गए हैं। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक उदयपुर और कोटा संभाग के साथ ही पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बरसात की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पुष्पा पगधरे की आवाज़ में।

क्षमा कीजिएगा, लोक संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कल्याण राम राणा की आवाज़ में।

ये लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा की आवाज़ में। लीजिए, लोक संगीत की श्रृंखला में हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज़ में।

लाल चंद्रंगा की आवाज में ये लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 9:30 हुए हैं और ये समय है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCRT का।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना ताई गोंडाणे, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाणे।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।

0: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
0: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
0: जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिमलेश जी से।
0: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी बिमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
0: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
0: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी,
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और

0: संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है।
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।

0: कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
1: हाँ बेटा,
0: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
1: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
0: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
1: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
0: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
1: हो सकता है कि...
2: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
1: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
2: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
1: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया, को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
1: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
3: आओ, चलो
1: आओ।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: क्या आज कोई खास बात है?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
2: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
1: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
2: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
1: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
2: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
1: हाँ बिल्कुल वैसी।
0: कमाल है
1: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
0: वाह।
1: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
2: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
1: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
0: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
2: इतने जल्दी?
0: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
2: हाँ, जाना है।
1: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर,

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है। इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने

0: सालों से इनाम लेता है।
1: अरे लो, वो उतर कर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
1: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
1: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने। इस

0: का जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। हाँ। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी श्रोता सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल ने, साथ दिया है आयुष्मान खुराना, अनन्या पांडे, अनु कपूर और परेश रावल ने। गीत के बोल लिखे हैं अर्को ने और संगीत है राज शांडिल्य का।

ये गीत आप सुन रहे थे शाल मलिक होड़गड़े की आवाज़ में। फिल्म का नाम था तुम्हारी सुलु। गीत के बोल लिखे थे वायु ने और संगीत था तनिष्क बागची का। लीजिए अगला गीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं शिल्पा राव की आवाज़ में। बोल है स्वानंद किरकिरे के और संगीत है अमित त्रिवेदी का। फिल्म का नाम है इंग्लिश विंग्लिश।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: फैशन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था तू झूठी मैं मक्कार, बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत था प्रीतम का।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और

0: भक्ति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

ये गीत आपने सुना शिल्पा राव और श्रीराम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत था प्रीतम का। फिल्म लुटेरा से लीजिए अगला गीत सुनिए। इस गीत को गाया है मोनाली ठाकुर ने। बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म जॉली LLB 2 से। इस गीत को गाया था जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की जोड़ी ने। बोल थे जुनैद वसी के और संगीत था चिरंतन भट्ट का। फिल्म हेट स्टोरी 3 से लीजिए अगला गीत सुनिए अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाज़ों में। बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने और संगीत है अमाल मलिक का।

फिल्म रेडी से ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था अमृता काक और मीका सिंह की जोड़ी ने। बोल थे आशीष पंडित के और संगीत था देवीश्री प्रसाद का। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दम लगा के हाइशा से। इस गीत को गाया है मोनाली ठाकुर ने, साथ दिया है आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, कुमार सानू, सोनाक्षी सिन्हा और संजय मिश्रा ने। बोल हैं वरुण ग्रोवर के और संगीत है अनु मलिक का।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत भूले बिसरे गीत।

इस गीत को हमने चुना है फिल्म छाया से, आवाजें लता मंगेशकर और तलत महमूद की। इस गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने, संगीत से सवारा है सलील चौधरी ने।

इस गीत को हमने चुना है फिल्म लोक परलोक से, गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध के गीत को। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है संगम।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गा...

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अब रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। इस गीत को हमने लिया है फिल्म धरती से, आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बरखा से आवाज लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है राजेंद्र किशन ने, संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

आइए सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को। संगीत दिया है नौशाद ने, इस गीत को आवाजें दी हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म का नाम है साथी।

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से। अब रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। इस गीत को लिया है फिल्म चित्रलेखा से। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और तर्ज दी है रोशन ने।

इस गीत को हमने लिया है फिल्म काली घटा से। आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए फिल्म दाग का ये गीत। इस गीत को गाया है तलत महमूद ने। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप आरडी बर्मन के संगीत पद के गीत को सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था राजा रानी। भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।

इस गीत को गाया था गीता दत्त ने। फिल्म का नाम था आर पार। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध के गीत को। आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है छलिया।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

यह पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात

0: उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का कार्यक्रम विवरण। दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आम एयर चैनल से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 12:40 पर और दिन में 2:30 पर। दिन में 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। चर्चा का विषय रहेगा पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, ग्रामीण युवतियों के लिए करियर काउंसलिंग, मॉनसून से पूर्व की तैयारी, जल संचयन, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयंती, साथ ही रसोई से व्यंजन बनाने की विधि और कुछ ब्यूटी टिप्स के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। संध्या 5:05 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। आज की बात का विषय रहेगा करियर का चुनाव सोच समझ कर करें। साथ ही दी जाएगी लघु जानकारी विविधताओं का देश भारत, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान राजस्थान और नमक उद्योग, मैकडोलगंज पहाड़ों का शहर। साथ ही होगा क्विज टाइम और देंगे जानकारी रोजगार समाचार की और सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा संध्या 6:40 जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

संध्या 7 बजे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। चर्चा का विषय रहेगा मूंग की उन्नत किस्में, बीज दर व बीजोपचार। बरसात से पूर्व टीकाकरण जरूरी, जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, अपना गांव बने हरा भरा गांव, साथ ही मौसम की जानकारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी के साथ सुनवाएंगे कुछ लोकगीत। संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और रात्रि 9:15 पर भी आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे भेंट वार्ता वरिष्ठ साहित्यकार मालचंद तिवारी से, डॉक्टर नमामि शंकराचार्य की बातचीत, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, संयोजन श्री अमित सिंह का। समय याद रखिएगा रात्रि 9:30। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपनो राजस्थान। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से रिले करेंगे। ये थी हमारे आज शेष प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से अनुप्रसारित करेंगे।

सबने बुधनड़न के दीपिका खानचंदानी जो नमस्कार तमा सबने जो स्वागत आहे अजो के हन सिंधी प्रोग्राम में साथियों जीवन एक नाटक आहे जेंखे ईश्वर लिखियो आहे एं जेंखे असा स्वीकार भी कंदायो नाटक के असा सिर्फ एक कल्पना जे रूप में ही बखान करे था सगु जेंखे थिएटर रेडियो या टीवी में प्रदर्शन लाए दिखारियो या बुधायो थो वने साथियों समाज में शादी एक पवित्र बंधन मन्यो तो वने जैन जो आधार प्रेम विश्वास आए सम्मान आहे पर जने ही पवित्र रिश्तो दहेज जे बोझ सां जुड़ी वेंदो आहे तड़े खुशियों जे बदले कई परिवारन में चिंता दुख आए तनाव पैदा थी वेंदो आहे आज जो सिंधी नाटक दहेज जे विषय के ढे सुठे नमूने आए प्रभावशाली ढंग से पेश कयो वियो आहे त साथियों हाँ बिना देर करे पेश आहे दहेज जे विषय ते आधारित ही सिंधी नाटक दिल लगी

0: अरे भाई मंगा, तू कै वक्त अड़ी गाल शुरू करे छी नई की बस। अरे यार खिलंदे खिलंदे पेट सूर करे रहे है। हाँ वट मिठाई खा यार, तू मिठाई खा।
1: ये मिठाई वाली केड़ी खुशी में?
0: अरे यार तू मुझे घर आए इतने बैठे खिलाए खिलाए मुझे पेट में सूर करे छी। हाँ भला पेंजे घर वही रहे वही इन खुशी में मिठाई का
1: पेंजे घर वही रहे इन खुशी में। अरे वाह भाई वाह यार, हाने तो मिठाई खानी ही पवंदी भाई मुझे। पर यार शोभा एक गाल तो बुधाए, तू इतनी अखबार छो पढ़नो है यार?
0: रदिये में विकड़नो आया, पढ़नो कोन आया? हाँ, अरे यार मंगा राम अखबार पढ़ने जो भी एक अलग ही मजो आए। अरे जेस ताई सजी अखबार पढ़ी न वठूं भुख ही की न लगंदी आए।
1: हाँ यो तो बिल्कुल ठीक चेहरे हो यार, बिल्कुल सही चेहरे हो। अरे भाई चौदह नैन पसंद पेंजी पेंजी है, ख्याल है पेंजा पेंजा। हाँ
0: तू कुछ भी चो मंगा, अखबार पढ़ने सा बियो कुछ न ते दिमाग जी कसरत ते थी वेंदी आए। अरे मंगाराम बुध बुध खबर बुध
1: बुधाए,
0: सस सौरे दाजे जी लालच में पेंजी नूह के जान सा खत्म करे छड्यो, सत्यानाश थेस।
1: छा छा चाहिए नूह के खत्म क्यों यार शोभा? ये खबर तो वरी पड़ी बुधा, चंगी तरह पूरी खबर बुधा यार।
0: अरे यार मंगाराम छा पूरो पड़ी बुधाए, सब तरफ यही भाई लगी रही है, दाजो दाजो सिर्फ दाजो खपे। हाने इन में वरी उन बेचारी न्याणी जो केड़ो कसूर, छा जमानो अची वियो आहे मंगाराम। गरीब इंसान केतरा न दुख सही, पेंजी औलाद के पाले थो पोसे थो पढ़ाए लिखाए थो, केड़ा केड़ा न सुपना थो दिसे पेंजी औलाद वास्ते, केड़ा केड़ा अरमान हुंदा हुन गरीब माउ पीउ जी दिल में पेंजी न्याणियुन लाइ। पर ॾेती लेतीअ जी मार हर इंसान के लाचार बेबस ऐं कमज़ोर बणाए रखियो आहे। वेचारो कर्ज़ खणी बि पंहिंजी धीउ खे सुखी ॾिसण थो चाहे, पर इहे पैसे जा लालची गिद गिद्ध वांगर इंसान जो खून पी रहे हैं।
1: बिल्कुल सच चई रहे तू। अलाए छा चीज है जमाने के हाँ चैनी पासे लोगों के कोई देती लेती जी बाय, हर मानू शादी में देती लेती जी लटका रहे हैं। मुखे टीवी खपे, मुखे कार खपे, मुखे ही खपे, मुखे उड़ खपे। कमाल है यार, मुखे समझ में न तो अचे तो ही मानू सोचन कन था उनके घर में न्याणी आए, पर के समझाए इन चरण के समझाए।
0: मां तो भाई कसम खाई चुको आया, रमेश जी शादी में न तम डाजो वठंदस, आए नई निमू जी शादी में ना।

0: ॾींदुसि।
1: वेरी गुड, ॾाढो सुठो शौक़ु राजा, ॾाढो सुठो। मां तुंहिंजा ख़्यालात ॿुधी तमामु ख़ुशि थी वियो आहियां। तो जहिड़े इंसान ते असांजे समाज खे फ़ख्रु हुअणु खपे। अरे भाउ यार, काफ़ी टाइम थी वियो आहे, हाणे मां निकिरां थो यार, दुकानु खोलण जो टाइम थी वियो आहे। ठीकु आहे, वरी गॾिजूं था भाई, ध्यानु रखिजो पंहिंजो।
0: ठीकु आहे मंगाराम, ठीकु आहे।
1: हलो मंगाराम, हलो भाई, हलो।
0: हलो, यस, अच्छा अच्छा, निमू सां? हा हा, होल्ड कजो होल्ड कजो। निमू, ओ निमू पुट।
2: जी डैडी।
0: तुंहिंजो फोन अथई पुट।
2: फोन? हा हलो, हा हा, मां निर्मला। केर? अरे पुशी, तू दिल्लीअ मां कॾहिं आई आई? छा ओफो, ऐं मां तोखे अॼु हफ़्ते खां पोइ यादि अचां? छा हा, रमेश जो नाटक सुभाणे? हा हा, 7 बजे आहे। हा यस यस, ज़रूरु अचिजां, ज़रूरु। ठीकु आहे, ओके, सी यू।
3: निमा, निमा, निमा।
2: अरे अशोक, अॼु तू ॾाढो परेशान ऐं थकियल थो नज़र अची। अरे नाटक त अञा सुभाणे आहे, पर तुंहिंजी दिलि त अॼु ई पई थी सुस्त नज़र अचे।
3: अरे तोखे छा ॿुधायां निमो, सत्यानाश थी वियो आहे, सवा सत्यानाश, न न साढा सत्यानाश। अरे नमो, मूंखे त उथंदे वेहंदे जागंदे सुम्हंदे बस थिएटर में रुगो माण्हू ई माण्हू नज़र ईंदा आहिनि निमो, जेके असांजे स्वागत में पंहिंजे हथनि में जूता चंपलियूं ऐं टमाटा खणी करे बीठा आहिनि।
2: वेरी गुड, ही सीन जोरदार वेंदो।
3: अरे तोखे सीन जी लॻी आहे निमो, असांखे पंहिंजी जान जी पई आहे।
2: वॉट, आर यू सीरियस?
3: यस।
2: पर ॻाल्हि छा आहे?
3: अरे निमो, असांजे नाटक जी हीरोइन मंजू खे।
2: छा थियो मंजू खे?
3: अरे मलेरिया थी पियो आहे, बुखार, 103, 104, 105। अड़े अब्बा रे, हाणे सुभाणे जे नाटक जो छा थींदो?
2: ओफो, मूंखे लॻे थो बुखार हुन मंजू खे न तोखे थियो आहे। रामू, ओ रामू, हिकु ग्लास बर्फ़ जो खणी अचु।
3: अरे निमो, तोखे त रुगो मज़ाक सुझी रही आहे। अरे असांजी दिलि खां पुछ, असांजी कहिड़ी हालत बणिजी रही आहे निमो।
4: हा वठो मेम साहब, बर्फ़ जो थधो थधो पाणी पियो।
2: हूअं अशोक, तुंहिंजे हीरोइन जी प्रॉब्लम हल थी सघे थी।
3: वॉट, कीअं निमो?
2: छोकिरी जो मेकअप कराए ऐं रामू हिन रोल लाइ बिल्कुलु तयारु थी वेंदो। कीअं रामू?
4: अरे बिल्कुलु मेम साहब, छो न, नाटक करण में असां बि कंहिंखां घटि थोरी आहियूं। छोकिरीअ जो मेकअप करे त मां बिल्कुलु हिकदमि कैटरीना कैफ लॻंदुसि।
3: अरे भॻवान जे नाले सां हाणे चुप थी वञो।
5: ओह, अमिताभ बच्चन हिते वेठो आहे। अरे भाई, तुंहिंजी हीरोइन त नाटक में कमु करण लाइ मना करे रही आहे मलेरिया जे बहाने।
3: अरे बहानो न रमेश, हले हले हले हले, हाणे तोखे छा ॿुधायां, हुनखे सचमुच मलेरिया थी वियो आहे रमेश, अञा हाणे हाणे मां हुनजे घरां थी आयो आहियां।
5: अरे यार, उहो सभु त ठीकु आहे, पर सुभाणे जो छा थींदो? केतिरा दफ़ा मना कयो तोमें कि नाटक अगरि करणो हुजे त सोचे समझी कंदो कर, हाणे भुगत।
3: अरे पर इहो सभु तूं कंहिंखे चई रहियो आई?
5: पंहिंजे पाण खे। यार नाटकनि में हिकु त छोकिरियुनि जो पहिरीं सां ई अकाल लॻो पिया, जीअं तीअं छोकिरी तयारु थिए थी ऐं मौके ते हुन ते मलेरिया थी थो वञे, पलंग पकड़े सुम्ही थी रहे। धत, केतिरा भेरा चयो तोमें त हिन नाटकनि जे चकर में न पओ न पओ न पओ, पर तूं आई की?
3: वॉट, मां?
5: अरे तोखे न, मां पंहिंजे पाण खे चई रहियो आहियां।
3: अच्छा,
5: कीअं थींदो ॿी हीरोइन जो? अरे तू चुप छो आई, कुझु सोच।
3: अरे छा सोचा यार रमेश, छा सोचा, मुंहिंजो त दिमाग़ ई कमु नथो करे।
5: आइडिया?
3: आइडियो?
5: हा, इज़त बची सघे थी असांजी। निमू, निमू, तू तू असांजी इज़त बचाए सघी थी।
2: मां? मां? मां एक्टिंग? अरे मूंखे त एक्टिंग जी ABC ई ख़बर कोन्हे।
3: यस यस यस रमेश, बिल्कुलु यस थी सघे थो। निमू, हिन में काई कठिनाई वारी ॻाल्हि कोन अथई, ऐं पोइ वरी तुंहिंजी त रिहर्सल बि ॾिठल आहे न निमो। निमो प्लीज।
4: हा हा मेम साहब, तव्हां ई कयो प्लीज।
5: हा निमू, असांजी इज़त, असांजी आबरू तुंहिंजे हथनि में ई आहे। अगरि तू तयार न थिए त सुभाणे शाम जो ठीक 7 लॻे सॼी जनता असांखे भाॼी सम्झी खाईंदी। स्टेज ते चारों तरफ़ सड़ियल टमाटा, केलनि जूं खलूं, सड़ियल गोभियुनि जा गुल नज़र ईंदा। असाजी इज्जत बचाए निमू
3: प्लीज निमू
2: बस प्लीज।

0: प्लीज।
1: बस बस हाने ही एक्टिंग बंद कर। मां नाटक में कम करण ले तैयार हां।
0: वाह।
1: पर एक शर्त ते।
2: शर्त?
1: यस शर्त। डैडी के पत्तो न पवण घुरजे।
2: तो इन गाल जी चिंता न कर। बिल्कुल चिंता न करनी मो। डैडी के इन गाल जी हवा में लगनी।
1: ठीक है मां हीरोइन ले तैयार आया।
2: तो ठीक है। अरे रामू तू अजा इतई बिचवाई। अरे तू मत डैडी के।
3: अरे भगवान जो नालो उठो साई। भगवान जो नालो उठो। मुंजो मुंह इन गाल वास्ते बिल्कुल बंद रहंदो।
2: वेरी स्मार्ट मैन। ठीक है तब थी वे रिहर्सल।
1: रिहर्सल हिते अगर डैडी के
3: तमाम मालिक जी चिंता न कयो। बिल्कुल भी चिंता न कयो मैम साहब। वे अंदर दरवाजो बंद करे आराम करे रहन ए वरी बिंदा तमा सीटी बजाय ताके बुधाय छनम। ता शुरू कयो शुरू कयो।
1: केडो सीन?
2: सीन जिते प्रीतम के मथे में सूर थयो पे लता घबराए जी थी वने रोए थी डॉक्टर के थी फोन करे वही सीन।
1: यस यो सीन त मुखे बिल्कुल याद आहे।
2: गुड त थी वने। यस अशोक।
0: हां
2: स्टार्ट।
0: हां बिल्कुल मां उते सामो वनी करे सुमा थो ए तू एक्शन चाहिजे। ठीक है
2: ओके।
0: हां
2: एक्शन।
0: अरे लता। अरे ओ लता। अरे अबाले। अरे लता मुझे मथो
1: छा थियो तमाके। हे भगवान छा थियो।
0: अरे लता हे भगवान। अरे एड़ो सूर त मुखे मुजी जिंदगी में कोन थियो है। लता लता जल्दी कर
1: छा किया।
0: अरे गोरी गोरी खड़ी है लता।
2: यस गुड गुड गुड। नौकर नौकर की आवाज से गाइस। वासु वासु
1: वासु। अरे ओ वासु।
2: रामू प्रॉक्सी प्रॉक्सी वन।
3: जी जी जी साईं। जी मैम साहब
1: जल्दी वन ए मथे जी सूरज जी गोरी खणी अच जल्दी वन।
3: जी जी जी मैम साहब।
0: अरे अरे लता हाय हाय हाय।
1: जी प्रीतम।
0: लता मुखे लगे तो तही मथे जो सूर आज मुजी जान खणी कर रहंदो। लता
1: ने प्रीतु ये न चो।
0: अरे मां बिल्कुल सच चई रहे है लता।
2: यस।
0: अरे मां बिल्कुल ने झाबी करी लता। अरे मुजी जान भी बचे लता।
1: हे भगवान हाने मां छा कया।
0: लगे तो त मुजी हण बचण जी काय भी उम्मीद कोने लता।
1: नहीं नचो तमा खा पोए मुंजो छा थिनो। मां भागण किडा वेंदस न तमा बिल्कुल ठी वेंदा। पियो पियो मां डॉक्टर के थी फोन करयास। फोन करी थी घुरयास। हां तमा ठीक थी ना? बिल्कुल ठीक थी ना?
0: हां जल्दी करिस।
1: हेलो हेलो हेलो डॉक्टर। हां डॉक्टर मैडम। हां डॉक्टर साहब। हां इनन जी तबीयत डाडी बिगड़ी पई है। हां तमा जल्दी अचो। हां मैडम।
2: यस निमो घर जो पतो बुधाइस।
1: हां डॉक्टर। हां तमा जल्दी अचो। हां हां घर जी एड्रेस डी अरुणा नेहरू नगर। हां हां यस डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। हां तू चिंता न कर प्रीतु। पेनो पाणे के संभाल।
0: अरे अरे अपारे ई सूर तो बर्दाश्त खा बाहर आ लता।
3: हाँ उठो दीदी गोरी है पानी।
1: हाँ हाँ गोरी गोरी पी। हाँ पानी पी। हाँ हाँ हाँ तू बिल्कुल ठीक थी ने प्रीतु। तू बिल्कुल ठीक थी ने।
2: वेरी गुड निमू। बस हाँ डॉक्टर जी एंट्री है। तू इन्हें हालत में हर घड़ी बाहर निहारिंदी रहो। अचानक बाहर घंटी बजंदी तू जल्दी सा उठी करे दरवाजे खोलन लाए बाहर वेंदी है।
4: Yes, where is patient? अरे भाई छा थियो? छा मुंजे अचन खा पहरी ही मरीज भगवान के न न न न न यो किए थो थी सगे जिंदगी में पहरो दफो कै मुखे फोन करे पेंजे घर घुरायो ए अज पहरो दफो ही।
2: पर मैडम ता आयो केर?
4: छा मतलब
0: मतलब यो की तवा मैडम आयो केर?
4: अरे भाई मां डॉक्टर वांदी बसराणी तवा ही त मुखे फोन करे हिनन जी तबीयत डाढ़ी खराब आए जल्दी अचो डी नेहरू नगर में अचन लाए चयो।
2: व्हाट ही निमो
0: निमो
1: मु मुखी लगे थो तकड़ तकड़ में सचमुच डॉक्टर के फोन लगी हुई।
0: अरे मरी व्यासी लगे थो फोन तो फोन पर मुखे लगे थो कि हु तकड़ तकड़ में वो दवा वाली गोरी मां खाई हुई है।
1: पर गोरी तो रामू खणी आयो।
0: अरे तो ही तो मुखे गोरी अच्छा था खाराई हुई। अरे अरे ओ रामू जा पुट हेरा चना तू सच बच गोरी छो खड़ी आए।
3: अरे हाणे इन में मां छा कया मैम साहब चयो ए मां गोरी खणी आयो।
0: मैम साहब चयो ए मां गोरी खणी आयो सवाए तो के मैम साहब चे

0: ते जहर खणी अच छा तो जहर खणी दे
1: ये सब छा नाटक लगाए रखियो अथव
2: नाटक नाटक ये ये ये यस यस यस यस यस डॉक्टर असी त नाटक जी रिहर्सल करे रहया वासी पर जल्दी जल्दी में ने निर्मला ता के सचमुच ही फोन करे छी
1: छा मतलब
2: हा डॉक्टर्स ही वठो सुभाण जे नाटक जी पास ता फैमिली समेत अच जो
0: हां डॉक्टर बिल्कुल सुभाण तमा फैमिली समेत अच जो
1: फैमिली समेत ये तमा पास देण जो डाडो सुठो तरीको गोल्यो आहे इयो त सुठो थयो जो मां डॉक्टर वांदी पेंजी वांदी डिस्पेंसरी ते वांदी बैठी वस खैर हन पास के ही फीस समझी चुपचाप थी वना वडाया नाटक करण वाला रिहर्सल ता कन तकर तकर में सचमुच फोन ता कन डॉक्टर के वो भी डॉक्टर वांदी के वडाया नाटक करण वाला फोन ता कन तकर तकर में
0: अरे बुदो ना सही अरे डॉक्टर साहब पर सही हाल तो बुदो अरे बुदो तो सही डॉक्टर साहब
1: वना जी मां मां डॉक्टर वांदी तहां वांगण वांदी ना आया
2: सत्यानाश दिसो नाटक करण वारन जी इज्जत मुफ्त में चार गालियों बुधियों सी पासो भी रिन्यू सी हिन खा पो बेइज्जती पर निर्मला तो कमाल कयो यार हां सचमुची
3: ठीक है एक दफो चयो तो सही गलती थी वई
0: अरे खैर चल चंगो काई गाल कोने हां जको थयो सो थयो पर रमेश एक गाल आए निमो रोल तो निभाए वेंदी आ निमो सुभाणे नाटक में वाह वाही रुगो तुजी थींदई चंगो रमेश हाले मा हला थो अरे घणे कम प्या यार बाकी रिहर्सल शाम जो मंच ते अची कर कंदासी
2: ठीक ठीक ओके ओके
1: ओके
2: बाय बाय
1: बाय
4: रामू ओ रामू
5: आयो साईं
4: अरे किथे आई जल्दी अच
5: हां हां साईं अच्छा तो ओरे मालिक अची रहे हैं साईं साईं घंटी थी वजे फोन खणो
4: हेलो हां हां हां मां सोबराज मलिक गलाए रहे हूं केर अरे भाई टोपणदास है हां भाई केड़ी खबर चार आए बे सब ठीक ठाक है ना हां हां केंजे ले निर्मला ले हां अच्छा अच्छा हां हां आहा छोने छोने डाडो सुठो हां अचो ने अचो अचो हां छा नालो दन कीमत राय हां हां अच्छा वो कपड़े जा व्यापारी हैं अच्छा अच्छा ठीक है सुभाणे रात जो 9 बजे बिल्कुल ठीक जरूर अचो जरूर जरूर रामू अरे ओ रामू
5: हां हां जी साईं जी साईं
4: बुद ही वट ही 2000 रुपया रख पाण वट आए शाम जो जेको आए सुठी माए वाली फर्स्ट क्लास मिठाई वठी अजे
5: हां साईं
4: आए मिठाई सा गडो क जे थोड़ो ड्राई फ्रूट काजू किशमिश बादाम वगैरह वठी अजे
5: जी साईं
4: आए बुद जेको आए यो कोल्ड ड्रिंक भी वठंदो अच जे
5: ठीक है साईं
4: ठीक है ना
5: साईं कोई मेहमान अची रहे हैं छ
4: हां हां वो पांजी निर्मला के दिसण छोकरे वाला अची रहे हैं
5: सुभाणे रात जो नाटक जो तो थियो सत्यानाश
4: अरे तो खेरो को थोड़ो कम चाहो तो बड़बड़ पे तो करी छापे तो बड़बड़
5: ना ना साईं कुछ ना साईं मिठाई मिठाई काजू किशमिश मां सुभाणे रात जो वठी नम साईं ठीक है सरकार बिल्कुल
4: कमाल है यार अजीब मानू है रगो बक बक लगी वई दस रामू अरे ओ रामू
5: जी साईं
4: सब तैयारी थी चुकी है ना पांजी
5: हां साईं ता बिल्कुल भी चिंता ना कयो सब तैयारी करे रखी हमू
4: अरे यार पर 8:30 थी चुका है ने नेमू आए रमेश अन्या आया ही कोने
5: बस साईं अचण वाला हुंदा
4: ओफो भई एक खां वधी का एक है अरे घर में मेहमान नवाजी जरूरी ना है नाटक दिसण जरूरी है अरे घट में घट उन नेमू के तो रुकण खपे ना पर न मा तो नाटक दिसण वेंदस डाडो सठो नाटक है
5: साईं बाहर आइन बस इंदा ही हुंदा
6: केर सोबराज मल अरे भाई सोबराज मल
4: अरे लगी तो मेहमान अची वेन पर ये निमू है रमेश अजा ताई पैदा ही कोन थेन रामू तू संभाल जे अचो अचो अचो सही
6: जय झूलेलाल साईं
4: जय झूलेलाल साईं
6: जय झूलेलाल
4: अचो अचो अंदर अचो ना
6: हां
4: हां वियो साईं वियो तमा वियो
6: हाँ तवा के छा बुझाया सोबराज मल शहर में अजकल नाटक जी एड़ी बाह लगी पई आ जो पुछो ही ना ए अजकल आ छोरा पी माओ जे चवण का तो बाहर ही लगा पया है बस रुगो नाटक पढ़ाई लिखाई में तो उनन जो ध्यान ही कोने इसो ना अजकल जा मां पी अलाई किए पेंजी जवान धीरन के नाटक में कम करन ला मोकले रहा है को भी शर्म लिहाज तो रहयो ही काने
4: तवा सही चई रहा है साईं टोपणदास
6: अरे

0: अरे मां भी अजीब माण्हू आहियां, पहिरियों तव्हां हिननि सां गॾिजो। हीअ आहिनि हिन शहर जा मशहूर कपिड़े जा वापारी सेठ कीमत राय।
1: साईं जय झूलेलाल।
2: जय झूलेलाल साईं।
0: ऐं तव्हां सेठ शोभराजमल।
2: राम राम साईं। जय झूलेलाल।
1: जय झूलेलाल साईं। देर सां अचण जी मां माफ़ी थो चाहियां, दरअसल अॼु नाटक ॾिसण जो मूड ठही पियो।
2: नाटक? इन जो मतिलब तव्हां बि नाटक में दिलचस्पी रखंदा आहियो?
1: न न न न, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे।
3: हा साईं, ॻाल्हियूं त पई थींदियूं, वठो मिठाई ऐं शरबत खणो।
2: खणो साईं, खणो मिठाई, खणो धोपड़ा, तव्हां बि खणो मिठाई।
0: ॻाल्हि इहा आहे शोभराजमल, त नाटकनि में दिलचस्पी सेठ कीमत राय जी न, पर हिननि जे शकील जे पुट जी आहे। अॼु जे नाटक में हू बि हिसो वठी रहियो हो, इन करे।
2: अच्छा अच्छा, दरअसल अॼु जी पीढ़ीअ जो झुकाव जरा नाटकनि जी तरफ़ वधीक थी रहियो आहे। मुंहिंजो पुटु रमेश ऐं निमू बि नाटक ॾिसण ई विया आहिनि, बसि अचण ई वारा हूंदा। खैर, इहो त ॿुधायो साईं टोपणदास, छोकिरो कंदो छा आहे?
1: साईं, इहो टोपणदास खां न पुछो, इहो छोकिरे जे पीउ खां पुछो, यानी मूंखां, सेठ कीमत राय खां। मुंहिंजो छोकिरो अञा कॉलेज में पढ़े पियो, पढ़ाई करे पोइ अची पंहिंजो हीउ कपिड़े जो वापारु संभालींदो। तव्हांजी धीअ
2: उहा बि अञा पढ़ी रही आहे साईं।
0: सेठ साहिब, छोकिरो हिकदमि हीरो अथव, हीरो।
1: सो त सभु ठीकु आहे टोपणदास, छोकिरी पोइ पिया ॾिसंदासीं, पर तव्हां हिननि खां इहो त पुछो त ॾेती लेती घणी ॾींदा?
0: इजो साईं, हा त शोभराजमल, रिश्तो त तव्हां हिक ते हिक सां पक ई समुझो।
2: पक? पर छोकिरे छोकिरी जी रजामंदी बि त ॾिसणी पवंदी टोपणदास। हीउ असांजो ज़मानो त आहे कोन कि माउ पीउ शादी पकी कई ऐं असां चुपचाप वञी शादी करे वरिती। अरे हाणे ज़मानो बिल्कुलु बदिली रहियो आहे।
0: इहो त सभु ठीकु आहे सेठ साहिबु, पर छोकिरो ऐं छोकिरी ॾिसण खां पहिरियों ॾेती लेतीअ जी ॻाल्हि त थी वञणु घुरिजे।
2: ॾेती लेती?
0: हा साईं, अॼुकल्ह इन्हीअ जो ई त पुठियां दुनिया हली रही आहे।
2: ॿार बि अची विया आहिनि, अचो अचो।
1: अरे रमेश,
4: तव्हां असांजे घर? जय झूलेलाल साईं।
1: जय झूलेलाल।
2: तव्हां मुंहिंजे पुट रमेश खे?
4: अरे डैडी, ही त अशोक जा पापा आहिनि।
2: अशोक?
4: हा।
0: अरे वट टट, इहा बि सुठी ॻाल्हि थी आई।
1: त हीअ तव्हांजी न्याणी आहे?
2: जी साईं, इहा ई आहे मुंहिंजी धीअ निमू।
1: वाह निमू वाह, अॼु जे नाटक में त तुंहिंजो रोल ॾाढो ई सुठो रहियो, ऐं ख़ासि करे उहा मेनकाज वारी डांस।
2: मेनका जी डांस? अरे सेठ साहब, तव्हांखे का ग़लति फहमी थी आहे, हिनखे भला नाटक सां कहिड़ो वास्तो? अरे हिनखे त घर जे कमनि मां ई फुर्सत कीन मिलंदी आहे, पोइ वरी मेनका वारी डांस सां।
1: न साईं न, मुंहिंजी अखियूं धोखो नथियूं खाई सघनि।
2: छा?
1: मूंखे माफ़ कजो शोभराजमल, मूंखे नूंह खपे, नूंह, कंहिं नाटक जी हीरोइन न।
2: पर सेठ साहब, तव्हांजो पुटु अशोक बि त नाटक में?
1: अरे साईं, उहो त छोकिरो आहे ऐं अञा एम ए पियो करे, पोइ पढ़ी लिखी करे पंहिंजो अची धंधो संभालींदो, पर ही नाटक करे हुनखे एक्टर कोन ठहणो आहे।
0: अरे भाई सेठ कीमत राय, निमू बि त अञा पढ़ी रही आहे, वरी हिनखे कहिड़ो हीरोइन ठहणो आहे? तव्हां त अजायो नाराज़ थी रहिया आहियो।
1: तव्हां अञा सम्झी कोन रहिया आहियो टोपणदास, ॾिठव कोन ॾेती नेतीअ नाले सां ई हिननि कीअं मुंहुं बिगाड़े छॾियो।
0: तव्हां चिंता न कयो सेठ साहिबु, मां मञाईंदुसि। हेॾां सेठ शोभराजमल, हेॾां अचो, हेॾां अचो सेठ साहिबु, हेॾां अचो। तव्हां अजायो ॻाल्हि खे वधाए रहिया आहियो, हाणे त तव्हांखे छोकिरे जे बारे में बि ख़बर पइजी वई आहे। तव्हां त रुगो ॾेती लेतीअ जी ॻाल्हि कयो, बसि सभु बाक़ी मूं ते छॾियो।
2: ॾेती लेती? तोखे त ख़बर आहे टोपणदास, मां हिन ॾेती लेतीअ जे सख़्तु ख़िलाफ़ु आहियां। अरे अॼु न त सुभाणे असां सभिनी खे मिली करे हिन ॾेती लेतीअ खे समाज मां ख़तमु करणो ई आहे।
0: तव्हां बि कहिड़ी ॻाल्हि करे रहिया आहियो सेठ साहिबु, अॼुकल्ह शादीअ में रौनक रुगो ॾाजे सां ई थींदी आहे, बिरादरीअ में समाज में इज़त आहे त रुगो हिन ई शइ जी।
2: ॾिसो टोपणदास, मां तव्हांखे हिकु दफ़ो चई चुको आहियां, मां हिन ॾेती लेतीअ जे सख़्तु ख़िलाफ़ु आहियां, सख़्तु ख़िलाफ़ु।
1: ठीकु आहे, छॾियो टोपणदास, जीअं हिननि जी मर्ज़ी। हाणे असांखे इजाज़त ॾियो साईं, मूंखे जरा सी बि ख़बर न हुई त तव्हां घर घुराए करे असांजी हीअं बेइज़ती कंदा। आख़िर तव्हां समुझो छा आहे? अरे मुंहिंजे पुटु अशोक लाइ छोकिरियूं खुटियूं कोन्हनि हिन शहर में, तव्हां जहिड़ा मुंहिंजे अशोक लाइ मुंहिंजे घर चकर लॻाईंदा आहिनि, चकर।
2: मां तव्हांजे दर ते कीन आयो हुउसि सेठ कीमत राय, तव्हांजे छोकिरे लाइ छोकिरियूं घणेई आहिनि त मुंहिंजी धीउ निमूअ लाइ बि छोकिरा को खुटा कोन आहिनि, तव्हां वञी सघो था हितां।
1: चङो हलो टोपणदास। अरे अशोक, तूं हिते, तूं हिते छा पियो करीं?
3: वाह वाह पापा, वाह पापा, मां त हिते रमेश सां मिलण

0: आयो हुअस, पर हिते तव्हांखे ॾिसी ॾाढो हैरान थी वियो आहियां। पापा, तव्हां हिते ॾेती लेतीअ ऐं ॾाजे जे चकर में फासी रहिया आहियो।
1: चङो, तू मूंसां गॾु हल।
0: बिल्कुलु पापा, मूंखे त तव्हां सां गॾु ई हलणु घुर्जे, पर हलण खां अॻु मां तव्हां सां कुझु पुछण थो चाहियां। पापा, छा तव्हां हिते मुंहिंजी शादी तय करण आया हुआ? हीअ ॾाजे जी ॻाल्हि मुंहिंजे बारे में हली रही हुई पापा, पर पापा मूंखे ॾाढो ॾुख आहे त रुगो हिकु ई ॻाल्हि जो, कि तव्हां मुंहिंजे दिल खां कॾहिं की न पुछो हो कि मां छा थो चाहियां, मुंहिंजी दिली इच्छा छा आहे। हिन ॾेती लेतीअ, हिन दान दहेज खां मूंखे बि सख़्तु नफ़रत आहे पापा। पाण तव्हां पंहिंजे दिलि खां पुछो त तव्हां ही जेको करे रहिया आहियो छा इहो ठीकु आहे? ही कपिड़े जो वापारु त तव्हां अॼु चइनि पंजनि सालनि खां करे रहिया आहियो, ऐं तंहिंखां पहिरीं जी ॻाल्हि शायदि तव्हांखे यादि न आहे पापा, जॾहिं मंजूअ जी शादीअ जी तारीख़ नज़दीक हुई ऐं मंजूअ जे सावरनि नाणे जी घुर कई हुई, त तव्हां शायदि पापा हिन रमेश खे विसारे वेठा आहियो, हिन जे अहसाननि खे विसारे वेठा आहियो। इहो उहो ई रमेश आहे पापा, जंहिं तव्हांजी इज़त बचाइण जे करे पंजनि ॾींहनि जे अंदरि भॼ डुक करे महिनत करे नाटक कयो हो, ऐं तव्हांखे हुन नाटक जा 50,000 रुपया ॾिना हुआ। छो, छाजे करे? छाजे करे हू भॻो? तव्हांजी इज़त जे करे, अरे मंजूअ जे करे, ऐं अॼु तव्हां पापा।
1: बस कर पुट, बस कर, मूंखे सभु यादि आहे, सभु यादि आहे। मूंखे माफ़ कजो सोभ राजमल, माफ़ कजो। मां पैसो कमाए ऐं पैसे जो ई लालची थी वियसि। मूंखे भला कहिड़ी कबी आहे? भॻवान जो ॾिनल मूंखे सभु कीअं आहे, सभु कीअं आहे? मूंखे माफ़ कयो सोभ राजमल, माफ़ कयो
0: पापा। पापा,
2: भाई सेठ साहब, शुभ मुहूर्त निकिरी रहियो आहे, छोकिरे छोकिरीअ खे आशीर्वाद ॾींदव कि न?
1: हा हा, छो न, सदाई खुश रहो। पर अशोक, हाणे जॾहिं बि तूं नाटक करी त मूंखे रोल ज़रूर ॾिजांइ
0: पापा।
1: हा, अरे बचपन में मूं स्टेज ते घणेई नाटक कया आहिनि, पर पोइ हिन 99 जे चक्र में अची सभु विसारे वेठसि। अरे असली मनोरंजन त इहो ई आहे, ऐं सची शिक्षा बि, जेका असांखे हिन नाटकनि जे ज़रिए मिली सघे थी, ऐं असांजी पंहिंजी सिंधी संस्कृति ऐं ॿोलीअ खे बचाइण में मदद करे सघे थी।
0: हा पापा,
3: अरे वाह, मूं मिठो कयो।

दिल लगी। साथियों हीअंर तव्हां ही सिंधी नाटक ॿुधी रहिया हुआ, जंहिंजा लेखक हुआ श्री सुरेश सिंधु ऐं पेशकश हुई श्री चंद्र प्रकाश अडवाणीअ जी। हिन नाटक में हिसो वठंदड़ कलाकार हुआ पूजा चांदवाणी, रमेश भंबाणी, दिलीप रामचंदाणी, हेमंत खटवाणी, कविता सचदेव, मनोज आडवाणी, रमेश कुमार रंगाणी ऐं वासुदेव मोटवाणी। साथियों अॼु आहे 7 जुलाई ऐं अॼोके ॾींहं खे आलमी चॉकलेट ॾींहं जे रूप में मल्हायो वेंदो आहे। चॉकलेट जो इतिहास हज़ारनि सालनि पुराणो आहे। मञियो वेंदो आहे त चॉकलेट जी शुरुआत मध्य ऐं ॾखिण अमेरिका जी प्राचीन सभ्यता खां थी हुई। उन समय में कोकोआ जे ॿिजनि खे पिसी करे हिकु लिक्विड तयारु कयो वेंदो हो। समय सां गॾु चॉकलेट यूरोप पहुती ऐं धीरे धीरे पूरी दुनिया में मशहूर थी वई। जन्मदिन हुजे या त्योहार, सफलता या खास मौकनि ते माण्हू हिकु ॿिए सां चॉकलेट साझा करे उन्हनि खे मुबारकबाद ॾींदा आहिनि। पर छा चॉकलेट सिहत लाइ फ़ाइदेमंद बि आहे? इहो सुवाल हर कंहिंजे मन में हूंदो। त साथियूं मां ॿुधायां, अगरि ही संतुलित मात्रा में खाई वञे, ख़ासकर त डार्क चॉकलेट, त हुन में एंटी ऑक्सीडेंट हूंदा आहिनि जेके दिल ऐं दिमाग़ जी सिहत लाइ फ़ाइदेमंद बि थी सघनि था। पर वधीक खंड ऐं वसा वारी चॉकलेट जो घणो इस्तेमालु सिहत लाइ ठीकु कोन्हे। इन करे हमेशा संतुलित मात्रा में ही असांखे चॉकलेट खाइणु खपे। साथियों हिन चर्चा सां गॾु ही असांजे अॼोके सिंधी प्रोग्राम जो वक़्तु इते ही पूरो थो थिए। वरी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ विस्पत ते। तेसीं ताईं दीपिका खे मोकल ॾींदा। नमस्कार।

FM 101.6 MHz पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:40 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस गीत को लिखा है जुनेद वसी ने और संगीत से सवारा है चिरतन भट्ट ने। आवाजें जुबेन नौटियाल और नीति मोहन की। फिल्म का नाम है जॉली LLB 2।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं फिल्म जैकपॉट का ये गीत। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम

Sie kommt umher.

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए रश्मि विराग के लिखे गीत को। संगीत दिया है अमाल मलिक ने। इस गीत को आवाज़ दी है अरमान मलिक ने। फिल्म का नाम है शेफ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र के आमेर चैनल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: देश की जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि ये योजनाएं देश में आधुनिक और बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। श्री गडकरी ने कहा कि इनसे रोजगार और व्यापार के नए अवसर बढ़ेंगे, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा और देश की माल परिवहन व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एजेंसी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक पहले सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां खड़े लोगों को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश जालौर के जसवंतपुरा में दर्ज की गई। जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में तेज बारिश के बाद हाईवे पर पानी भर गया, जबकि जालौर के भादराजुन क्षेत्र में पहाड़ियों से झरने बहने लगे। मौसम विभाग के अनुसार पाली जिले के देसूरी में 8 सेंटीमीटर, जोधपुर के झवर में 5 सेंटीमीटर

0: सेंटीमीटर बारिश हुई। सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी 2 इंच तक बारिश हुई, जबकि दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 और 1:10 सेकंड हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही हैं श्रीमती खुशबू हर्ष और श्रीमती रेखा आचार्य।

0: घर आंगन सुनन वाली मारी सगली बहना ने मैं रेखा आचार्य और मैं खुशबू हर्षरा घना नगना राम राम सा। खुशबू बहन, आज सुबह मारे मोबाइल रे मैं एक चोखो सा संदेश आयो।
1: अच्छा।
0: और संदेश पढ़ रही मैंने लागे कि आज मैं मेरी चर्चा थासू और मारे जिकी कार्यक्रम सुनने वाली बहना है वो सु करसू
1: जरूर।
0: तो अभी मैं और संदेश थो कि टाबरा ने आप जिको सिखाओ नी वो ही बिहारे व्यक्तित्व की पहचान बन जावे।
1: सही बात है रेखा बहन की टाबरे जी की शिक्षा हुए नी बातो स्कूल रे मायने मास्टर सुले वे पण बिहारी असली पाठशाला तो घर से ही शुरू हो जावे है। परिवार सदस्य बियाने जिया जावे बिया ढाल सके है। टाबरा में ऐसा संस्कार सिखाया जावे जिका आगे चाल प्रार बिहारो भविष्य है जिको सुनिश्चित कर सके। छोटी छोटी बाता ने ध्यान रखनो घणो ही जरूरी हुआ करे बहना क्योंकि टाबर तो बो ही सीख सी जिको बो देख सी। अगर आप चावा की टाबर है जिका समझदार और चोखा इंसान बने तो कई बाता ने ध्यान में रखनो घणो ही जरूरी है।
0: सही कह रहे हो खुशबू बहन। और देखो वीरे सागे एक कहानी भी थी जिकी मारी इच्छा है कि मैं अपनी बहना से चर्चा करूं।
1: जरूर।
0: तो कहानी आई कि एक स्कूल रमाए क्या हुआ कि बच्चों ने मैडम बढ़ा रही हुए और उन्हें भी दिन वे अच्छा संस्कार और शिष्टाचार बारे में ही बता रही हुए कि वीरो जीवन रमाए क्या महत्व है। तो बच्चों ने समझाने खातिर एक कांच रो बर्तन लियो और वीरे माए छोटी छोटी जिकी बॉल हुए वे डाली। बच्चों ने खेल खेल में जिकी आप बॉल देखो यो छोटी छोटी डाल दी। हाँ जी सुबह बर्तन पूरा भरीज गयो। मेरे बाद मैडम छोटा छोटा कंकर लिया वे भी बर्तन में डाल लिया। तो जटे जटे जगह मिली वे कंकड़ भी ने माए समाये गया। फिर भी हाथ में आप रेत ली वे रेत ने भी बीरे माए डाल लियो। तो इस करके क्या है वो जिको कांच रो बर्तन हो पूरा भरीज गयो। फिर मैडम पानी डाल लियो पानी भी आपकी जगह बना तो वो रेत और कंकड़ रे बीच जावन आ गयो। तो वह बच्चा जी का है वह बड़ा ही ध्यान से देख रहा था पर बाल लोगों ने समझ में कहीं नहीं आ रहे थे कि मैडम जी क्या कर रहे हैं। तो मैडम बच्चों ने समझाया कि एक इंसान भी कांच से बर्तन की तरह हुए बीरे माए काफी चीजें आ सके अगर आपा और मतलब आप और मतलब आपा ने माता है कि आपो क्या चीज ले सो क्योंकि अगर आपो ये कांच रे बर्तन में सबसे पहला रेत भरता तो क्या होता बीरे माए गेंद माती को बॉल डालता बा माती को नहीं। तो सोचो जब भी मैं बॉल नहीं आती तो भी ही इंसान रे माए और जिके में आप अगर बात करो टाब रारी तो वहां लोगों ने सबसे पहला संस्कार बीज ही बोना चाहिए क्योंकि संस्कार इसी हुए जिके सुवरे जीवन री नींव तैयार हुए।
1: आ तो थे गणी जोखी बात बताई रेखा बहन की टाबरा रे मायने संस्कार तो होना ही चाहिए। बिया रे मायने खाली किताबी ज्ञान हुए और जरूरी को नहीं किताबी ज्ञान रे साथे साथे बिया रे मायने व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। जब बेकठी परिवार में बैठे या समाज में बैठे कोई कार्यक्रम रे माए जावे तो बिया ने ओ पतो हुए कि मने किसे आदमी सु किया बात करनी है और वो जद ही उसी जद आपा भी घर परिवार रे मायने आपा रज का बड़ा बुजुर्ग है।

0: या छोटा टाबर है बिया सुकिया बात करा के भाई बे देख ही सीख सी बिया बिया ने तो ठाकुर नहीं हुए कि सही गलत कही हुए क्योंकि टाबर तो टाबर हुआ करे है
1: टावरा में आज की शिष्टाचारी बात है आई बात रो भी सूचक है कि वोरी परवरिश की हो हाँ। उन्हें संस्कार किसा दिया है इस बच्चा बड़ा और जिका बेहतर इंसान बने और अगर वो में कोई भी कमी हुए तो बीने भी वे स्वीकार कर ले वे और मतलब सफलता या कमी रो बीरो पे कोई असर हुआ को नहीं जब बीरे माए अच्छा संस्कार हुए इसलिए मैं ना बच्चों ने बचपन से ही शिष्टाचार सिखाना शुरू करो
0: जरूर। तो आ तो हुई देखो चर्चा किया पा टाबरा रे साथ है किया व्यवहार करा बिया ने कितनी चोखी चोखी बात किया सिखावा अबे सुनावा बेना ने एक चोखो सो की तड़लो।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

0: कशुबेन आपारे भारत देश रे माए कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, और यदि आ ही विविधता इन्हें सब सु अलग बनावे, हर भाषा रा लोग भी भाषा री समृद्धता तो अठे देखते ही बढ़े, और जब हिंदी भाषा रो नाम आवे तो आ भाषा कितनी समृद्ध है नी।
1: सही बात है रेखा बहन कि आ भाषा तो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। इरे मायने अनेक ऐसा साहित्यकार होया हा जिनने आपरी लेखनी और समझ सुही ई समाज ने नवी सोच और नवी दिशा दी।
0: बिल्कुल, और आज ऐसा ही महान साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी री जयंती पर आपा प्यारे जीवन और साहित्यिक योगदान ने याद कर सो। मैंने पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी रो जन्म 7 जुलाई यानी आज रे दिन 1883 में जयपुर में हुयो। वह केवल साहित्यकारी नहीं बल्कि संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, पाली और इतिहास रा गहन विद्वान भी था। यारी विद्यता रो सम्मान पूरे हिंदी साहित्य में करियो जावे है। और ई सब भाषाओं रे क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी करियो हो।
1: और बेना बिहारी जी की रचना ही नहीं बे काल जई थी कि बीरे मायने सबू जी की प्रसिद्ध रचना आपा कह सका बे है बा है उसने कहा था
0: थी। हाँ खुशबू बहन, ई कहानी ने तो मैं आपरे पाठ्यक्रम में स्कूली शिक्षा रे दौरान भी हाँ, पढ़ी थी।
1: सही है,
0: आ कहानी हिंदी साहित्य री श्रेष्ठ कहानियों में सु एक गिनी जावे है। इरे माय प्रेम, कर्तव्य, त्याग, वचन निभाने दी जी की भावना है। ये बात आ बात ही संवेदनशील ढंग से उत्सव प्रस्तुत में करियो है कि आज भी ये कहानी ने पढ़ूनी तो मन मारा भावुक हो जाएगा।
1: तो सही बात कही थे कि किणी भी महान लेखक री जी की पहचान होया करे नी बाबेरी रचना ही होया करे है। समय बीतने रे बाद भी लोघा रे मन रे माय ने अगर बा रचना आपरी जगह मना रखे नी तो बा कितनी बड़ी बात होया करे है। और यारी तो भाषा है जी की सरल, प्रभावशाली और जीवन रे बहुत ही आपा कह सका कि करीबी सु आपा महसूस है वा कर सका। हाँ, और आज की है भाषा बा अभी सिखावे की साहित्य केवल मनोरंजन रो साधन ही को नहीं कि भई आपा खाली बैठा तो साहित्य पढ़ला पर मनोरंजन हो जैसी नहीं बहना, बल्कि समाज ने जागरूक करने रो और मानवीय मूल्यों ने मजबूत करने रो माध्यम भी है।
0: बिल्कुल सच्ची बात कही। और बहना आज रो जी को वक्त है नहीं जिन रमाए सब रा सब बिजी है मोबाइल रमाए तकनीकी दुनिया में। जद आपा ईसा साहित्य कारोरी रचना ने मतलब की पढ़ो और केवन इन्हें पढ़ना भी चाहिए, इसु प्रेरणा भी लेनी चाहिए, इसु आपारी भाषा रे साथे साथे आपारा जिसका संस्कार और संवेदना होनी वह भी समृद्ध उसी। ये वास्ता जरूरी है कि बहना खुद भी अच्छा साहित्य पढ़ो और विने आपरी आदत भी बनावो और टावरा ने भी सिखाओ कि ईसा साहित्यकारों ने पढ़ना ब्योरे खातिर कितो जरूरी है, क्योंकि आपरी भाषा आपरी संस्कृति सु और आपरे साहित्य सु जुड़ पर ही आपा आपरी जड़ों सु जुड़िया रह सको। और बहना अबे आपा जुड़ो ई गीतड़ लेसु।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: खुशबू बहन, देखो एक वक्त जब गांव में कोई बेटी 10वीं या 12वीं कर लेती थी तो लोग कहता, या कह नहीं पढ़ भी लेती तो कहता कि अरे तो खूब पढ़ ली
5: है,
4: अब एरो ब्याह कर दो वरना ज्यादा पढ़ लिख लेसी तो ब्याह भी नहीं होला।
5: पर देखो नहीं रेखा बहन की आज वह ही बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, शिक्षिका, बैंक अधिकारी, वकील, बनप्रीर, आपरे परिवार री, समाज री और आपरे गांव रो नाम रोशन कर रही है।
4: बिल्कुल।
5: बस अगर बिया ने सही मार्गदर्शक और सही वक्त पर सही जानकारी मिलनी चाहिए तो वे किसु भी लारे कोनी है। वे वो बता दियो है कि वे भाई हर क्षेत्र रे मायने आगे है और वे कई कर निकले ही है।
4: आ बात तो सही है। कई बार देखो प्रतिभा तो बहुत हुए पर जानकारी रे अभाव में भी कि वे समझ ही पावे कोनी जी की बेटियों हैं या जी को टाबर पढ़ रहे हैं कि आगे किसो विषय चुने, कि क्षेत्र में जावे और किसी परीक्षा की तैयारी की जावे।
5: ई वास्ता ही रेखा बहन कैरियर काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैरियर काउंसलिंग रो मतलब हुए कि खाली नौकरी ही बताना नहीं, बल्कि टाबर री रुचि, बियारी क्षमता और बियारे सपनों रे अनुसार सही दिशा दिखाणो। जो कि अगर एक बेटी री रुचि है किरी ड्राइंग में है, किरी पढ़ने में है, तो भी रुचि रे अनुसार ही बियाने आगे विषय लेनो है या बियाने पढ़नो है। कोई चिकित्सा रो क्षेत्र चुने, कोई समाज सेवा रो चुने, कोई कानून रो चुने, तो सबरी रुचि है नी जिकी बा अलग अलग हुआ करे। तो वो जरूरी है कि सबरी रुचि अलग हुए ने तो भी रुचि रे अनुसार ही बियाने आगे पढ़ाई करनी या नौकरी करनी चाहिए।
4: सही कह रहे हो खुशबू बहन। और देखो नहीं, सरकार भी आपकी ग्रामीण बेटियों खातिर छात्रवृत्ति योजनाएं ला रही है, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार उपलब्ध करा रही है। पर जरूरत क्या है कि बस सही जानकारी लेने री और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़न री। और इरे माए देखो आपा मायोरी जी की भूमिका होनी वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। अगर वह लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना करते हुए ब्याने शिक्षा समान रूप से देवे नी और ब्यारे हौसलो देवे और ब्यारी रुचि ने समझे तो आपकी यह बेटियां बहुत आगे तक जा सके।
5: बिल्कुल साची बात है बेना, कि अगर आपा अपारे टाबरा खातर कोई भी निर्णय लेवा तो जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं लेनो। कदी कदी दूसरा रे टाबरा ने देखा देखी आपा अपारे टाबरा ने भी बोई करने रो कहवा तो वो गलत हो सके। भाई सामले टाबरी अलग रुचि है, अपारे टाबरा री अलग रुचि है, तो यह कोनी कि भाई आपा कैरी दबाव में या कैरी सीख में या देखा देखी आपा टाबर ने भी दबाव में डाला और फिर भी बाद में बिनो इसो कोई विषय है या इसी कोई काम है भी मैं डाल दा कि भी में कोई फायदो ही नहीं हुए है। बिसु अपने भी नुकसान हुए और टाबर रुचि को कैरियर हुए नहीं वो भी खराब हो जावे, क्योंकि बिना रुचि तो कोई भी काम में मन को नहीं लगे। आपो भी देखो रेखा बहन की घरों काम करा, अगर आपो अभी कोई काम है मन नहीं हुए नहीं तो वो काम पछे सही गुण नहीं होते। अपन भी लागे लाग जाए कि भाई वो काम एक बार छोड़ देना चाहिए, दूसरो काम कर लेना चाहिए। तो सबू जरूरी है कि कोई भी काम करा पिंडरे मायने रुचि रखनी।
4: सही कह रहे हो, टाबर जी को होनी में दबाव में रह रहा जब पढ़ावो नहीं तो बीरो कोई फायदा हो ही कोनी। ई वास्ता जी विषय रे मोय बीरो मन लागे वो ही बीरो करियर हुआ करे। अगर बीरो भविष्य भी चोखो बने तो आपो ने क्या चाहिए कि विने सही दिशा दिवो। ई वास्ता गलत निर्णय लेने री बजाय शिक्षक

0: जिका मतलब कि शिक्षक है आपोरा जिका करियर विशेषज्ञ है और जिका अनुभवी लोग हुए भी सो सलाह लेना बहुत ही ज्यादा सही रहे। साथ ही बिना मेरी रुचि रो कोई भी जैसे कि खुशबू बहन आप देखो कई बार बच्चा पढ़ाई में भी रुचि लेवे कम पढ़े वोने भी में रुचि हुए कोनी तो बिना कोई बिरी कोई हस्त हुनर हुए बिरो हस्त
1: कोई खेल में भी हुए
0: सिलाई में हुए खेल में हुए तो बिना वो हुनर भी बिरो विकास करना ताकि अगर वो पढ़ाई में कमजोर रह भी जावनी तो आप रे हाथ रे हुनर सु कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले पर आत्मनिर्भर बन सके हैं। और क्या करे कि सफलता खाली बड़े शहरों में रह पर ही आवे को नहीं है बल्कि अगर मेहनत लगन और सही दिशा मिलनी तो गांवरी बेटी भी आसमान की ऊंचाइयों ने छू सके है।
2: और जब एक बेटी शिक्षित हुए और आत्मनिर्भर बने नहीं तो केवल विचारों सु ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज रो भी नाम है जिको रोशन करे है बा हर तरीके सु आत्मनिर्भर बने। ई वास्ता ही बेटी वास्ते चाहे बेटे वास्ते जरूरी है कि सही निर्णय लेनो सही निर्णय सु बियारो जिको भविष्य है नी वो चोखो मणे है और बिया ने आगे री दिशा भी मिले है।
0: और ब्योरी जी की शिक्षा है आत्मविश्वास है और सपनों में जी की सपनों री ब्योरी उड़ान भी में भागीदार बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप और बच्चों ने हमेशा हौसलो देते रहे सो मेरे कोई भी हुनर ने मेरी पढ़ाई ने हो चाहे मेरा हाथ रो हुनर ने अगर आप ही हौसलो दे सो तो भी में आत्मविश्वास आसी ताकि ये आसमान में वा भी आप पंख खोल पूरे आत्मविश्वास से उड़ सके है।
2: तो आतो हुई देखो बेना जानकारी अब बेना ने सुनावा एक चोखो सो गीतड़लो।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: खुशबूभाई, पर्यावरण आपरे जीवन रो आधार है। स्वच्छ हवा, निर्मल पानी, हरियाली और जीव जंतु बिना तो जीवन अधूरो है।
1: बिल्कुल बेना, और पर्यावरण बचाव में लुगाया रो योगदान घणो ही महत्वपूर्ण होया करे है। घर सुलेर खेत खलिहान तक एक महिला प्रकृति री साची देखभाल करे है।
0: और लुगाया जी की वह रोजमर्रा आपरा काम करे तो पानी बचावनो, ईंधन रो सोच समझ कर उपयोग करनो, पशु और पक्षियों की देखभाल और घर आंगन में पेड़ पौधा लगावना, सभी बिरा काम होया करे।
1: साची बात है रेखा बहन की। आज कई बहना है जिकी स्वयं सहायता समूह बना प्री वर्षा जल संरक्षण, कचरो अलग अलग करनो, जैविक खेती और पौधारोपण जैसा काम बढ़ चढ़ कर रही है और अपने सागे और भी बहना ने जोड़ रही है।
0: सही कह रहे हो। देखो खुशबूबेन, आज आप जी की चर्चा कर रहे हो, आज चर्चा आई है कि मानसून से पहले जी की आप आज को एक तो मानसून आसी तो बीरे कारण भी आपने वर्षा रो पानी संचय करना, साके साके पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत ज्यादा आजकल अभी जरूरी हो गया है, क्योंकि जितो कहवे नहीं पॉल्यूशन हो रही है, प्रदूषण हो रही है, तो भी पर्यावरण रो संरक्षण करने में जिको आपो आपो योगदान दे सको, आपो आपो री भूमिका निभा सको, बस बीरी ही चर्चा आपो आज आपो बहना सु कर सो कि बहना जी की एक पेड़ केवल छाव ही देवे को नहीं। आप जब एक पौधा लगावो तो आप सोचो कि बस वो बड़ो और छाव देसी नहीं, बल्कि वो ऑक्सीजन जिको आप जीवन देवे आपने, फल फूल पक्षियों रो घर और धरती रो संतुलन भी बनाए रखे है। और राजस्थान में तो ओरण और गोचर बचावी परंपरा भी प्रकृति प्रेम रो ही एक सुंदर उदाहरण है। और मारी बहना ई परंपरा ने आगे बढ़ाने में भी
1: सामान लानो हो तो कपड़े री थैली हाथ में
0: राखता। देखो प्लास्टिक है,
1: पहले जिका आप अबार भी देखो कई कई लोग तो करे की भाई सुबह उठ पार पक्षियों ने दाणो डाले या आप पाड़सिया मायने पक्षियों वास्ते पानी।

0: हाँ
1: तो एबी है नहीं चिका, बेबी अपन करना चाहिए एबी। बिजली और पानी ने बचाउन जिसी आदत भी पर्यावरण बचाव में घणो ही काम आया करे है। और टाबरा ने भी बालपणे सु प्रकृति प्रेम सिखाणो जरूरी है। अगर बेना हर एक आदमी एक एक पौधो लगावे तो गांव और शहर दोनों हरियाली बन सके है और आज की गर्मी है नी बाबी थोड़ी कम हो जावे है।
0: आ तो है, आज की जलवायु परिवर्तन आप देखने देख रहे हो कि तो परिवर्तन हो रहा है। बढ़ती गर्मी और पानी की कमी तो वैसे ही आती बड़ी चुनौती सबरे सामने खड़ी है। तो इन रोजी को समाधान है प्रकृति रे संरक्षण में ही है। और बहना पर्यावरण बचाव केवल सरकार ही काम को नहीं बल्कि आपा सब रो कर्तव्य है, क्योंकि कोई एक जनो ही
1: काम ने कर सके को नहीं।
0: सही बात, इरे वास्ता अपन ने सब ने आगे ले हाथ मिलार कंधे सुकंदा मिलार चलनो पड़सी।
1: तो इन सारू ही बहना आपा सब ने संकल्प लेनो जरूरी है कि पानी ने बचानो है, पेड़ लगानो है, प्लास्टिक रो उपयोग नीक करनो है और धरती ने आपरी माँ समझनी है ताकि आवन वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। मारो तो था सबसु ओ ही कहनो है कि हर घर हरियाली और हर मन जिम्मेदारी घुसी तो आ धरती है जी की हरी भरी जरूर होसी। और अब देखो रेखा बहन, हर एक ग्रह घर रे मायने एसी तो जरूर हो रहा करे है। तो बिरु जी को पानी है नी आपा बिने भी काम में ले सका। अगर आपा बिने पेड़ पौधा रे मायने डाला नहीं तो आप देखो जी को बो पानी हुए बो बच जावे और पेड़ पौधा भी है नी वे बहुत जल्दी सु बढ़े है और एक भी पानी रो फायदो है।
0: सही कह रहे हो खुशबू बहन। तो देखो पर्यावरण संरक्षण कहवे नहीं, अब आप बात ही कर रहे हो कि एक रोनी बल्कि सब रोको इरे माँ आप जी की महिलाओं री, क्योंकि देखो विशेष महिलाओं रो कार्यक्रम है इसलिए बहना मैं वही कही कि महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ ई चीज में हिस्सा लेना चाहिए। आप आसे पासे जितने भी लोग हैं वे इन्हें जोड़ना चाहिए। सागे सागे आप घर जिका टावर है नी वोने भी संस्कार शुरू में देना चाहिए। पानी की बचत, बिजली की बचत, ए सब री बचत सुई जी धीरे धीरे जी की बचत उसी
1: और बदलाव है जिको धीरे धीरे
0: धीरे आने वाली पीढ़ी ने कभी भी पानी सू या बिजली सू किसू दूर कर सी।
1: तो आतो हुई देखो बेना जानकारी, अबे सुना चोखो सो गीतड़ लो।

0: और देखो नहीं, मैं ना बातें बातें में समय ही ठाई पड़ी गुनी है, घड़ी टिक टिक कर इशारा कर रही है कि आप आज आप बातें ने अठे विराम देवो। तो देवो माने सीख। मैं रेखाचार्य,
1: मैं खुशबू हर्षरा,
0: गणान गणान राम राम सा।

0: अभी आप कार्यक्रम घर आंगन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और फिर होंगे दोपहर समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: Afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Indonesian President.

0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
1: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय

0: अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के 2:30 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप कुणाल वर्मा का लिखा गीत सुन रहे थे। इस गीत को संगीत दिया था अभिजीत वागानी ने, आवाजें थी अखिल सचदेवा और ध्वनि की। फिल्म का नाम था लुक।

दे दे प्यार दे। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है अरमान मलिक ने, संगीत दिया है अमाल मलिक ने और गीतकार हैं कुणाल वर्मा।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। आइए सुनते हैं फिल्म रेड 2 का ये गीत। इस गीत को गाया है जुबिन नौटियाल और साथियों ने।
1: लग जाए जो एक बारी करवट में सुबह होए।
0: गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत दिया है रोहक कोहली, रोचक कोहली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चेन्नई 2 एक्सप्रेस से। इस गीत को गाया है चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर ने। फिल्म इस संगीत दिया है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है विशाल और शेखर ने।

अभी आप अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को सुन रहे थे। इस गीत को संगीत दिया था विशाल और शेखर ने। आवाजें थी चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की। फिल्म का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। आइए सुनते हैं फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का ये गीत, गाया है विकास मान ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दिन के ठीक 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा यहीं पर संपन्न होती है। संध्या 5 बजे अपनी संध्याकालीन सभा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजने को है आज की हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होती है। सभा के प्रारंभ में सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ते साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह

0: चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। संध्या के 5:05 हुए हैं और ये समय है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का। और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं साक्षी उपाध्याय और माधव व्यास।

0: शौक बड़ी चीज़ है, और अक्सर हम ये सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा शौक पूरे करने से, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने से, यानी या मैं यूँ कहूँ कि यानी हर वो काम करने से जो आपको आपके लक्ष्य से नहीं मिलाता, उसे करने से आप अपने गोल से दूर हो जाते हैं। और ये अंतर्द्वंद दोस्तों आज का नहीं है, बहुत पुराना है, कि वो किया जाए या पढ़ा जाए जो आप चाहते हैं, या फिर वो किया या पढ़ा जाए जो वक्त की मांग है। इस पे हमारी राय ये है कि शौक आपकी ज़िंदगी में सब्ज़ी में नमक के जैसे होते हैं। सब्ज़ी को कितने ही मन से अच्छे से बना लीजिए, यदि उसमें नमक की मात्रा पूरी ना हुई तो सब्ज़ी का मज़ा नहीं आएगा। वैसे ही अगर ज़िंदगी में आप केवल नाप तौल करके चलते रहे और अपने अपनों के शौक को पूरा करने में हिचकिचाए, तो मंजिल पर भले ही पहुंच जाए लेकिन आपको उस मंजिल में का मिलने का मज़ा नहीं आएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है माधव और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी की विशेष पेशकश युवाणी,
1: और मेरा नाम है साक्षी। दोस्तों, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल वर्कप्लेस रिपोर्ट नाम से एक ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये सर्वे दुनिया के 140 देशों में किया गया है, और दोस्तों इसके आंकड़े बेहद ही चौंका देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 85% लोग अपने काम के साथ जुड़ाव या फिर इंगेजमेंट फिल नहीं करते हैं, यानी कि जो काम वो कर रहे हैं उससे वो खुशी नहीं है। केवल 15% लोग ही पूरी दुनिया में अपने काम से संतुष्ट हैं। दोस्तों, कुछ देशों की बात करें तो यूरोप में केवल 12% लोग अपने काम से

0: जुड़ाव महसूस करते हैं, यानी कि 88% लोग तो डिससेटिस्फाइड हैं और जापान में करीब 21% लोग अपने काम से डिससेटिस्फाइड हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें माधव, जिसमें अपना इंडिया आता है, उसकी बात करें तो यहाँ केवल 21% लोग ही अपने काम के साथ इंगेजमेंट महसूस करते हैं।
1: अच्छा।
0: यानी कि अराउंड 80% लोग अपने काम से असंतुष्ट हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि लोग यहाँ हाईएस्ट इमोशनल नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं। लगभग 86% लोग रोजाना एंगर इश्यूज और करीब 31% लोग स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार महसूस करते हैं
1: भाई। और साक्षी, मुझे तो देखो ये लगता है कि इन सबके मूल में एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब करियर चुनने का वक्त आया था तब कहीं ना कहीं पर ये सभी लोग भ्रम के शिकार हो गए थे। नतीजतन ये लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनका काम, उनकी तबीयत या उनके नेचर के हिसाब से उन्हें पूरी तरह सूट नहीं करता। वैसे तो देखो साक्षी, और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग डिससेटिस्फाइड महसूस करते हैं, जैसे कि सो कॉल्ड द मैनेजर इफेक्ट, उसके साथ बर्नआउट और ओवरवर्क इफेक्ट, और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देने वाली चीज़ लैक ऑफ ग्रोथ, जो कि हर कोई अपने जीवन में जाहिर सी बात है ग्रोथ चाहता है। जो लोग अपने वर्क प्लेस पर महसूस ये सारी चीज़ें करते हैं उनको नेगेटिविटी बुरी तरीके से घेर लेती है, और इन सारी अनचाही या मैं यूँ कहूँ अनवांटेड चीज़ों का रिजल्ट बहुत खतरनाक होता है। सबसे पहला घाटा तो होता है उस संस्था के रेवेन्यू को जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, जो और दूसरा सबसे बड़ा घाटा होता है वहाँ के लोगों के जो बिहेवियरल पैटर्न है उसको, उनके बिहेवियर के अंदर हम लोग एक ऐसा अनवांटेड या मैं एबनॉर्मल शिफ्ट हम लोग देखते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल माधव, और ध्यान से देखें तो कंपनी की वेल्थ को जितना घाटा होता है उससे कहीं ज़्यादा लॉस वहाँ के एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को होता है। यानी दोस्तों, आपके काम का चुनाव आपकी ज़िंदगी में बेहद मायने रखता है। यदि आप अपनी तबीयत और पर्सनालिटी के हिसाब से अगर सही काम नहीं चुने तो लॉन्ग टर्म्स के इसके काफ़ी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, लेकिन अब जो है ना दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब चीज़ें जब इतनी खतरनाक है, अगर गलत करियर हम चूज़ कर लें और ये हमारा हाल हो जाए तो भी इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, इसका एक इलाज, बहुत अच्छा इलाज है, वो ये है कि करियर का चुनाव करते वक्त आप बेहद सावधानी बरतें। तो अब सवाल ये आता है कि करियर का चुनाव करें कैसे? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे शौक यानी हॉबीज़ और हमारे नेचर यानी कि जो चीज़ों को हम हमारे लिए अच्छा मानते हैं, जैसे प्रोफेशन, तो सबसे पहले तो हमें हमारे हॉबीज़ और प्रोफेशन, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अलग अलग से समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 कप चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप बाज़ार जाएंगे और बाज़ार से दूध खरीद लाएंगे, बाज़ार से दूध खरीद के लाएंगे, ना कि बाज़ार से गाय को ही घर में ले आएंगे। ठीक वैसे ही अगर हमें काम की ज़रूरत जो है, हम जब काम को चूज़ करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस काम को चूज़ कर रहे हैं क्या उस काम की दुनिया को ज़रूरत है, क्या वो हमारे नेचर के हिसाब से हमें सूट हो रहा है, उसकी एप्लीकेबिलिटी समय के हिसाब से, उसकी ज़रूरत और समय को देखते हुए उसकी डिमांड, इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी काम में सीधे घुसने से पहले आप कुछ तरीके अपनाएं, और वो तरीके बेहद आसान से हैं, और उन तरीकों को अपनाने से आपको पहले ही पता लग जाएगा कि वो काम आपको सूट कर रहा है या नहीं।
0: इसके लिए सबसे सरल उपाय है दोस्तों, ऑनलाइन करियर एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, इसके थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप सेल्फ असेसमेंट का सहारा ले सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन करियर क्विज भी दे सकते हैं, जिससे ये पता लग जाए कि आपके लिए काम की जो प्रायोरिटी है वो क्या है। और हाँ, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, एक्सपीरियंस लोगों से आप उस काम के बारे में राय लें, उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करें। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों, जो हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है, आप PM इंटर्नशिप स्कीम में भी एनरोल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल। और दोस्तों, 2 से 3 महीने की ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप आपको आराम से ये बता सकती है कि आपका इंटरेस्ट उस काम में असल में है भी या नहीं। साथ ही आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये भी पता कर सकते हैं कि आपके लिए काम, पैसा और स्टेबिलिटी, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट

आपके लाइफ में क्या है, आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किसको करते हैं, इसके बाद ही आप कोई भी काम चुनने का फैसला लें। हर काम के पीछे का अंतिम जो कारण होता है वो एक ही होता है दोस्तों, और वो हर किसी के लिए एक ही होता है, वो होता है खुशी। कोशिश करिए कि आप जिस भी काम में जाएं आप खुश रहें, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो हैप्पीनेस है उसका आपके साथ ताउम्र रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा उस काम को चूज़ करें जिससे आपको खुशी मिले, आपके आसपास के लोगों को खुशी मिले, और वो काम आपके फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा कर सके। इसलिए काम को चुनते वक्त हम इन सारी चीज़ों का इवेल्युएशन अच्छे से करें और देन ही अपने काम को सेलेक्ट करें। और एक बहुत मशहूर कवि हुए थे, उन्होंने एक बात कही भी थी कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तुम तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। वैसे ही जब भी आप किसी चीज़ का डिसीज़न लें तो बेहद ही पूरे उत्साह के साथ लें, क्योंकि आप अगर निर्णय लेंगे तो निर्णय अच्छा लेंगे। और रतन टाटा जी ने भी कहा था कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई जस्ट टेक डिसीजंस एंड देन प्रूव देम राइट। तो अच्छे निर्णय लें, लोगों को देखते हुए लें कि वो निर्णय उन लोगों के काम ज़रूर आएँ।

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निकाल। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबी

0: उसूलों पे जो आन चाहे तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तुम तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये बात बहुत सही है दोस्तों, और अभी हमने जो उस फरहान अख्तर की आवाज़ में जो सुना वो उसकी स्क्रिप्ट वैसे तो जावेद अख्तर ने लिखी थी लेकिन बेहद सुंदर लिखी थी। अगर हम उसके मूल को समझें तो हमें ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली जो बहुत बड़ा लिविंग किंगडम है, लिविंग स्पीसीज है, उनमें एकमात्र इंसान ऐसा है जो कि पेन पकड़ सकता है। अगर हम देखें तो चिंपांजी और इंसान के अंदर दिमाग जो होता है सेम कैपेसिटी का होता है, लेकिन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, वो ये कि चिंपांजी और इंसान दोनों के हाथ एकदम सेम होते हैं लेकिन चिंपांजी अपने हाथ को इंसान के हाथ की जैसे मोड़ नहीं सकता, जिसकी रिजल्ट में लोग कहते हैं कि वो पेन नहीं पकड़ सकता, और क्योंकि वो पेन नहीं पकड़ सकता इसलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर इंसान आगे बढ़ गए और चिंपांजी पीछे रह गया। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर बहुत एनर्जी का सोर्स है और अगर हम काम करना चाहें तो बहुत काम कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। और आजकल जो बहुत सारे हमारे युवा दोस्त हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, और हम आपके लिए उसी आपकी तैयारी को सपोर्ट रहे इसके लिए हम आपके लिए एक सेक्शन लेके आते हैं, क्विज सेक्शन, जिसमें हम आपसे रोज़ दो सवाल पूछते हैं और उनके जवाब हम आपसे जानते हैं प्रोग्राम के एंड में। तो आज के हमारे जो दो सवाल आपसे हैं वो कुछ ऐसे हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल आपसे है,
1: केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? और वहीं आज का हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों कि मैक्लोडगंज भारत के किस राज्य में स्थित है?
0: हालांकि ये दोनों सवाल इंडिया की जियोग्राफी से कनेक्टेड है, तो अगर आप इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि सो कॉल्ड SSC के इंडिया GK के सेक्शन के अंदर जो बहुत बड़ी जियोग्राफी ऑफ इंडिया आता है उसके किसी प्रतिशत का कुछ हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। तो बस आप उनके जवाब इन सवालों का जवाब ढूंढिए, हम बस यूं गए और यूं आए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। सदियों पुरानी ये कहावत आज भी हमारे देश की रग रग में बसती है। दोस्तों सोचिए कैसा देश, कितना खूबसूरत देश होगा वो, जहाँ सुबह का नाश्ता अगर पोहे और जलेबी से होता तो लंच में इडली सांभर या मक्के की रोटी बन जाती है। यही तो असली मैजिक है दोस्तों हमारे इस देश का, हमारी इस यूनिफॉर्मिटी का।
1: और वहीं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक उस खूबसूरती पर है जिसे हम विविधताओं का देश भारत कहते हैं। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता सिर्फ हमारे खान पान या कपड़ों में नहीं है, बल्कि हमारे विचारों में, हमारे त्योहारों और हमारे जीने के तरीकों में है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हो,
0: बिल्कुल,
1: और 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हो,
0: बिल्कुल, और वो भी डिफरेंट डायलेक्ट्स के साथ। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे साथियों कि जिस फ्रिक्वेंसी पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी को, हम भी यानी कि आकाशवाणी भी ऑल ओवर इंडिया 130 डायलेक्ट्स के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करवाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि हम जो युवा हैं इस विविधता को आज एक नए तरीके से जी रहे हैं। पहले जो चीज़ें सिर्फ किताबों में पढ़ते थे जीके के नाम पे, आज सोशल मीडिया और ट्रैवलिंग ने उन्हें हमारी उंगलियों पर ला करके रख दिया है। राजस्थान के रेगिस्तान में बैठा कोई युवा अब अपने ईयरफोन्स में पंजाबी बीट का या साउथ इंडिया का कोई रॉक म्यूजिक सुनता और थिरकता है। कितनी कमाल की बात है ये।
1: हाँ कमाल की बात तो है माधव। और आज का युवा सिर्फ अपनी गली या शहर तक ही सीमित नहीं है, वो इंटरनेट के जरिए नॉर्थ ईस्ट के कल्चर की तारीफ कर रहा है। तो वहीं उस साउथ का कोई साउथ का दोस्त है जो दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स के व्लॉग को एंजॉय कर रहा है। और पता है माधव, हमारी ये विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है।
0: बिल्कुल,
1: जब अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोच और बैकग्राउंड के युवा एक साथ आते हैं तो इनोवेशन तो होता ही है,
0: एकदम 100%। और आप आजकल की जो भारत आज बात करें, जो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है आप उसको देखें, इकोसिस्टम कितना शानदार है भाई। कोई आइडिया बेंगलुरु से निकलता है, उसकी कोडिंग होती है पुणे में, और उसका सीधा फायदा किसको मिलता है, किसी दूर किसी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, गांव के किसी छोटे से किसान को उसका फायदा मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो बताइए क्या है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का शानदार उदाहरण है, यानी अनेकता में एकता का कितना जोरदार चीज हम इसको देख सकते हैं। और दोस्तों ये भी सोचने वाली बात है कि हम कितने लकी हैं कि हमें इतने रंग बिरंगे देश में जन्म मिला, जहाँ दिवाली के दियों की रोशनी एक तरफ होती है तो दूसरी तरफ ईद की मिठास होती है, दूसरी तरफ क्रिसमस की जो सुंदर वो कौन से मंथ में आता है, 25th of December, ठंड के मौसम में इतना प्यारा और रंग बिरंगा त्यौहार क्रिसमस भी देख लेते हैं, तो होली के अंदर हम होली भी मना लेते हैं, और हमारे बीकानेर के अंदर एक जो लोकल फेस्टिवल आता है आखा तीज, उसका तो क्या ही कहना।
1: बिल्कुल बिल्कुल माधव। और हम वो पीढ़ी हैं जिसे इस विविधता को सिर्फ सहजना नहीं है बल्कि इसे पूरे गर्व के साथ दुनिया के सामने प्रेजेंट भी करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों अगली बार जब आप किसी नए शहर जाएं या किसी नए कल्चर के दोस्त से मिले तो उसे तो उसको अनुभव पूरे खुले दिल से करें और उसको अपनाएं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें एक सच्चा भारतीय बनाती है।
0: बिल्कुल। और जब हम सच्ची भारतीयता की बात करते हैं या भारतीयता की भी बात करते हैं ना, दरअसल सच्ची भारतीयता और भारतीयता दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। और दोस्तों जब भी हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तो इस देश के अंदर हम सेना को भूल ही नहीं सकते, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को नहीं भूल सकते। आइए पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक गाना सुनते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी

0: शक्ति को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों आप जानते हैं मानसून का सीजन चल रहा है और आने ही वाला है, और वो लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट कहलाते हैं या हर वो इंसान जो कि नेचर से बहुत प्यार करता है, उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस।

0: अच्छा है, स्पेशली वो लोग जो राजस्थान के अंदर रहते हैं, क्योंकि गार्डनिंग का ये बेस्ट टाइम है। अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं, पेड़ लगाना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा समय यही है। और आज का हमारा जो विषय है वो उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही विषय पर जो हमारे राजस्थान और देश के उन युवाओं के लिए बहुत काम का है जो कृषि और प्रकृति से जुड़ना जानते हैं।
1: बिल्कुल माधव। अच्छा माधव, एक बात बताओ, जब भी हम रेगिस्तान या फिर कम पानी वाली जगह की बात करते हैं,
0: जैसे बीकानेर की,
1: हाँ ये भी कह सकते हो तुम, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है?
0: सूखा, दूर दूर तक सूखा, सूखी जमीन, रेतीली जमीन, जहाँ पर अच्छे फ्रूट्स के प्लांट एक सपना सा लगता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कभी भी अच्छी बागवानी नहीं हो सकती या एकदम हरा भरा नहीं दिख सकता।
1: यही तो कमाल है माधव, इसी सूखी जमीन को हरा भरा और किसानों की जेब को थोड़ा भारी बनाने का जादुई काम कर रहा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर।
0: क्या बात है, ये तो काफी दिलचस्प है। लेकिन ये संस्थान आखिर है कहाँ और काम कैसे करता है?
1: अरे माधव, ये संस्थान हमारे बीकानेर में ही स्थित है।
0: क्या बात,
1: इसका मेन काम यही है कि कम पानी, तेज गर्मी और सूखे जैसी कठिन परिस्थितियों में उगने वाले फलों और सब्जियों पर रिसर्च करना।
0: मतलब कि, मतलब मैं इसको ऐसे सही समझ रहा हूँ, तो ये उन फलों की अपन बात कर रहे हैं जिन्हें मकसद सर्दियों या गर्मियों में चाव से खाते हैं, जैसे आंवला, अनार, बेर, खजूर।
1: बिल्कुल सही कहा माधव, और इसके अलावा बेल हो गई, केर, खेजड़ी, सांगरी और काचरी जैसी हमारी देसी फसलें को भी बहुत ही ज़्यादा उन्नत और नई नई वैरायटीज में यहाँ पे तैयार किया जाता है। माधव, इसका मोटिव सीधा सा है, पानी कम लगे लेकिन पैदावार और मुनाफा ज्यादा हो।
0: क्या बात है, फिर तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है उनको जो एग्री बिजनेस के अंदर स्टार्ट, मतलब इंटरेस्टेड है।
1: बिल्कुल,
0: और एग्री स्टार्टअप के लिए तो बहुत शानदार चीज हो गई, नई तकनीक भी मिल जाती है और नई जो सीड्स की हाई क्वालिटी है वो भी हमको आसानी से मिल जाती है, और बागवानी करके जो है पैदावार अच्छी करके हम लोग बिजनेस का एक अच्छा मॉड्यूल बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा माधव तुमने, और अब तो कम पानी खेती की राह में कोई रुकावट ही नहीं बन सकता।
0: क्या बात है, तो फिर क्यों ना अब हमारे राजस्थान के युवा जल्द से जल्द अगर एग्री जो बिजनेस है उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो क्यों ना इस राहों पर चल पड़े, क्योंकि दोस्तों बहुत मज़ा आता है हरे पेड़ पौधों को लगाने में, उनके साथ काम करने में, उनको उगाने में।

0: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समा

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: पर पैसा।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: साक्षी, आज जब मैं सुबह नाश्ता कर रहा था ना, तो अचानक से मेरा ध्यान एक ऐसी चीज़ पर गया जो अगर खाने में ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बोले 56 भोग बना लो फिर भी फीके पड़ जाएंगे।
1: माधव, कहीं तुम नमक की तो बात नहीं कर रहे?
0: तुमने तो एकदम मेरे मन की बात जान ली। मैं बिल्कुल नमक की ही बात कर रहा हूँ। और आज हम अपने युवा साथियों को बताने वाले हैं कि हमारे राजस्थान का इस नमक से कितना गहरा और ऐतिहासिक रिश्ता है।
1: दोस्तों, हम में से ज्यादा

0: लोग सोचते हैं कि नमक सिर्फ समंदर के किनारे ही बनता है, जैसे कि गुजरात या महाराष्ट्र में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं हम में से कि देश के कुल नमक उत्पादन में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। हम देश का लगभग 8-9% नमक अकेले तैयार करते हैं।
1: सही में? क्योंकि मैंने तो सुन रखा है नमक खारे पानी से बनता है और हमारे यहाँ तो पानी नहीं है।
0: क्यों क्यों नहीं है माधव? लेकिन तुमने तो कभी तो सोचा होगा ना ऐसा कि राजस्थान में समुंदर ही नहीं है तो फिर नमक कैसे बन रहा है और क्या बन रहा है?
1: एग्जैक्टली उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ना शायद तक, ये मेरा एक तुक्का है, कि हो सकता है कि हमारे पास समंदर भले ना हो लेकिन हमारे पास खारे पानी की कुछ झीलें हैं। शायद तुम उसकी वजह से ऐसा बोल रही हो। जैसे जयपुर के पास स्थित सांभर झील है और भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक झील जिस भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा बाड़मेर का पचपदरा और डीडवाना भी नमक उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है।
0: यानी कि जो हमारी सांभर झील है वो वहाँ पे हम घूमने जाते हैं तो वो सिर्फ एक हमारे लिए टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि देश का स्वाद बढ़ाने वाली भी एक जगह है।
1: बिल्कुल साक्षी। और तुम्हें ये पता है कि पचपदरा का नमक तो अपनी बेहतरीन क्वालिटी यानी कि शुद्ध सोडियम क्लोराइड के लिए पूरे देश में मशहूर है। दोस्तों यहाँ का नमक उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देता है। कितने युवा हम जैसे उसमें शामिल हैं
0: माधव। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पारंपरिक नमक उद्योग में भी युवाओं के लिए क्रिएटिविटी और बिजनेस के बड़े मौके हैं।
1: बहुत बड़े मौके हैं साक्षी। जैसे आजकल मार्केट में रॉक सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्ट या फ्लेवर्ड नमक की बहुत डिमांड होती है। हमारे युवा साथी इस फील्ड में नए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जो कि काफी बेनिफिट देंगे उनको।
0: सच में माधव, ट्रेडिशनल काम को थोड़ा मॉडर्न टच देकर युवा इसमें कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप खाना खाएं और नमक का स्वाद लें तो एक बार अपने राजस्थान की उन खारी झीलों और वहाँ मेहनत करने वाले लोगों को भी याद जरूर करें।
1: बिल्कुल। और ना अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो जाहिर सी बात है लोग खाने के बड़े शौकीन हो रखे होंगे। और शादियों के बाद स्पेशली जो कपल्स हैं वो शादी के बाद बाहर कहीं घूमने जाना पसंद करते ही हैं। तो अगर आप बाहर कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो आप इन नमक की झीलों का भी रुख कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो सफ़ेद लेयर ज़मीन के ऊपर बनती है वो काफ़ी सुंदर और एक बहुत अच्छा विजन बनाती है, दृश्य बनाती है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और स्पेशली मैं कहूँगा कि कपल्स को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली ये वो मोमेंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: माधव, इस रोज रोज की भाग दौड़, कॉलेज और असाइनमेंट से थक कर मेरा तो मन करता है कि बस अपना बैग उठाऊं और सीधे घूमने निकल जाऊं पहाड़ों में।
3: सबका मन करता है साक्षी, और इस गर्मी में तो जरूर से करता है। वैसे तुमने आज जो टॉपिक छेड़ा है वो आज हमारा टॉपिक है भी। वैसे इस सफर का डेस्टिनेशन भी एक ऐसा ही खूबसूरत पहाड़ों का शहर है जहाँ जाने के बाद लौटने का मन ही नहीं करेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की एक जगह और बेहद खूबसूरत जगह, यानी मैं यूं कहूँ हिल स्टेशन की, मैक्लोडगंज की।
2: धर्मशाला के पास बसा हुआ वो जादुई शहर, और मैंने तो सुना है माधव कि इसे लिटिल ल्यासा भी कहा जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है तुमने ये। और साक्षी, तुमने यहाँ पर ना, तुम जाओगे ना जब, तो तुम देखोगे कि तिब्बती संस्कृति की इतनी खूबसूरत झलक वहाँ पर मिलती है कि आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए। परम पावन दलाई लामा का निर्वास स्थान भी यहीं पर है, जिससे यहाँ के वातावरण में कमाल का सुकून और शांति महसूस होती है।
2: यही शांति के साथ साथ यहाँ का कैफे कल्चर और ट्रैकिंग तो युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है।
3: बहुत, और वहाँ का एक बहुत ही फेमस ट्रैक है त्रिउंड ट्रैक।
2: हाँ,
3: पहाड़ियों के एकदम बीच से गुजरता है वो रास्ता दोस्तों।
2: अच्छा।
3: जहाँ रात में तारों की छाव की एक, आप यूं मान लीजिए, जो कैंपेनिंग करने का जो मजा है नेक्स्ट लेवल है, बहुत मजा आता है। और एक बैकपैकर या मैं यूं को जो ट्रैकर होते हैं पहाड़ों में जाने का, जिनको बहुत शौक होता है, उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन भी बोलता है मैक्लोडगंज को।
2: वाह माधव, एक तरफ मोमोज और थुक्पा जैसी वहाँ की लजीज तिब्बती डिशेज, खूबसूरत मोनेस्ट्रीज की शांति, और दूसरी तरफ एडवेंचर से भरी ट्रैकिंग का मजा। वाह
3: क्या बात है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं तो अगली ट्रिप मैक्लोडगंज की जरूर कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपका मन करे तो कश्मीर भी जरूर जाइएगा।
2: बिल्कुल, तो

0: साथियों, हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि मैक्लोडगंज भारत के किस राज्य में स्थित है?
1: तो इसका दोस्तों सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
0: उम्मीद है कि आपके दोनों सवालों के जवाब जरूर सही होंगे, और अगर सही नहीं है तो कोई बात नहीं, कल का दिन फिर से आएगा, कल का युवाणी का शो भी फिर से आएगा, कल फिर दोबारा से कोशिश कीजिएगा, आप ज़रूर इन सवालों के जवाब खोज लेंगे। साथियों, अब आते हैं हम एक नोटिफिकेशन के ऊपर। एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया है DRDO की तरफ से,
1: जहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें एलिजिबल लोग हैं BTech और MTech डिग्रीज के साथ, और साथ ही आयु अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। दोस्तों, आप इसकी मोर इंफॉर्मेशन के लिए इसकी ऑफिशियल साइट जो है www.drdo.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जो भी आप बाकी की इंफॉर्मेशन है वहाँ से जान सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके लिए कोई बात नहीं दोस्तों, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारे मौके आते हैं और बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, और उनमें से एक अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर ग्रैब करेंगे, इसका हमारा पूरा आपके ऊपर विश्वास है। दोस्तों, मानसून का मौसम चल रहा है, पेड़ लगाते रहें, खुद का ख्याल रखते रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते रहें, वनस्पतियों का ख्याल रखते रहें, आसपास की गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखते रहें। फिर आपसे मिलेंगे इसी समय पर, इसी फ्रिक्वेंसी पर कल। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कितना मजा आता है जब आप स्पेशली अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ कहीं घूमने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो समर वेकेशंस आए थे, मुझे पूरी उम्मीद है मुझे कि उसमें कि आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे। और अब अगर घूम करके आप वापस आ ही गए हैं, तो वापस हमें हमारी जो डेली लाइफ रूटीन है उसके अंदर आना होगा, और नॉलेज को कम्प्लीटली कंटिन्यूसली एक्वायर करने के प्रोसेस में लगे रहना होगा। हमने आपसे दो सवाल पूछे थे हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, अब वक्त आ गया है उन दोनों सवालों के जवाब जानने का। हमारे आपसे पहला सवाल था,
1: केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? तो माधव, अगर प्रोग्राम दो हमारे दोस्तों ने अच्छे से सुना होगा तो इसका जवाब भी उन्हें जरूर आता होगा, नहीं?
0: 100% इसका सही जवाब है
1: बीकानेर।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे माधव व्यास और उनके साथ में थी साक्षी उपाध्याय। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। संध्या के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए अब आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे बजरंग सारस्वत और दीवान दान रत्नु। आज ग्रामीण जगत में चर्चा होगी मूंग की उन्नत किस्में, बीज दर व बीजोपचार। चर्चा होगी बरसात से पूर्व टीकाकरण जरूरी, जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं, और उसके साथ में आज आप जान पाएंगे अपना गांव बने हरा भरा गांव, और उसके साथ में लुफ्त आप उठा पाएंगे लोकगीतों का। ग्रामीण जगत का प्रसारण होगा संध्या 7 बजे।

संध्या 6:05 पर, पश्चात रात्रि 8 बजे और 9:15 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। सुगम संगीत सुनिएगा रात्रि संध्या 7:45 पर और रात्रि 9:53 पर। रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। भेंट वार्ता में आज भेंट होगी वरिष्ठ साहित्यकार मालचंद तिवाड़ी से, डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य की बातचीत। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन है श्री अमित सिंह का।

देश विदेश के समाचार जानने के लिए सुनिएगा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। लोक संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 10 बजे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा आपनो राजस्थान। सुनना न भूलिएगा रात्रि 10 बजे आपनो राजस्थान, जिसे प्रसारित किया जाएगा हमारे जयपुर केंद्र से। श्रोताओं, आपको फिर से याद दिला दें कि रात्रि 9:30 पर भेंट वार्ता आप सुनिएगा वरिष्ठ साहित्यकार मालचंद तिवाड़ी से, डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य की बातचीत। प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन है श्री अमित सिंह का। छह बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनिएगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: ये थी आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि

0: विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशरा के राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6:05 हुए हैं और ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में आज हम लेकर के आए हैं एक ही संगीतकार यानी कि एक ही म्यूजिशियन डायरेक्टर के वो गीत जिन्हें आप लोग पसंद करते हैं। तो आज हम जिनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम ऐसा है जिन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी भारतीय संगीत जगत में जाना जाता है। मेरे ख्याल से ये नाम सुनते ही आप लोग जान गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। भारतीय संगीत जगत के महान संगीतकार नौशाद अली जी को हिंदी सिनेमा का श्रोताओं संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था या उन्हें कहा जाता था। उन्होंने भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत को लोक संगीत के साथ मिलाकर फिल्मी गानों को एक नया और एक गरिमामय रूप दिया था। इनका जन्म 25 नवंबर 1919 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन में ही उनका झुकाव संगीत के साथ में था। वे लखनऊ की पारंपरिक शादियों में बजने वाले बैंड और थिएटर जैसे साइलेंट फिल्मों के पीछे बजने वाले लाइव म्यूजिक को बड़े चाव से सुनते थे। उन्हें संगीत की शिक्षा उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बबन साहिब से शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखी। इनकी बहुत सारी फिल्में आई थी, हम उनकी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इनकी चर्चा करने से पहले हम उनका वो गीत सुनते हैं जो आज भी और आगे इन फ्यूचर में भी ऐसे ही हम लोग याद करते रहेंगे।

से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी।

0: लाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे नौशाद जी की। अभी हमने बात की उनकी संगीत की शिक्षा और उनका फिर हुआ संगीत की शिक्षा के बाद में मुंबई में आगमन। उनके पिता संगीत के सख्त खिलाफ थे, इसलिए नौशाद जी घर छोड़कर मुंबई यानी कि तब मुंबई में आ गए। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत संघर्ष किया, यहाँ तक कि उन्हें फुटपाथ पर भी सोना पड़ा। उसके बाद में उनका हुआ सफ़र वहाँ से प्रारंभ। बतौर सहायक उन्होंने संगीतकार मुश्ताक हुसैन और केमचंद प्रकाश महान संगीतकार के साथ में उन्होंने अपना कार्य किया। फिल्मी जगत में उनके उस स्वतंत्र संगीतकार यानी कि साल 1940 में उनकी एक फिल्म आई प्रेम नगर, उन्होंने उस फिल्म से स्वतंत्र संगीतकार में अपना सफर की शुरुआत की। उनकी सबसे पहली बड़ी सफलता थी 1944 में उनकी एक फिल्म आई रतन, जिसमें उन्हें वो कामयाबी का शिखर मिला जिसकी वो इच्छा रखते थे। इस फिल्म का एक गाना भी था अखियां मिला के जिया भरमा के, जो पूरे देश में फेमस हुआ। संगीत में उनका ऐतिहासिक योगदान रहा। नौशाद जी केवल धुने नहीं बनाते थे बल्कि वे संगीत के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आए। नौशाद जी का सबसे बड़ा योगदान मित्रों वहाँ था जहाँ पर कठिन समझे जाने वाले शास्त्रीय संगीत को बेहद सुरीला और आसान बनाकर आम जनता के दिलों में उतार दिया। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण जो अभी आपने गीत सुना, फिल्म बेजू बावरा 1952, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उस दौर में वेस्टर्न म्यूजिक का चलन बढ़ रहा था, तब उन्होंने शुद्ध शास्त्रीय राग जैसे राग दरबारी, राग भैरवी, राग देश पर उन्होंने आधारित गाने बनाए। मन तड़पत हरि दर्शन को, जो मालकौंस राग में था, और ओ दुनिया के रखवाले, जो राग दरबारी में आज भी मील के पत्थर हैं। चलिए सुनते उनके और भी बेहतरीन गीतों को। सुनिएगा अगला गीत लता मंगेशकर के गाए इस गीत को, जिसे कंपोज किया है नौशाद जी ने, और ये गीत जो फेमस मूवी, आप खुद इस फिल्म का नाम बताइएगा सुनने के बाद में, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप ये गाना सुनेंगे आपके मुँह से तुरंत उस फिल्म का नाम भी निकलेगा।

शायद इस गीत को जानने के बाद में आप जान गए होंगे कि ये गीत फिल्म मुगल-ए-आज़म से था। इस फिल्म का जो संगीत भारतीय सिनेमा का इतिहास है, प्यार किया तो डरना क्या गाने के लिए उन्होंने लता जी की आवाज़ को शीश महल की गूंज देने के लिए, आपने देखा भी है और सुना भी होगा इस गीत को कि इसमें लास्ट में जाकर के गूंज आती है, तो गूंज देने के लिए उनकी जो ये रिकॉर्डिंग थी वो बाथरूम में रिकॉर्डिंग करवाई गई थी। सुनकर के कितना अजीब सा लगता है और कितने यूँ बढ़िया से लगता है कि क्या उस समय उन्होंने अपना दिमाग लगा करके और इस तरीके के म्यूज़िक को निकाल करके दिया जो हमारे स्थूल नहीं हमारे सूक्ष्म शरीर को यानी कि हमारी आत्मा तक को झंझोर करके रख देता है। ऐसे ही क्योंकि जब इतनी कोई मेहनत करता है तभी हम लोग उन लोगों को याद करते हैं आज भी और आगे भी। उत्तर प्रदेश के होने के कारण उन्हें यूपी के लोकगीतों में कजरी ठुमरी दादरा और सोहर की गहरी समझ थी। उन्होंने मदर इंडिया और गंगा जमुना जैसी मिट्टों में फिल्मों में माटी की सौंधी खुशबू वाले लोक संगीत का एक ऐसा जादू बिखेरा जो अमर हो गया। चलिए जब बात चली है मदर इंडिया फिल्म की तो चलिए नौशाद जी का ये म्यूज़िक सुनते हैं, ये गीत ये कंपोज किया हुआ जो आज भी दुनिया में हम आए हैं ये गीत सुनते हैं, उसके बाद में नौशाद जी के बारे में और भी बात करते हैं।

क्या गीत थे, क्या उनका अंदाज था, क्या उनकी रचनाएं थी। केवल ये नहीं था कि वो शास्त्रीय संगीत में ही अव्वल थे, उनके टेक्निकल इनोवेशन भी बहुत ज़बरदस्त थे, उनका साउंड मिक्सिंग। नौशाद जी भारत के पहले ऐसे एक संगीतकार थे जिन्होंने साउंड ट्रैक की सेपरेट रिकॉर्डिंग की और मिक्सिंग की शुरुआत की। वे गायक और वाद्य यंत्रों को अलग अलग रिकॉर्ड करते थे। कितनी गलत तो बात नहीं, कितनी एक अजीब सी बात है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आज उसकी वो शुरुआत आज की तारीख में बहुत ही अलग है। आज भी हम लोग देखते हैं कि उनको जब भी हम कोई चर्चा करते हैं म्यूज़िक की, तो चर्चा होती है कि गाने वाले व्यक्ति अलग होते हैं, उनका म्यूज़िक अलग जाता है, फिर दोनों को मिक्सिंग करके हम लोग दिखाते हैं। एकॉर्डियन का पहला इस्तेमाल हिंदी सिनेमा में, सबसे पहले एकॉर्डियन का प्रयोग उन्होंने फिल्म संजोग 1942 में किया था। बड़ा ऑर्केस्ट्रा यानी कि 100 लोगों से भी अधिक वादकों को विशाल ऑर्केस्ट्रा का चलन शुरू किया, जिसने गानों को एक भव्यता प्रदान की। पार्श्व गायकों की अगर बात करें तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, सुरैया, ऐसे बहुत सारे गायक जो उनके इस संगीत से हमारे आँखों के सामने आए। अगर उनके यादगार और कालजयी फिल्मों के बारे में बात करें तो नौशाद जी अपने 6 दशकों से भी ज़्यादा लंबे करियर में संख्या के हिसाब से लगभग 65 से 70 फिल्मों में, लेकिन गुणवत्ता के मामले में बेमिसाल काम किया। शाहजहां 1946 में उनकी एक फिल्म आई, अंदाज 1949 को, आन 1952 में आई, और ये वो फिल्म थी मित्रों जो भारत की पहली पूरी तरह रंगीन फिल्म थी, जिसका बैकग्राउंड स्कोर उन्होंने लंदन में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ में रिकॉर्ड किया था। बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना, मेरे महबूब, पाकिज़ा, ये ऐसी ऐसी फिल्में जो हमारे सामने थी। सम्मान और पुरस्कार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार 1954 में बैजू बावरा के लिए पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1981 में, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान था। उन्हें 1992 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी नवाजा गया। चलिए इनका एक अच्छा सा और गीत सुनते हैं, फिर उनकी और एक छोटी सी चर्चा और करते हैं।

0: उनका ये अमर गीत था, अपनी आज़ादी को हम मिटा सकते नहीं। संगीत के इस महानायक ने 5 मई 2006 को मुंबई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नौशाद जी सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे एक बेहतरीन शायर उर्दू कवि भी थे। उनका ये शेर उनकी शख्सियत को बयां करता है। तर्ज़ नौशाद पे गाती है दुनिया जिसे, तर्ज़ नौशाद पे गाती है दुनिया जिसे, वो कुचलते हुए अरमानों की आवाज़ है। उनका संगीत आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगा। नमन करते हैं ऐसे संगीतकार को जिन्होंने हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जागृत कर दिया। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। संध्या के 6:30 होने को अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय, अगले 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से भेंट की। इस दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मिले। उन्होंने जनहित परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश में ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवाओं के विस्तार पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। श्री शर्मा ने कृषि मंत्रालय में आयोजित अहम बैठक में भी हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े विषय और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने वीबीजी रामजी लागू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया।
2: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में एक विकास का आधार, क्योंकि वहाँ के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, तो एक ऐसे स्थायी होंगे तो गाँव को उसका फायदा मिलेगा। गाँव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उस पर कर सकते हैं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्थान में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रम संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने ग्राम चौपाल पहल की भी सराहना की। राज्य

0: सरकार ने वाहन स्वामियों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ट्रैक्टर और गैर परिवहन दुपहिया वाहन मालिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी नवीनीकरण की देरी पर अतिरिक्त शुल्क में राहत दी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि कृषि कार्य में लिए जा रहे ट्रैक्टरों से आरसी रिन्यूअल में एक साल की देरी होने पर 500 रुपये माहवार की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपये निर्धारित की गई है। गैर परिवहन दुपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में देरी होने पर 300 रुपए महीने की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 1000 रुपए तय की गई है। ये विशेष राहत इस साल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। मॉनसून आज राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में और आगे बढ़ा है। फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर और जोधपुर से होकर गुजर रही है। इसके अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के भागों में आगे बढ़ने के आसार हैं। इससे जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले दो तीन दिन गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में झमाझम बरसात का अलर्ट है। इस बीच राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की मध्यम बरसात का ये सिलसिला अभी बना रहेगा। हालांकि 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है। आज डूंगरपुर के गलियाकोट, सागवाड़ा और निठाउवा में कभी तेज तो कभी हल्की बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा बीती रात लुनखंदा गांव में हुआ, जहां एक ही परिवार के लोग फसल की रखवाली के लिए खेत पर सो रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इन्हें कनेरा सीएचसी लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया। मॉनसून के दौरान बिजली जनित हादसों की रोकथाम के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया गया है। उधर पाली में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से ऑयल बॉयल्स बनाई गई हैं। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि एंटी लार्वा के लिए ये बॉल्स काफी कारगर हैं।
1: ऑयल बॉल है, वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से। कपड़े के अंदर हम लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या दो या चार घंटे तक उसको जो जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और वो सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है। जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी हैं और सभी बीसीएमओ को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया।
0: जयपुर में आज एक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना श्यामनगर क्षेत्र में 200 फीट बाईपास पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर खड़े 5 लोगों को कुचल दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उधर पाली जिले में नेशनल हाईवे 162 पर मोड़ भट्टा इलाके में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर दौरे पर रहे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने केलावा खुर्द में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि हमें मानवीय मूल्यों को अपने विचार, व्यवहार और दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज पूरी दुनिया शांति संतुलन के लिए भारत की ओर आशा से देख रही है। ऐसे में हमें सनातन संस्कृति को मार्गदर्शन का आधार रखना चाहिए।
2: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले, करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो, वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो से ही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले, सत्य के मार्ग पर चले।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में वार्ता की।

0: दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, खनिज, कृषि और उभरती प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। श्री मोदी ने समुद्र की दूरी को दोनों देशों के बीच का सेतु बताया। उन्होंने भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद की नीति में विश्वास रखता है।
1: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सदस्यों के बीच आया।
0: श्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी को बधाई देते हुए इसे हर भारतीय के लिए हर्ष और गौरव का विषय बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। इसके साथ ही टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया।
2: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
0: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि डूरंड कप देश के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। राष्ट्रपति भवन में ट्रॉफियों का अनावरण टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक हासिल किए। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, वहीं पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय, अगले दो दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर

0: जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर परिषद सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इन शिविरों में राजस्व, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, पंचायती राज और अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। नामांतरण, सीमा ज्ञान, प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावड़े ने बताया कि ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पिछले दिनों जिले में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य स्थानों पर 1,154 बूथ बनाए गए। पहले दिन दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई। अभियान के दौरान जिले में 3,65,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। आकोली ग्राम पंचायत में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनके माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में पौधरोपण भी किया गया। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम शाह पूंजाजी गेनाजी खेल स्टेडियम में हुआ। सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में भी योग कार्यक्रम हुए। आयुर्वेद विभाग के अनुसार जिले में 73,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। कृषि विभाग की ओर से तीखी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यशाला रखी गई। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, फसल चक्र और संतुलित उर्वरक के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी की जाँच और वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी। जिले में गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने के साथ ही प्रवेश उत्सव भी शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग की टीमें घर घर जाकर 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का अभियान चला रही है। अभिभावकों से सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आहोर ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा बैठक पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पेयजल तथा अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिले में पिछले दिनों रोजगार उत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में चयनित 506 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। सहकारिता सप्ताह के तहत जिले में ग्रीन कोऑपरेटिव दिवस मनाया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इस योजना में 519 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा और 64 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले में जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति और जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। उधर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। दुर्घटना संभावित स्थानों पर संकेतक लगाने, आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। जिले में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। जालौर, भीनमाल, आहोर, रानीवाड़ा, सायला, बागोड़ा और सांचौर सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों ने मूंग, मोठ, बाजरा और ग्वार की बुआई शुरू कर दी है। तालाबों और एनिकटों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। इसके साथ ही जालौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरा रा दूजा दिन कई केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कर प्रदेश का विकास में जुड़िया खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी। राज्य रा घनखर हल्का माए चौमासारी बिरखा, आवता 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कठे कठे भारी बारिश सारू चेताई चियो। भारत और इंडोनेशिया बीच कई समझ

पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान नवाजी जिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फुटबॉल रा डूरंड कप 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली माए न्यारा न्यारा केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कीनी। वह उपभोक्ता मामलात खाद्य और नवीन और नवीकरण

0: न्यारा न्यारा मुद्दा मत चर्चा कीनी। श्री शर्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिलिया, वे आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल मिलर प्रदेश माए ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवावान बधावन रबारा माए बातचीत कीनी। मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलिया। श्री शर्मा कृषि मंत्रालय माए राखी जी खास मीटिंग माए शामिल फिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का मुख्यमंत्री कहो का इन दौरान राज्य रा खेतीबाड़ी हलकाओं जुड़िया मुद्दा और योजनावां रा बारा माए चर्चा करी जी। वे वी बी जी राम जी लागू करण सारू कृषि मंत्री रो आभार जतायो।
1: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में एक विकास का आधार, क्योंकि वहाँ के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, तो एक ऐसे स्थायी होंगे तो गाँव को उसका फायदा मिलेगा। गाँव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उस पर कर सकते हैं।
0: ई मौके केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो कि राजस्थान रा गांवई हलका माए विकास और काम धंधा रा मौका बधावण जुड़िया काम संतोषजनक तरीकों चल रहा है। वह ग्राम चौपाल पहल री सराहना कीनी। राज्य सरकार ट्रैक्टर और गैर परिवहन दुपहिया वाहन मालिका ने पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी नवीनीकरण माए मोड़ो विवरण पर लागण वाला अतिरिक्त शुल्क माए राहत दीनी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा बतायो कि खेतीबाड़ी सारू काम आ रहा ट्रैक्टरां रा मालिकाओं आरसी रिन्यूअल माए एक साल रो मोड़ो विवरण पर 500 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 2500 रुपया वेला। गैर परिवहन स्कूटर मोटरसाइकिल री आरसी नवीनीकरण माए मोड़ो विवरण पर 300 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 1000 रुपया फैला। आ राहत इस साल 30 सितंबर ताई मिलेला। प्रदेश रा लंकाओ आतुणी हलका माए चौमासा री बिरखा वेवण लगी है। फिलहाल मानसून री उत्तरी रेखा बाड़मेर अरजूतपुर वेती निकल रही है। इनरे आवता 2 दिन माए बीकानेर संभाग और आरएसआर रा हलका माए आगे बधवा रा आसार है। इनु जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हलका माए आवता 2-3 दिन गरज सागे हल्की बारिश रा आसार है। उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला माए बारिश सारू चेताईचियो है। ए बीचे राज्य रा घनखर हलका माए चौमासा री बिरखा वह रही है। मौसम विभाग रे मुजब 10 जुलाई बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। आज डूंगरपुर रा गलियाकोट सागवाड़ा और निठाउआ माए में बरसबा रा समाचार है। ए बीचे चित्तौड़गढ़ जिला रा कनेरा हलका रा लुणखंदा गांव माए बीती रात बिजली पड़ जावण 3 जना री मौत वेगी। एक ही परिवार रा ए लोग साखा री निगरानी सारू खेत माए सूता हा। पुलिस वन कनेरा CHC लेगी जठे डॉक्टर मारी मौत रो ऐलान कर दिनो। चौमासा माए बिजली पड़बार कारण हादसा री शंका न ध्यान रखता थका अजमेर विद्युत वितरण निगम जनताओं सावचेती राखण री अरज कीनी है। तेज आंधी और बारिश रे दौरान बिजली रा खंभा ट्रांसफार्मर और बिजली री लेना दूर रहवण री राय दीरी जी है। ई बीचे पाली माए मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू चिकित्सा विभाग तेल री गोलियां बनाई है। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल बतायो कि मच्छर पनपाऊ रोकण माए ओ जुगाड़ घणो काम रो है।
2: ऑयल वॉल है वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से, कपड़े के अंदर लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या 2 या 4 घंटे तक उसको जो जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हो। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और वो सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है, जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी हैं और सभी BCMO को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया।
0: जयपुर रा श्याम नगर हलका माए 200 फीट बाईपास कने आज तेज यूं जा रही एक ट्रक फुटपाथ माथे उबा 5 जना ने गचर दीना। हादसा माए 3 बच्चा री मौके ही मौत वेगी जबकि 2 जना घना जख्मी वेग्या। पुलिस मामला री जांच कर रही है। पाली जिला माए नेशनल हाईवे नंबर 162 माथे मोड़ भट्टा हलका माए एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर उ टकरा चावन रे कारण कार माए सवार

0: और पांच जना जख्मी है क्या। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर करना के अलावा खुर्द माई राखी जिया धार्मिक कार्यक्रम माई शामिल भिया और जनसभा ने संबोधित की ना। इ मौके वे कहो के मानवीय मूल्यान विचार व्यवहार और दिनचर्या माई शामिल करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष कहो के आखी दुनिया शांति और संतुलन सारू भरत ओड़ी उम्मीद री निजरू देख रही है और माने सनातन संस्कृति ने मार्गदर्शन री बुनियाद बनावनी चाहिए।
1: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले, करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो, वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो से ही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले, सत्य के मार्ग पर चले।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहा। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीच आज इंडोनेशिया री राजधानी जकार्ता में बातचीत हुई। इन दौरान दोनों देशों बीच रणनीतिक भागीदारी ने मजबूत बनावन रे बारे में चर्चा करी ची। दोनों नेताओं री मौजूदगी में रक्षा, खनिज, खेतीबाड़ी और नवी प्रौद्योगिकी समेत न्यारा न्यारा हल्का में भांत भांत रा करार माथे सही करी ची। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया री संसद ने ही संबोधित की ना। वाना भाषण में श्री मोदी समुद्र री दूरी ने दोनों देशों बीच रो पुल बतायो। भारत और इंडोनेशिया बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रो जिक्र करता थका प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद रे खिलाफ एका माथे जोर दिनो। वे कहो के भारत विस्तारवाद रे बजाय विकासवाद री नीति माय भरोसो करे है।
2: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।
0: इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति सुबियांतो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया नवाजा। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी ने बधाई देता थका इन्हने भारत रा हर रहवासी सारू माथो ऊंचो करण री बात बताई। वे कहो के ओ इनाम दुनिया माए भारत रा बधता मान और भरोसा री निशानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन रा सांस्कृतिक केंद्र में डूरंड कप फुटबॉल 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। इस आगे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट री ट्रॉफी ने न्यारी न्यारी ठौड़ घुमावन रा कार्यक्रम री आधिकारिक शुरुआत फेंकी। ये मौके राष्ट्रपति टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली सगली टीमा और खिलाड़ियों ने शुभकामनावां दीनी। श्रीमती मुर्मू खिलाड़ियों खेल भावना राखता थका बेहतरीन खेल रो दर्शाव करण सारू कहो।
3: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
0: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सेना प्रमुख धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन मौजूद है। ध्यानजोग है कि डूरंड कप देश की मान्योड़ी और ऐतिहासिक फुटबॉल होड़ है। थाईलैंड रा पटाया में भी 20 सालों कम उम्र रा खिलाड़ियों री एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत रा पहलवान सोना रा 4, चांदी रा 7 और कांसा रा 9 तमगा जीतिया। महिला वर्ग में भारत 184 अंक लेर उप विजेता रही, जबकि पुरुषों रा फ्री स्टाइल वर्ग में भारत री टीम 152 अंक कांसा गए तीजी ठौड़ माथे रही। दूजी कानी क्रिकेट

0: में भारत और इंग्लैंड बीच पांच टी ट्वेंटी मुकाबला री सीरीज रो तीजो मैच आज रात नॉटिंगहम में खेलो जावेला और मैच भारत रा समय रे मुजब रात 10 बजे शुरू भेला। केंद्र सरकार चीन री फौज रे भारत में 60 किलोमीटर अंदर ताई घुस जावन रो दावो करन वाला सोशल मीडिया माथे चल रहा वीडियो ने गलत बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई इन फर्जी बतायो है। इकाई ई वीडियो ने भरमावन वालों बताता था का कहो का इन रो भारत चीन सरहदों कोई लेनो देनो नहीं है। आखिर माए खास समाचार एक फेरू सुन ले रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरा रहा दूजा दिन कई केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कर प्रदेश रा विकास से जुड़िया खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी। प्रदेश रा घनखर हल्का माए चौमासारी बिरखा आवता दो दिन उदयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे भारी बारिश सारू चेताई छियो। भारत और इंडोनेशिया बीच कई समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मानू नवाजी चिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फुटबॉल रा डूरंड कप 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं संध्या के 7 बजे हैं और ये समय है हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। आज के इस ग्रामीण जगत को लेकर के उपस्थित हैं बजरंग सारस्वत और दीवान दान रत्नू।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुनने वाले सगले किसान भाइयों ने आपरे साथी दीवान दान रत्नु
1: और बजरंग सारस्वतरा
0: घणान घणा
1: राम राम
0: राम राम। बजरंग भाई के चौमासेरी बेड़ा आई रही है और लगोटक इंद्र भगवान मेहरबान वेरिया है और प्रदेश में घणेक थोड़ा बारिश हो रखी है और आपारे बीकानेर भी आने वाले एक दो दिन में बारिश होवेला। इन खातर किसान भाइया ने तो यही कहना है कि आपरी किसान री जी खेती बाड़ी रो काम काज है वे संभालो और पहला ही आपरी तैयारी रखो।
1: बिल्कुल साची क्यों दीवान भाई, मानसून है जी को आई गयो है, आस करा के आप गर्मी री जुताई टाइम सर कर दी है, बुआई कर दी है। जे आप मूंगरी खेती करना चाहो, मूंगरी उन्नत खेती करना चाहो दीवान भाई, तो इन बारे में आज की बात करनी चाहूँ।
0: बिल्कुल, आज बात करा किसान भाई आपा मूंगरी उन्नत खेती, क्योंकि किसान भाई अपन अठे मूंग मोठ जिकी दलहन फसल है बा जोरदार हुए है और अठेरी या दलहन फसल रे रूप में जिका जिका मूंगरी किस्मार बोई जाए बिन माथे आज अपा बात करा चर्चा करा। बजरंग भाई देखो, किसी खेती हो और किसी प्रकार की आप खरीफ री फसल हो चाहे रबी री फसल हो, बी में एक ही चीज़ आप हमेशा कहवा चोखो बीज और बीजोपचार यदि आप करा ला तो किसान भैया निसंदेह अपारो उत्पादन है वो चाओ और ठाओ रवेला।
1: दीवान भाई मूंग जको है वो कम अवधि में पाक जावे, पानी भी कम चाहिए, लागत भी कम आवे और अच्छी पैदावार देवे, तो इस वास्ते वो अपर महत्वपूर्ण खरीफ री दलहनी फसल है,
0: प्रमुख फसल है।
1: जिले मायने मूंग जी की औसत उत्पादकता है 405 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हिसाब है। जे अपा उन्नत किस्म और तकनीक अपनावा तो आप 810 क्विंटल तई आप इन्हें बढ़ा सका।
0: और अब बुआई बात करा तो देखो जून लास्ट जून बाद में मतलब 20 जुलाई तक अपा बुआई कर सका अपने इन क्षेत्र में।
1: दीवान भाई ई मूंगरी जे कोई भाई बुआई करना चाहे तो उन्नत किस्म किसी है, कई नाम है बारो, पकने री अवधि और औसत उपज और विशेषता ई बारे में की आप बताओ तो की सुनना भाई जान पड़े।
0: मोटा मोटी रूप में किसान भाई अपा उन्नत किस्म री बात करा तो अठे जी अपने मूंगरी प्रमुख उपज है बा इन प्रकार है। पहला तो बात करा बीज GM6 यानी गुजरात मूंग छे, तो आ है बजरंग भाई एक उन्नत प्रमुख बीज री किस्म जिकी 65-70 दिन तक पक जावे और इनमें 10-12

0: जिना बाद में पीला मोजेक जिका रोग प्रतिरोधी दाना चमकीला और बीकानेर रे वास्ते अपन जिका प्रसिद्ध है वे इन प्रकार ही हुए और इस खातर अपन इन्हें जीएम सिक्स गुजरात मूंग क्या करें। और दूसरो है आईपीएम विराट जिको भी 65 लगभग 65 दिन में पकड़ तैयार हो जाए और वो भी एक तरह रो रो सूखो और सहनशील मूंगरी जी की किस्म है।
1: दीवान भाई अगली किस्म है MH 421 यानी मोहिनी आ 665 दिनारे बिचारे पकड़ तैयार हो जावे और औसत उपज अपने मिले है प्रति हेक्टेयर हिसाब से 810 क्विंटल। इरी विशेषता आ है कि आ घनी बेगी पाकन वाली फसल है और बिरखा आधारित क्षेत्र वास्ते बहुत ही उपयुक्त है। सागे ही अगली उन्नत किस्म है SML 668 यानी पंत मूंग 5 आ 65-70 दिनारे बिचाड़े पकड़ तैयार हो जावे और औसत उपज मिले है अपने 910 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हिसाब से। विशेषता मोटा मोटी आ है कि सिंचित क्षेत्र वास्ते आ विशेष है। फड़ियां जकी है भाई गुच्छे महीने पनपहर दानो जको चमकीलो होवे है।
0: बिल्कुल। और बजरंग भाई अपन बीकानेर क्षेत्र में प्रमुख रूप हूँ खरीफ में जिकी मूंगरी किस्म बाईजे है अपा बा सकहाँ बा वातावरण अनुकूल हुए तो बा GM 6 IPM 23 और RMG 492 भी एक किस्म है जिकी अपार बीकानेर में प्रमुख रूप हूँ बोई जा करे जिकी 65-70 दिन तक पक्कर तैयार हो जावे और प्रति हेक्टर भी उत्पादन है 8-9 कुंटल प्रति हेक्टर उत्पादन हुए।
1: अब बीज दरी बात करता चाना लागे हाथ तो छोटे दाने वाली किस्म आप अपनानी चाहो तो 1215 किलो बीज प्रति हेक्टेयर हिसाब ठीक रहे। जे आप मोटे दाने वाली किस्म अपनावनी चाहो तो 1518 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हिसाब ठीक रहे और छिटकवा विधि अपनाओ तो 20-22 किलो प्रति हेक्टेयर बीज है बे मोकला रहे पर आ विधि जकी है आ डॉक्टर सु अनुशंसित कोनी है।
0: और देखो सिफारिश रे अनुसार अपा एक तो अपन माटी है भी माटी री सिफारिश अनुसार अपा कोई खेती करा तो हमेशा आप बातचीत करता हूँ। आज भी अपा कहवा के बजरंग भाई सिफारिश अनुसार अपारी खेती करनी जरूरी है चाहे बा दलहन फसल ही क्यों नहीं हो। और बीजोपचार प्रत्येक फसल रे उत्पादन वास्ते घणो जरूरी है। मूंग रे फसल में भी अपा जड़ गलन रोग है उकटा रोग है पीला मोजेक रोग है ए प्रमुख समस्या आगे उभर आया करे किसान भाई इन खातर पहला ही अपा बीजोपचार है वो 15-20% पैदावार यदि अपन बढ़ानी चाहो तो अपा बीजोपचार करनो जरूरी है ज्या फफूंद नाशक उपचार इस खातर प्रति किलो बीज रे में 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बोजन और 3 ग्राम फायोफिनेट ए मिथाइल 5-10 किलो पानी में घोल बनार अच्छी तरह छाया में सुखार भी वही हूँ पहला आपा इस जड़ गलन और उखठा रोग रे नियंत्रण खाते इन प्रकार आपा फफूंदनाशक उपचार कर सका।
1: दीवान भाई यहाँ ही आपा कीटनाशक उपचार अपना सका हाँ यहाँ ही आपा राइजोबियम कल्चर
0: बिल्कुल
1: कर सका हाँ तो ऐसा उपाय अपा अपना वाला तो अपने कम समय में कम लागत रे महीने मोकड़ो उत्पादन मिलेला और अपारी मेहनत है बा घणो रंग लावेला।
0: बिल्कुल। देखो बजरंग भाई आगे अपारी चर्चावा भी खूब है योजनावा भी है और बातड़िया भी आगे घनी कराला लेकिन किसान भाई है बे श्रोता है आपरी उड़ीक रखे आपरे गीतरी और तो अपा सुनावा एक संगाई दान दम्मा मीरो गावड़ो सुनो ओ मीठो गीतड़ लो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं आकाशवाणी हूं, 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: वाह स्वादिवान भाई, सांत्रो सो गीतरलो सुनायो और संदेशा सुनया। आपा खेती बाड़ी बात करी मूंगरी उन्नत खेती री, सागे सागे आपा बात करता साला पशुपालन री।
1: बिल्कुल बजरंग भाई, पशुपालन री बात आवे है तो पशुपालन री देखो चौमासे रे मैं यहाँ सगड़ों जरूरी है पशुपालन भाइयों ने वास्ते के अपार पशुआ रे टीकाकरण, क्योंकि बजरंग भाई गणकरी बीमारियां है नी बे चौमासे रे मैं होया करे, क्योंकि चौमासे रे मैं जिकी के जीव हूँ परजीवी हूँ जिकी बीमारियां हुए बे भी शामिल हुए, तो इर खातर अपाने जरूरी है चौमासे रे पहला बखत हूँ बखत माते अपा टीकाकरण करा लेवानी तो बे बीमारियां अपार पशु में लागे ही कोनी।
0: मानसून शुरू होता ही या बिरखा शुरू होता ही माटी में नमी आ जावे और चारा कानी कादो कीचड़ होवे, वातावरण में नमी रहवे, बिरे कारण पशु है जिका संक्रमित होने रो खतरो घणो रहवे। तो इस वास्ते टीकाकरण जको है वो आपने अबार जरूर करवाणो है। अपर पशुआ में गड़ घोंटू, लंगड़ा बुखार, मुँहपका, खुरपका एड़ा संक्रामक रोग है, ए तेजी सु नहीं फैले, समय सु आपा टीकाकरण करवा लेवा तो अपने पशु है बे आप उत्पादकता अपने लंबे समय तई बत्ते रूप रे मायने मोकड़े रूप में दे पावेला, यानी कि अबारो ओ जको समय है अपने चूकना ही कोनी है, अपारे पालतू पशु आ रे सबरो टीकाकरण करावना है।
1: बिल्कुल बजरंग भाई, और जिका गलगोटू रोग है पहला बात रोग माथे कर हाँ, तो गलगोटू रोग है तो ओ अपार गाय और भैंस में मुख्य रूप अपन देखा हाँ, और इनमें तेज बुखार भी हुए, गले में सूजन आ जाए, सांस लेने में दिक्कत हो जाए और लगभग दो तीन तक इरो असर रहे, तो गलगटू रोग वास्ते भी टीकाकरण है।

0: तो वो आप टीकाकरण करवा जिको HST को है वो गलगोटू रोग रे खातर हुए। और लंगड़ा बुखार किसान भया लंगड़ा बुखार बहुत खतरनाक रोग हुए है और इनमया जिको पशु है गाय भैंस जो भी पशु है वो मृतक जावे। इन खातर लंगड़ा बुखार पहला टीकाकरण कराना जरूरी है। इनमें तेज बुखार आवे पिछले पैर और कंधे रे माथे सोजन आवे पशु लंगड़ा और चलाउन लाग जावे और 2-3 दिन में पशु की मृत्यु हो जावे। इन खातर इरो एक मात्र एक ही बचाव ही उपचार है। इन खातर टीकाकरण के वहाँ बहुत जरूरी है।
1: आगलो है FMD टीकाकरण यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज। मुंह पका और खुरपका रोग जको है इरे नियंत्रण सारू आपने उपाय अपनानो है। इन रोग रे मायने मुंडे में और खुर में छाला हो जावे और ओ रोग होवे है मुख्य रूप से गाया में भैंसा में बेड़ा में और बकरिया में। आपर पशु है भी मुंडो लाड़ियाँ पड़न लाग जावे लंगड़ाउन लाग जावे और दूध उत्पादन है वो 70% ताई कम हो जावे। और आगलो जो को रोग है वो भेड़ बकरिया मायने होया करे है PPR। तो PPR रोग रा लक्षण जका है वे बुखार चढ़ जावे पशु ने दस्ता लागण लाग जावे मुंडे में छाला हो जावे पशु सामी आपा कहीं खाण ने देवा तो भी नेबिरका नहीं जाके ही कोनी और पशु है जिके रे जीवन रोग घणो खतरो हो जावे।
0: बिल्कुल बजरंग भाई ए तो आप अपा टीका रोग रे माथे बात करी तो इन रोग ने अपा उपचार वास्ते बचाव खातर जिको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे इन खातर टीकाकरण है अपा 15-20 दिन पहला ही लगावा। क्योंकि गलगोटू जिका रोग गलगोटू और लंगड़ा बुखार मतलब कई टीकाकरण तो ऐडा है जिका दोनों तीनों बीमारियां साथ ही लाग सके। बहुत अच्छी बात है कि आप यदि टीकाकरण करावा तो दो दो तीन तीन रोगारा एक साथ एक टीके में अपार काम चल जाए। जहाँ आप मई जून में जिको टीकाकरण आप बखत माते कोई किसान भाई करा दियो है टीकाकरण तो और भी अच्छी बात है। फिर भी आप वर्षा आयणु पहला पहला आप चौमासे में करा सका गलगोटू रोग लंगड़ा बुखार और इरा दोनों मिला पर और एक टीको भी होया करे। और खुरपका मुंहपका रोग वास्ते भी आप एक टीको होया करे वो भी आप 2 बार साल में ये टीके ने अपा लगा सका हाँ तो वो भी इन खातर टीकाकरण घणो जरूरी है।
1: दीवान भाई आप टीकाकरण करावा तो पशु की जीवन रक्षा होवे अपारे आर्थिक बचत होवे अपारे पशु है वे स्वस्थ रहे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होवे सागे ही टीकारी सुविधा है बा निःशुल्क उपलब्ध है अपने पशुपालन विभाग सगड़ा सरकारी टीका निःशुल्क रूप से लगावे है। इन सारू आपारे नज़दीक में जिको भी पशु चिकित्सालय है बैठे संपर्क कर सका हाँ। मोबाइल वेटरनरी यूनिट है टोल फ्री नंबर है 1962 इर पर आप कॉल कर आप निःशुल्क गाड़ी ने घरे मंगवा सका वे आवेला पशु रे टीकाकरण करेला।
0: और बीकानेर में आप बात कर हाँ तो बीकानेर में टीका लगाए जाने वालों मुख्य मोटे मोटी जगह है बा एक तो अपारा पशु चिकित्सालय नज़दीकी पशु चिकित्सालय कोई अपार गांव में है या कोई कस्बे में कठे भी जठे भी है वो चिकित्सालय। और मोटो यूनिट तो है मोबाइल वेटरनरी यूनिट है बाबी है पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय है बीकानेर में बठे भी आप करा सका। और कोई भी पशुधन सहायक है पशु डॉक्टर है भी आप चिकित्सक नंबर भी रखा तो वे भी आप बखत माते आप टीकाकरण करा देवे।
1: एक बात रो ध्यान रखना है कि टीको अपने स्वस्थ पशुओं में ही लगावनो है बीमार पशुओं ने लगावनो को नहीं है। और जिकी ब्यावतार गाय है भैंस है जिकी के बहुत बेगी ही ब्यावनाड़ी है बीरे भी टीको लगवानो को नहीं है।
0: हाँ और यदि पशु चिकित्सक रही सलाह रहे अनुसार कोई भी रोग हो जावे तो आप दिखावा तो भी रोग रो निदान है वो अपना पशु चिकित्सक है वे किन प्रकार किस रोग है किसी दवी पानी है बा अपना आप कर देवे। तो आ तो ही किसान भाया बजरंग भाई अपारे पशु टीकाकरण री गणी महत्व बात हमेशा भी करा और भी आगे कराना एक बात किसान भाया अपन जरूरी है पशु टीकाकरण कराणो। अब कोई बढ़िया सी कोई गीतलो सुना दो।
1: बिल्कुल दीवान भाई आगलो गीतलो ले रहे हूँ मैं तो अवसा सुना आपा ओ सांतरो सो राजस्थानी गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: वाह सदीवान भाई, संदेशा सुनिया और संदेशा हूँ पहली सांतरस्तु गीत सुनियो तावड़ा मंदो पड़ जा रही।
4: बिल्कुल, देखो सा आप तो आई उड़ीक रखा हाँ के तावड़ो कहीं मंदो पड़े और इन तावड़ो मंदो पड़िया बस अपार किसान भाइयों भी कई दिनचर्या चालू हुए। देखो सा किसान भाइयों रे वास्ते एक बजरंग भाई जरूरी मैं तो आज आप बात करी है योजना रे माथे बात करा, तो आप हमेशा बात करा जैविक खेती, तो जैविक खेती बहुत प्रोत्साहन देने वास्ते सरकार की प्रमुख योजना चाल रखी है और अपने भी किसान भाइयों ने भी जैविक खेती में कदम उठानो चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त गयो कि आप रासायनिक खेती के माथे जो ज़्यादा जोर देता, क्योंकि अब शुद्धता रो जमानो है, स्वास्थ्य रो जमानो है, लोग बाग सगला समझे भी है और ज़्यादा शुद्ध वेला स्वस्थ जी की चीज़ वेला बिने अपने निरोगी रहने वाली चीज़ वेला तो अपा बिने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उत्पादन भी ज़्यादा बिर दाम भी चोखा मिले। इन खातर अपने सरकारी योजना है भी सरकारी योजना रो सारो ले तो थका केंद्र सरकार रो सारो लेता थका अपने जैविक खेती माते ध्यान देनो चाहिए और जैविक खेती प्रति जिका प्रोत्साहन रूप में जिकी योजना में सहायता है बा किसान बयान है सहायता रे बया साथ सहायता लेर भी अपन जैविक खेती रो

0: बढ़ा सका।
1: दीवान भाई, जैविक खेती ने बढ़ावा देवण सारू आपारी केंद्र सरकार खासी सजग है और भांत भांतरी योजनावां चला रखी है, जिया के परंपरागत कृषि विकास योजना, अगली है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, फिर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है आप भी चाल रखी है, फिर पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जीरो बजट प्राकृतिक खेती आप भी बहुत ही शांतरी योजना है, सागे ही एक जिला एक उत्पाद जैविक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ए भांत भांतरी योजनावां हैं, जो कि सगड़ी बदे पो देवे है जैविक खेती सारू और मायने आकर्षक रूप रे मायने ऋण री सुविधा है, अनुदान री सुविधा है, किसान भाया वास्ते सगड़ी छूट है। जरूर तीन बात रही है कि आपा अरे बारे में पतो करा, झुकाव करा और जैविक खेती ने अपनावण सारू आपा सरकारी आजीका उपाय है आने अपनावा और दूजा किसान भाया ने भी प्रेरित करा,
0: आपा भी फायदो लेवा और आपा दूसरे किसान भाया ने भी फायदो दे रहा, क्योंकि विशेष करू पहला बात आप बजरंग भाई करा तो यह परंपरागत कृषि जिकी योजना है बीर माते देखा के इरमें आप भेड़प में भी समूरे रूप में भी आप फायदो ले सका, जहाँ 40-50 किसान भाया रो समूह बनार जैविक खेती कोई मोटे रूप में भी आप सेवण घास रो कोई उत्पादन लेवा या दूसरो कोई किणी प्रकार रो आप दान में दलहन तिलन में लेवा तो भी आप ले सका। हाँ, इमें वित्तीय सहायता है अपने 3 वर्ष रमया 31,500 रुपये प्रति हेक्टर अपने सहायता मिल सके। और साथ साथ आप बात करी के सहायता री सब्सिडी री तो किसान भैया ने इन कुल लागत रो आपने यदि कोई आधुनिक खेती करा तो जैविक खेती रमया कुल लागत रो 33% आपने सब्सिडी गणकरी योजना में आप मिल सके 33% या 60-70 लाख रुपए तक रो यदि आप मोटे रूप में आप जैविक खेती काम में ले सका। तो
1: दीवान भाई, इन सारू आपने जैविक खाद जिकी है बा निःशुल्क में मिले है, इन बाबत भांत भांतरा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित
0: है
1: और जीवामृत बीजामृत और भी जितनी भी तरह की बात है वे सब आपारे वास्ते दरवाजा खोलोड़ा है। जरूरत आ है कि आपा बने अपनावा और पाछी आपा जो भारत पुराने भारत में जैविक खेती होती ही बीरेकानी झुका और बीरो आपा आनंद लेवा।
0: और केंद्र सरकार जी नोडल एजेंसी है जिसका काम काज है जटे सब्सिडी दी रहकर वो है नाबार्ड, नाबार्ड बैंक है बीनू आपने ऋण उपलब्ध है एकदम सीधो यहाँ है के बैंक खाते कर्मचारी रहे खुद रहे किसान रे बैंक रे खाते में सीधो सब्सिडी आवे है और साफ सुथरो कामकाज है। और बजरंग भाई, इनरे बारे में बहुत योजनावा है, बहुत जानकारी है, बहुत फायदा है, ऐसे सगली योजनावा सगड़ा फायदा यदि किस प्रगतिशील किसान है बिने लेनो चाहे है तो वो कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अपारे बीछवाड़ में अपार जठे विश्वविद्यालय है बठे जापरो संपर्क करे तो बठे बखत बखत माते प्रशिक्षण हुए ट्रेनिंग हुए है बिया ने मोकड़ा फायदा दे रही जाए वह घुमाई भी करा हुआ है जगह जगह बिया ने प्रशिक्षण दे रहे तो सगड़ा फायदा सगली चीज़ा अपार बठेजार उपलब्ध हो सके पर किसान ने एक विजिट एक अपन बठेजार पर जानो पड़सी।
1: देखो सागे ही कृषि विभाग है जहाँ आप बताओ कृषि विज्ञान केंद्र है, किसान कॉल सेंटर अपार वास्ते उपलब्ध है और जैविक खेती इन जो पोर्टल है सरकारी प्रमाणीकरण विपणन सारू आप आंसू बत्ती जानकारी हासिल कर सका।
0: और अब देखो बजरंग भाई, आगले गीतड़ले वास्ते आप चाला तो सुना हो आगलो गीतड़ लो।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु साझेदारी, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का मिलकर काम करना जरूरी है। जिन देशों से ज्यादा प्रदूषण होता है उन्हें आगे बढ़कर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए और गरीब और कमजोर देशों को पैसा, तकनीक और जरूरी मदद देनी चाहिए। UNFCCC जैसे ढांचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब वादा करने का नहीं, काम करने का समय है। साथ मिलकर हमें कम कार्बन वाले एक सुदृढ़ भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के सिर्फ 5 सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले देश मिलकर लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहे थे।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बजरंग भाई, अबार अपा संदेश में भी सुनियो हो के अपारे प्रकृति ने वातावरण ने साफ रखनो, सुथरो रखनो, पूरी मुनीम लगा राखी है, चाहे आपा राज्य सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे आपारे आको संसार हो। इन खातर अब आगे चौमासो आ रही है, बारिश रो मौसम आ रही है, तो ज़्यादा ज़्यादा अपाने भी अपारो गांव ने यदि हरो भरो बनानो है और चारा बड़ी हरियाली करनी है तो अपन करनो है वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण किसान भैया, अपन गांव में एक और चीज़ बताऊँ बजरंग,

0: भाई
1: बताओ
0: गांव में अपारे यदि वर्क्स है रूख है बे दो तीन जगह अब सरकार है खानी फ्री में भी मिल रहा है। यदि अपन ज्यादा से ज्यादा वर्क्स रोपण फायदे उठाना है तो अपारे एक तो टावर आ रहे स्कूल में फ्री में मिले बटू अपा वर्क्स ला सका तरह तरह रा रूख ला सका अपारी ग्राम पंचायत कार्यालय है तो बठे में भी अपने फ्री में वर्क्स मिली बठे अपने मुफ्त में वर्क्स मिल सके वे अपने घरे ला पर अपार आगती पाती वर्क्स लगा सका।
1: बिल्कुल सा तो सावना उनाड़ो है बिरखा भी शुरू उनाड़ी है अपने चूकणो ही कोनी है अपारे गाँव ने अपारे आगती पाखती रे पूरे परिवेश ने हरियो भरियो बनावनो है इन मायने कोई बात री चूक नहीं करनी है
0: नहीं करनी। अब देखो साहब बजरंग भाई कार्यक्रम रो वक्त हो रियो है पूरो तो अपा लेवा ग्रामीण जगत सगले भाया हूं
1: भाई बेना सु सीख लेवा तो बजरंग सारस्वत
0: और दीवान दान रत्न देव सीख
1: गणान गणा
0: राम राम
1: राम राम
0: सीख।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे थे बजरंग सारस्वत और दीवान दान रत्नु। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में पहला सुगम गीत सुनिएगा ललित कुमार व्यास की आवाज़ में।

पंकज उदास की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है हमारे श्रोताओं के लिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में पहला गीत सुनिएगा कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। ये गीत आप सुनेंगे फिल्म हम है राही प्यार के।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म बेताब से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए फिल्म संगीत में अगला गीत सुनिएगा बेटा फिल्म से, ये गीत होगा अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

ए हरिहरन की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म विरासत से। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में अगला गीत सुनिएगा फिल्म मैंने प्यार किया।

लीजिए फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिएगा उदित नारायण की आवाज़ में, और उनके साथ में है अलका याग्निक, और ये गीत आप सुनेंगे फिल्म कोयला से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में पहला गीत सुनिएगा, पहला लोकगीत सुनिएगा घूमर चंद्रशेखर कल्ला की आवाज़ में।

0: शोभा व्यास की आवाज़ के साथ ही लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार संध्या, तत्पश्चात न्यूज़ @9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6,000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के 3रे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं।

0: इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया

0: एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है, विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि

0: इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
4: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी।

0: India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं और ये समय है आप लोगों के लिए फिल्म संगीत का। लीजिए फिल्म संगीत का पहला गीत सुनिएगा, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म गीत से

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म आई मिलन की रात से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर।

0: रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भेंट वार्ता। वरिष्ठ साहित्यकार मालचंद तिवाड़ी से डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य की बातचीत होगी। इस भेंट वार्ता की प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन है श्री अमित सिंह का।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं कार्यक्रम शख्सियत, जिसमें आपसे अपने साहित्यिक अनुभवों को साझा करेंगे श्री मालचंद जी तिवाड़ी। बीकानेर मस्तमौला शहर के नाम से जाना जाता है, रसगुल्लों की मिठास और भुजिया पापड़ के चरकास से, लेकिन इससे भी इतर जाना जाता है कला और साहित्य के लिए। साहित्य का जब नाम आता है तो एक नाम ऐसा है जिनका नाम ही बीकानेर का पर्याय बन चुका है। मैं जिक्र कर रहा हूँ राजस्थानी और हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार श्री मालचंद तिवाड़ी का। आपका जन्म 19 मार्च 1958 को हुआ। आपने राजस्थानी में बुढ़ावण उपन्यास लिखा, इसके अलावा आपका दड़न कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है और उत्तरोय आभो कविता संग्रह भी आ चुका है। इसके अलावा हिंदी की यदि बात करें तो आपका पर्यायवाची उपन्यास सुकांत के सपनों में, पानीदार तथा अन्य कहानियां, जालियां और झरोखे नाम से 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा आपने गीतांजलि का राजस्थानी में अनुवाद भी किया है और हिंदी के अंदर बोरुंदा डायरी के नाम से आपकी चर्चित अप्रतिम बिज्जी का विदा गीत भी प्रकाशित हो चुका है। उत्तरोय आभो पर आपको साहित्य अकादमी नई दिल्ली से 1997 में पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा इसी पुस्तक पर गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में आप सन 2003 से 2007 तक राजस्थानी भाषा के संयोजक और कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। आपको राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा आपको महाराजा पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान भी घोषित हो चुका है। मालचंद जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी शुक्रिया नमामि जी, और आपके श्रोताओं को भी मैं नमस्कार करता हूँ।
1: मालचंद जी, आपने अपनी साहित्यिक यात्रा श्री डूंगरगढ़ से प्रारंभ की, आपकी इस यात्रा में श्री डूंगरगढ़ का क्या योगदान रहा?
2: देखिए, डूंगरगढ़ से मेरा संबंध काफी लंबा रहा है। असल बात यह है कि डूंगरगढ़ से हम लोग बीकानेर आ गए थे और उसके बाद सन 1979 में किन्हीं पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से हम लोग वापस, मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी, उस समय मैं युवा था, वापस डूंगरगढ़ गए। मुझे नहीं जानकारी थी कि डूंगरगढ़ इतनी संपन्न साहित्यिक नगरी है। एक छोटा सा कस्बा है लेकिन उसकी साहित्यिक परंपराएं बहुत पुरानी थी। वहाँ 60 के दशक में राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था स्थापित हो चुकी थी और आज जिसका संस्कृति भवन है, आप नेशनल हाईवे 11 पर देखें तो संस्कृति भवन उसका है
1: जी।
2: और इतना ही नहीं, वहाँ का पुस्तकालय श्री डूंगरगढ़ पुस्तकालय शायद हमारे राजस्थान के अनेक प्राचीन पुस्तकालयों में, जो कस्बों में हुआ ही करते थे, शेखावाटी के कस्बों में शायद ही कोई ऐसा कस्बा है जिसमें पुस्तकालय नहीं हो। और डूंगरगढ़ भी उस समय चूरू जिले में आता था, बाद में वह बीकानेर जिले में आया, तो उसको भी एक तरह से हम शेखावाटी अंचल का भी उस समय मानते थे। तो उसी परंपरा में श्री डूंगरगढ़ पुस्तकालय भी था। और एक रोचक बात यह है कि मैं जब डूंगरगढ़ पहुंचा तब मैं इन सब बातों से परिचित नहीं था और श्री डूंगरगढ़ पुस्तकालय के नीचे के सभागार में एक जलसा हो रहा था और उसमें कवि नागार्जुन कविता पाठ कर रहे थे और मैं चूंकि आमंत्रित नहीं था इसलिए मैं सड़क पर खड़ा हुआ नागार्जुन का कविता पाठ सुन रहा था। और बाद में उसी संस्था ने मुझे पहचाना और मुझे लिखने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार लेखन की मेरी शुरुआत डूंगरगढ़ से ही हुई। पुनः डूंगरगढ़ में एक पत्रिका निकलती थी उन दोनों, जो आज भी निकलती है, राजस्थली।
1: राजस्थली जी,
2: राजस्थली के संपादक श्याम महर्षि होते थे और उसके प्रबंध संपादक सुविख्यात राजस्थानी लेखक डॉक्टर चेतन स्वामी, जिनका अपना एक बड़ा नाम है राजस्थानी में, तो उसके प्रबंध संपादक हुआ करते थे। श्याम जी के पास जब मैं पहुंचा तो उनको लगा कि ये लड़का कुछ पढ़ा लिखा लगता है, साहित्य। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लेखक नहीं था लेकिन एक घनघोर पाठक था। बीकानेर में मेरे एक मित्र थे डॉक्टर मोहन तिवारी, मेडिकल के स्टूडेंट थे, मुझसे उम्र में बड़े थे लेकिन उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो उनके यहाँ से लेकर मैंने प्रेमचंद, मानसरोवर के 8 भाग और प्रेमचंद

0: इला चंद्र जोशी के उपन्यास अमृत लाल नागर,
1: जी
0: इन सबको उस समय मैं पढ़ लिया था, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि बूढ़ी काकी प्रेमचंद की जो कहानी है या ईदगाह जैसी कहानी क्या कभी कोई साधारण आदमी लिख सकता है। तो प्रेमचंद इतने बड़े थे मेरे लिए कि अकल्पनीय था कि मैं भी कभी लिखूंगा, लेकिन श्याम महर्षि जी ने इसको मुमकिन करवाया। उन्होंने मुझसे कहा कि राजस्थानी में राजस्थली के लिए कुछ लिखो, तो तब तक मैं राजस्थानी की पुस्तकें भी पढ़ चुका था, अन्नाराम जी सुदामा को भी पढ़ चुका था, कुछ राजस्थानी की पुस्तकें भी पढ़ चुका था। तो मैंने सर्वप्रथम दो लघु कथाएं लिखी जिनको ठोक पीट कर श्याम जी ने राजस्थली में प्रकाशित किया। तो वह मेरी डूंगरगढ़ में शुरू हुई साहित्यिक यात्रा थी जो 1979 में शुरू हुई और 1980 आते आते मेरी पहली कहानी छप गई।
1: जी
0: और फिर तो 1981, 82, 83 ऐसे साल दर साल मैं कहानियों पर कहानियां, कहानियों पर कहानियां, कहानियों पर कहानियां लिखता चला गया। और राजस्थली के ये एक संपूर्ण अंक के लिए श्याम जी ने मुझसे कहा कि एक छोटा उपन्यास लिख सकते हो क्या। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने करीब 2.5 दिन में
1: जी
0: बोड़ावन उपन्यास
1: बोड़ावन
0: उपन्यास लिख कर प्रवाह में लिख कर ले जाकर श्याम जी को पकड़ा दिया।
1: काफी चर्चित रहा यह
0: और
1: उपन्यास।
0: ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पाठ्यक्रम में
1: जी
0: भी लगा।
1: जी
0: उन्होंने
1: जी
0: मुझे इससे फिर से लिखवाया छात्र संस्करण के रूप में ढालने के लिए, क्योंकि छात्रों के लिए कुछ चीजें अनुकूल प्रतिकूल देखनी
1: जी
0: पड़ती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मुझे कहा कि आप इसको थोड़ा सा देखकर दोबारा लिख दे, तो मैंने ऐसा किया और वह पाठ्यक्रम में भी रहा। तो यह एक तरह से यात्रा शुरू हुई।
1: जैसे मैंने श्रोताओं के साथ आपका परिचय साझा किया था, उसमें मैंने जानबूझकर एक पुस्तक है और वो पुस्तक है सेलिब्रेशन। पुस्तक तो राजस्थानी की है, लेकिन उसका नाम सेलिब्रेशन, ऐसा क्यों?
0: देखिए, अंग्रेजी एक ऐसी वैश्विक भाषा है जिसके शब्दों का प्रयोग शायद ही विश्व की कोई भाषा हो, और भारतीय भाषाएं विशेष रूप से भारतीय भाषाएं जिनमें ना होता हो। क्या तमिल में भी रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन नहीं कहते
1: जी
0: होंगे? क्या किसी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अंग्रेजी नाम सहज हैं, लेकिन हिंदी में अगर हम उनको खोजने जाएंगे तो मुश्किल होगी। और ठीक इसी प्रकार हमारी मातृभाषाओं के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर हम अंग्रेजी में उनका समानांतर खोजने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। जैसे मैं आपको एक रोचक उदाहरण देता हूं,
1: जी
0: हमारे राजस्थान में लोग धोती, पुरुष जो है वो धोती पहनते हैं,
1: जी
0: धोती कुर्ता। अब धोती को राजस्थानी में स्त्रियों का पहनावा भी माना जाता है,
1: जी
0: लेकिन अंग्रेज जब आए, जब उन्होंने औद्योगिकरण अपने तरह से किया, हमारे यहाँ तो धोती पहले से बनती थी। आप अगर पुरानी किताबें पढ़ेंगे, महात्मा सुंदरलाल की या वेल्ड्यूरा की किताब 1930 में जो छपी है द केस ऑफ इंडिया, तो पता चलेगा कि अंग्रेजों के आने से पहले हम कितने समृद्ध थे। हमारे ढाका में मलमल बनती थी वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक अलग किस्सा है। लेकिन धोती शब्द के लिए अंग्रेजों के पास कोई शब्द नहीं था। तो पुरानी जो धोतियां आती थी तो उन पर अंग्रेज इसके लिए एक हास्यास्पद नाम लिखते थे, धोती लॉन्ग क्लोथ।
1: जी
0: अब बताइए लॉन्ग क्लोथ से धोती को कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता
1: सही
0: है। इसी तरह हम स्टेशन को अगर लो पथगामनी विश्राम स्थल आदि कहें
1: संभव
0: तो
1: नहीं
0: यह भी
1: रहता
0: उतना ही हास्यास्पद है। तो सेलिब्रेशन कहानी का जो कथानक है उसके सभी पात्र राजस्थान के हैं, राजस्थानी बोलने वाले हैं, लेकिन उनकी चूंकि वे मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो उनके यहाँ अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन बहुत है। और ये बहुत झीनी बारीक बनावट की कहानी है, इसमें सेलिब्रेशन किया जा रहा है किस चीज का, एक VCR का। अब तो डिजिटल का जमाना आ गया है, हास्यास्पद लगता है कि VCR भी कोई चीज था, लेकिन ये कहानी तो मैंने बहुत पहले लिखी। तो उसमें सेलिब्रेशन किया जा रहा है स्त्रियों द्वारा VCR का, और किसी एक स्त्री के यहाँ पार्टी है, लेकिन कहानी के कथानक में कुछ ऐसा होता है कि रात को उस सोहनी देवी के पति जब VCR लेकर आते हैं उसके लिए भेंट स्वरूप, तो उस तब तक एक भयानक दुर्घटना घट चुकी होती है, क्योंकि उसकी काम वाली बाई, जिसका नाम भी नहीं पूछा उन्होंने कभी मध्यम वर्गीय स्त्रियों ने, काम वाली कहने से ही काम चलता था, उसका पति उसको कैंची घोंप कर जान से मार देती है। तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं अचेतन स्तर पर यह मेरी भी कहानी है। और वो VCR को पति के हाथ से लेकर गुस्से में पटक कर तोड़ देती है। तो मैंने इस मोमेंट की व्यंजना के लिए क्या है, जो स्वतंत्रता की परिस्थिति उत्पन्न हुई है क्रोध में ही सही, लेकिन उसको सेलिब्रेट कर रही है। तो इस तरह से मैंने ये इसका नाम सेलिब्रेशन के अलावा कुछ देना मुझे उचित नहीं लगा।
1: जब आपने राजस्थानी की बात की है तो आपने

0: बारे में नोबेल के लिए नामित विजयदान देथा की बातों की फुलवारियों का न केवल हिंदी में अनुवाद किया वरन लगभग एक वर्ष से भी अधिक आप उनके गांव में बोरुंदा में उनके साथ रहे। वहां आपने अनुवाद कार्य के साथ हिंदी की अत्यंत चर्चित डायरी विधा की पुस्तक बोरुंदा डायरी का सृजन भी किया। क्या आप उन दिनों के अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे?
1: देखिए, बोरुंदा डायरी में मैंने एक जगह लिखा है, मैं एक आस्तिक आदमी हूँ
0: जी।
1: हालांकि आरंभिक दिनों में स्वाभाविक ही युवा अवस्था में मैं आज भी कहता हूँ कि आदमी को परिवर्तन कामी होना चाहिए। डायरी में एक ठीक उलट विजयदान देता एकदम मतलब प्रतिबद्ध मार्क्सवादी थे और मैं उनका शिष्य एक प्रतिबद्ध मातृभक्त यानी देवी भक्त के रूप में उसमें आता हूँ। तो उसमें मैंने लिखा है डायरी में कि पता नहीं माँ ने अपने किस बुगचे में यह 1.5 वर्ष का अंतराल मेरे लिए छुपा रखा था, जो मुझे विजयदान देथा जैसे कृति व्यक्तित्व के साथ गुजारने का अवसर मिला।
0: क्या बात है।
1: और दिन भर मैं अनुवाद के काम में मुब्तिला रहता था और आप जानते हैं कि अनुवाद का कार्य कितना कठिन और कितना चुनौतीपूर्ण और खासकर विजयदान देथा के लिखेगा, क्योंकि विजयदान देथा का गद्य जो है वो एक तरह से परवर्ती राजस्थानी गद्य लेखकों के लिए एक अघोषित स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है
0: जी।
1: जैसे दोस्तोवस्की ने कभी कहा था गोगोल के लिए कि हम सब बाद के लेखक तो जो है वो गोगोल के ओवरकोट, उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है ओवरकोट, तो हम सब लेखक तो गोगोल के ओवरकोट की जेब में से निकले। तो मैं ये कहता हूँ, ये बहुत अतिरंजित भी नहीं है कि आधुनिक राजस्थानी गद्य जो है वो विजयदान देथा और उनके समकालीन जो दूसरे लेखक थे, नानूराम जी संस्कृत थे, मुरलीधर व्यास राजस्थानी थे, उन जैसे लेखकों को हम एक समग्र गोगोल मान ले तो हम सब उनके ओवरकोट की जेब में से निकले हैं। उनके साथ मतलब मेरा ये था कि मैं सुबह नाश्ता उनके साथ करता था, दोपहर का भोजन उनके साथ करता था और शाम का भोजन मैं अपने कमरे में करता था रात को थोड़ी देरी से। तो वो दिन में जो उनके साथ मिलना होता था उसमें उनकी चुवल, उनकी विनोद वृत्ति, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी विट, वे बहुत प्रत्युत्पन्न मती आदमी थे और बहुत जिंदा दिल विनोदी थे। उस समय वो लगभग 87 में चल रहे थे और मेरे वहां रहते रहते उनका निधन हो गया 10 नवंबर 1913 को, जब मैं अपने काम की आखिरी कहानी 13वें भाग की बातारी फुलवाड़ी उसका अनुवाद कर रहा था तब एक सवेरे उनका निधन हो गया। तो मैं, मेरे लिए ये एक किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं था कि मैं विजयदान जी के साथ रहा। अब उसमें मुझे बहुत ज्यादा याद जो आता है वो कई करुण प्रसंग बोरुंदा डायरी में है। उसमें ये है कि एक तो जब विजयदान देथा को ये पता लग गया कि ये रोज शाम को डायरी लिखता है, किसी तरह उनको पता लग गया तो उन्होंने कहा कि मुझे डायरी सुनानी पड़ेगी और जब सुनी तो उन्होंने कहा इसकी निरंतरता बनाए रखनी है। उनको लग रहा था कि ये बहुत जीवंत तरह से। इसके अलावा उन्होंने अनुवाद करने से पहले जब अनुवाद का अनुबंध हुआ था एक हिंदी प्रकाशक के साथ तो हिंदी प्रकाशक को कहा था कि अनुवादक मेरी मर्जी का होगा, तो उन्होंने प्रकाशक को 3 आदमियों का पैनल दिया था
0: जी।
1: ये क्योंकि ये ऐसा काम था जिसमें विजयदान देथा की एक शर्त ये थी कि अनुवाद जो भी करेगा मेरे पास रहेगा, तो वहां रह कौन सकता था। तो इस तरह से अनुवाद के काम में मैं वहां चला गया और मैंने किया साहब।
0: अच्छा, एक और बात ही कि मुझे जैसी जानकारी मिली है उसके अनुसार आप मुख्यतः तो गद्य लेखक हैं, लेकिन आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार आपकी एकमात्र राजस्थानी कविता संग्रह उतरियो है आबो पर मिला है, तो कविता के साथ अपने संबंध के बारे में कुछ बताइए।
1: देखिए, गुप्त प्रेम बहुत मीठा होता है
0: जी।
1: और हर कोई करता है
0: जी।
1: मेरा कविता के साथ गुप्त प्रेम था।
0: अच्छा।
1: और मैं जब पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था तो आलोचना की बहुत किताबें मैंने कविता की पढ़ी थी, जिनमें मलयज मेरे प्रिय लेखक रहे, उनकी जो किताबें हैं, डायरी है उनकी कविता पर है, और नामवर सिंह जी की किताब एक जमाने में बड़ी चर्चित होती थी कविता के नए प्रतिमा, तो ये सब तक पढ़ते और फिर हिंदी कवियों को पढ़ते हुए, और उन दिनों 1982 में बीकानेर में नंदकिशोर आचार्य प्रति माह एक युवा कवि का कविता पाठ करवाते थे
0: जी।
1: तो उनको पता था कि मैं कुछ छुप छुप के कविताएं लिखता हूँ, उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हें कविता पाठ करना है। उस बहाने से उन कविताओं को इकट्ठा किया और जब इकट्ठा हो गई तो काव्य पाठ तो हुआ ही। फिर बाद में मित्रों ने सलाह दी कि अब आप एक पांडुलिपि जमा करवा दीजिए इस राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी में, तो जमा करवा दी। वहां से एक छोटा सा अनुदान मिल गया, तो मिल गया तो मुझे आज भी नंदकिशोर जी के शब्द याद है कि मैं उस अनुदान में वो किताब नहीं छप सकती थी। तो उन्होंने कहा कि तुमने पहले तो ये गुनाह बेलज़

0: क्यों किया
1: जी
0: कि राजस्थानी अकादमी में किताब दी, तुम्हें किस तरह की सहायता की जरूरत है, और अब कर दिया तो इसको छपवाता क्यों नहीं। इस तरह से वो मेरा संग्रह जो है एक प्रकाशक दी तैयार हो गए, उस राशि में छप गया।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं श्री मालचंद तिवाड़ी से खास बातचीत, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समकालीन एक सवाल और करते हैं आपसे। मालचंद जी, सोशल मीडिया ने साहित्य की पहुंच सर्वसुलभ तो की है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है?
0: देखिए, इस मामले में सोशल मीडिया की मैं प्रशंसा करता हूं और स्वागत करता हूं कि सोशल मीडिया ने साहित्य के लोकतंत्रीकरण को व्यापक किया है, क्योंकि पहले एक तरह की कठोर व्यवस्थाएं थी
1: जी जी
0: कि आपका साहित्य में प्रवेश किसी पत्र या पत्रिका के माध्यम से होता था, वहां कठोर संपादकीय छन्नी होती थी और उसमें से गुजरकर आप कुछ अगर छपा पाए तो ही आपका नाम होता था। अब आप स्वतंत्र हैं, आप फेसबुक पर कविता लिख सकते हैं, गद्य लिख सकते हैं, किसी भी विधा में लिख सकते हैं, और तत्काल एक रेस्पॉन्ड आपको मिलता है, एक प्रतिक्रिया मिलती है, तो इससे कुछ अच्छे लेखक भी
1: तैयार होते हैं।
0: लेकिन इसके समानांतर यह भी है, इस खुले लोकतंत्र की वजह से, तो इसकी वजह से अब जो तो कोई कवि और लेखक बन रहा है,
1: यानी
0: तो
1: पढ़ते कम है लिखते ज्यादा,
0: इसमें पढ़ते कम है और लिखते ज्यादा है, और अपनी जो पूर्ववर्ती परंपरा है जिस भाषा में वो लिख रहे हैं उससे सांगो पांग प्रगाढ़ परिचय किए बिना अब जैसी तैसी कविताएं आ रही है।
1: जी, तो एक चीज और है कि इस समय AI का दौर चल रहा है
0: जी,
1: और AI के खतरे और उसकी संभावनाओं को आप भविष्य के साहित्यिक परिदृश्य के साथ जोड़कर कैसे देखते हैं?
0: नहीं, AI तो अभी कुछ मेरे पूरी तरह समझ में नहीं आया है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि मैंने अभी तक एक बार भी इसका कोई प्रयोग नहीं किया है। कुछ मित्रों ने मेरी एक बहुचर्चित कविता स्त्री विमर्श के बारे में से कुछ पूछा, जो उसके उत्तर दिए उन्होंने, मुझे भी दिखाए और पर भी लगाए, तो मुझे लगा कि यार ये तो अच्छी आलोचना लिख रहा है, अच्छा आलोचक है
1: जी।
0: और मित्र ये भी कहते हैं कि तुम अब क्या उपन्यास लिखोगे या कहानी लिखोगे।
1: अच्छा।
0: अभी हिंदी की एक घटना है, हिंदी में एक कहानी, एक पत्रिका की घटना है कि उसमें एक कहानी लंदन के कोई के लेखक है, उसकी कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी प्रथम आ गई और वह कहानी मेल के जरिए हिंदी के कई प्रसिद्ध लेखकों को मेल से भेज दी और उस कहानी की बड़ी चर्चा है। उसके बारे में दो तरह की अफवाहें, एक तो यह है कि यह कहानी इतनी पोएटिक और इतना इसका गद्य सुंदर है कि ये तो बहुत ही निपुण लेखक की लिखी हुई है, तो यह है कि फिर इसका लेखक कौन है, और दूसरी अफवाह यह है कि यह AI जनरेटेड कहानी है, तो यह एक बड़ा खतरा है। लेकिन मैं फिर भी आश्वस्त हूं कि AI कुछ भी कर ले, लेकिन दूसरा महाभारत नहीं लिख सकती
1: जी जी,
0: दूसरी रामचरितमानस नहीं लिख सकती, नहीं गालिब का दीवान लिख सकती है, नहीं मीर का दीवान लिख सकती है, और इसी तरह अनेक कालजयी कृतियां हैं, क्या कालिदास को रिपीट कर सकती है, क्या अभियान शाकुंतलम लिख सकती है?
1: आपके कहने का तात्पर्य यही है कि कालजयी रचनाओं के लिए लेखक होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि संवेदनाओं से परिपूर्ण होना जरूरी है।
0: संवेदनाओं से परिपूर्ण एक तरह के, मतलब क्या है कि साहित्य को बहुत एक तरह से यूं थोड़ा लेफ्ट हैंड मतलब जॉब समझ लिया है कि बाएं हाथ से कर लेंगे इसको, तो नहीं, साहित्य में भी प्रशिक्षण की जरूरत होती है
1: जी,
0: और प्रशिक्षण यह है कि सबसे पहले तो आप भाषा पे कमांड कीजिए, उसके व्याकरण के साथ, उसके व्यवहार के साथ, उसके उस्तादों के, उसके इस्तेमाल के साथ सांगोपांग, और मेरी नजर में तो यह है कि एक तरह की उपनिषदिक परंपरा गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए, जिसका सौभाग्य मुझे मिला क्या, मैं विजयदान देथा के साथ रहा, मैं नंदकिशोर आचार्य के सान्निध्य में बरसों बरस रहा, बीकानेर के इसी आकाशवाणी में मेरी एक वार्ता प्रसारित हुई थी, लेखक का कोई एक द्रोणाचार्य नहीं होता, उस वार्ता को नंदकिशोर आचार्य ने सुना और ये बहुत क्लिक किया उनको कि एक ऐसा कोई लड़का है जो बड़ी अनूठी बात कह रहा है कि लेखक का कोई एक द्रोणाचार्य नहीं होता।
1: नहीं, सही है,
0: धनुर्विद्या सीखने के लिए अर्जुन को एक द्रोणाचार्य पर्याप्त थे, लेकिन लेखक बनने के लिए आपको देश विदेश में कितने द्रोणाचार्य बैठे हैं
1: जी,
0: सबसे सांगोपांग सीखना पड़ता है, तो ये बात है।
1: समकालीन हिंदी और राजस्थानी साहित्यिक परिदृश्य को आप किस नजरिए से देखते हैं?
0: अब ये क्या वो जजमेंटल हो जाएगा मामला कुछ?
1: अच्छा,
0: जजमेंट मतलब अब कोई निर्णायक रूप से कुछ कहना अच्छा नहीं होता,
1: सामान्य रूप
0: अच्छा,
1: से आप...
0: सामान्य रूप से ये है कि जहाँ कुछ अच्छा लिखा जा रहा है वहाँ यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ फौरी तात्कालिक, जिसे मैक्सिम गोर्की के शब्दों में कहें तो सर्वग्रासी समसामयिकता से ग्रसित
1: जी,

0: इस पर अपने समय का इतना दबाव है कि वो उस समय से बाहर जाकर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, या अपने समय को इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि वो सार्वकालिक व्यंजना लिए हुए हो। तो यह मामला राजस्थानी में भी है, हिंदी में मैं नामोल्लेख करके नहीं कहना चाहता।
1: अच्छा, एक चीज और है कि आपने गीतांजलि का अनुवाद मूल बंगाली भाषा से किया है।
0: जी
1: बंगाली साहित्य के साथ आप इतने रचे बसे हैं, तो इसके बारे में क्या अनुभव है आपके?
0: देखिए, मैंने सबसे पहले जिस लेखक को पढ़ा उनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
1: जी
0: जब मैं

0: बंगाली साहित्य के साथ आप इतने रचे बसे हैं, तो इसके बारे में क्या अनुभव है आपके?
1: देखिए, मैंने सबसे पहले जिस लेखक को पढ़ा उनका नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय।
0: जी,
1: जब मैं बिल्कुल ही कोरा था तो चंदन नगर जो फ्रांसीसी उपनिवेश था भारत में और हुगली जिले में है कलकत्ता के पास,
0: जी,
1: तो चंदन नगर में मेरी एक बहन रहती थी और उसके यहाँ मैं छुट्टियां मनाने जाया करता था। मेरी बहन को किताबें पढ़ने का शौक था और उनके यहाँ शरदचंद्र, बंकिम चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर आदि के हिंदी अनुवाद उपलब्ध थे
0: जी,
1: और मैं छुट्टियों में ही जा गया था तो भी हिंदी अनुवाद पढ़े और इतना मुग्ध हुआ। और मेरे जो भांजे भांजी थे वे सब बंगला मीडियम में पढ़ते थे और आप जानते हैं कि एक उम्र होती है, किशोर उम्र होती है, तब लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है आदमी।
0: हाँ।
1: तो मैंने तुरंत बंगाली भाषा को ग्रहण कर लिया और वो जो प्रेम हुआ वो आज तक कायम है। और मैं अभी 2024 में कलकत्ता गया था तो मेरे साथ एक बीकानेर के मित्र गए थे, वे चकित रहे कि मैंने कलकत्ता में किसी बंगाली के साथ बंगला के अलावा किसी अन्य भाषा में बात नहीं की और किसी बंगाली के चेहरे पर एक संदेह की लकीर नहीं आई कि ये नॉन बंगाली है।
0: एक छोटा सा सवाल है, बीकानेर के बल्कि राजस्थान के लेखक उर्दू अदब में भी आपकी अच्छी खासी दखल बताते हैं,
1: जी
0: उर्दू जबान और उसके साहित्य के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, थोड़े से शब्दों में बताइए।
1: देखिए, उर्दू सबसे पहले तो उर्दू जबान का जो है वो जायका मुझे चखा है हिंदी फिल्मी गीतों ने। आप हिंदी फिल्मी गीत देखते हैं? दिल ने फिर याद किया का एक गाना याद दिलाता हूँ आप, उसमें होता है दिल ने फिर याद किया, बर्क सी लहराई है
0: जी जी,
1: इसको बरसों तक मैं बर्फ सी लहराई यही सुनता रहा। जब उर्दू सीखी तो पता चला कि ये बर्फ नहीं बर्क,
0: बर्क
1: है,
0: है,
1: बर्क चमकती हुई बिजली को कहते हैं।
0: अच्छा,
1: तो एक संस्कार मैंने हिंदी उर्दू का फिल्मी गीतों से लिया और उसके बाद लगा कि बहुत खूबसूरत भाषा है। तो गालिब मोमिन मीर बड़े उस्ताद थे और मशक्कत करके मैंने उर्दू स्क्रिप्ट तो नहीं सीख पाया लेकिन उसकी शब्दावली के साथ सांगोपांग और घनिष्ठ परिचय मेरा रहा। और आज भी मैं बहुत विनम्रता से उसके बाद से आता हूँ क्योंकि नुक्ते से बहुत डर लगता है।
0: अच्छा,
1: हमारे किशोरीदास वाजपेयी ने किताब लिखी हिंदी शब्दानुशासन, उन्होंने कह दिया हिंदी वालों को कि आप नुक्ता मत लगाओ क्योंकि नुक्ते से क्या होता है कि उर्दू में बहुत फर्क पड़ता है, खुदा में और जुदा में ऊपर नीचे नुक्ते का ही फर्क है
0: जी।
1: तो यह मुश्किल है। उर्दू जबान से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत पढ़ता हूँ मैं देवनागरी लिपि में।
0: तो मालचंद जी तिवाड़ी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने साहित्यिक अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। शुक्रिया नमामि जी।
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर की प्रस्तुति थी और अब इजाजत दीजिए अपने साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य को।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता वरिष्ठ साहित्यकार मालचंद तिवाड़ी से डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य की बातचीत। प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन था श्री अमित सिंह का। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर। रात्रि के 9:53 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत।

भूपेंद्र सिंह की आवाज़ के साथ ही सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10 बजने को है। लीजिए अब आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनिएगा आपनो राजस्थान।

राम राम सा घणी खमा राजस्थानी संस्कृति और राजस्थान रा लोक संगीत से रचिया बसिया कार्यक्रम आपनो राजस्थान लेर हाजिर है आपरी रेडियो साथी बीना बाई सा आकाशवाणी उदयपुर री आड़ियो यो नजरानो आप ताई पोगी रियो। आज इन कार्यक्रम ने आपा नाम दीदो है नवरस रा रंग राजस्थान रे संग जी में बाता होसी नवरस में रंगी राजस्थानी लोक संस्कृति री लोक संगीत और नवरस्या से जुड़ी राजस्थान री महान विभूतियां री राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान रंग रीत संगीत और भावना री धरती भारत री प्राचीन परंपरा में भरत मुनि रा नाट्य शास्त्र में वर्णन भी हो नवरसारो ई नवरस मानव जीवन रा नौ भाव बतावे है श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत रस नवरस किताबा में छपिया मात्र शब्द कोनी राजस्थान रा जन जीवन में ई नवरस इया धड़के ज्यों हर श्वास पे कालजो कार्यक्रम री उड़ी करा श्रृंगार रस्यो श्रृंगार रस ने रसारो राजा मानियो गयो है यो प्रेम नेह ममता मिलन और विरहरी भावना से सजायो जावे है राजस्थानी लोक संस्कृति में श्रृंगार पग पग पर झलके है पहरावो हाथारी मेहंदी माथेरो बोड़लो के सोला सिंगार लोक गीतारी मिठास और ढोला मारूरी अमर प्रेम गाथा ई सब श्रृंगार रसरा सुंदर रूप है प्रेम पगियो श्रृंगार जत भक्ति सु मिलियो तुम्हाने मीरा बाई री ओलु आई कहो कुसुम्बल साड़ी रंगावा कहो तो भगवा भेस भक्ति में भी भक्ति रो श्रृंगार काना रे प्रेम में पावली मीरा प्रेम री सबसे ऊंची पंक्ति चढ़ी ने गावे है।

दूजो रस है हास्य रस। राजस्थान रो लोक जीवन इनरी भौगोलिक स्थिति रे चालता थोड़ोक दोरो है। हंसी मजाक रोजी बाता में घुली मिली है। जिनसो इन दोरा जीवन में भी जीवन जीने रो चाव उछाव बढ़ियो रेवे। तेराणी जेठाणी देवर भुजाई ननद भाभी इनरी नोक झोंक कुटुंब में सहज सरल रूप से झलके है। हास्य रस ने राजस्थान माए निरखा तो जाण्या पिछाणिया राजस्थान रा नग स्यु चमकता साहित्यकार विजय दान देथा बिज्जी ने याद करा। जिनरी कलम स्यु निकली केवणिया लोक जीवन रे हास्य विनोद रे रंग

तीजो रस करुण रस संवेदना त्याग और समर्पण रो प्रतीक राजस्थान रो इतिहास त्याग समर्पण री केवड़िया सो भरियो पड़ियो है पग पग पर देश रक्षा री खातिर स्वाभिमान री खातिर स्वामी भक्ति री खातिर बलिदाना री गाथा आपा सुनता आया हा इन पूरा संसार में मारे चित्तौड़गढ़ री धरती गर्व करे इन बात पे कि अठे जो बलिदान भी हो विश्व बड़ो कोई बलिदान नहीं हो सके और करुणारी पुकार सिउ छाती फाटे है नाम याद आवे वीर धाय पन्नारो आपनो पूत सुलादियो बनवीर री तलवार तले मेवाड़ रो उत्तराधिकारी बचावन खातिर धन्य है इणसी धाय धन्य है इणसी माए।

चौथे रस यूं तो राजस्थान री माटी यूं घुली मिली जिया पानी में शक्कर घुल जावे। हाँ सा ठीक पिछाणिया, बात वीर रसरी होसी। महाराणा प्रताप और उनरा वंशज मेवाड़ री आन बचावण खातिर कितरा दुख सहया, पण माए जेड़ी माटी ने आज भी नहीं आवण दी। राजपुताना री धरती सिर झुकावे जठे प्रेम मिले, और सीस कटावे जठे बात स्वाभिमान री आवे।

राजस्थानी धरती कदेई अन्याय रे सामने नहीं झुकी। अन्याय रे सामने उठे लो स्वर रौद्र रस है। धर्म री रक्षा खातर वीर रौद्र

रूप धारण करे अठे रौद्र रस्री अनगिनत सेनानिया मिले है रणभूमि में वीरारो उछाह बेरी सामे निर्भर उबो रेणो अर मायड़ माटीरी रक्षा खातिर खुद ने न्योछावर कर देनो ई रौद्र रसरो सजीव रूप है। याद करा वीर दुर्गा दास ने जो अन्याय रे सामे कदी नहीं झुकियो और इतिहास में नाम अमर कर गयो।

छठो रस है भयानक रस, यो केवल डर कोनी बल्कि डर पे जीत रो प्रतीक है। भयानक रस भय और आशंकारी अनुभूति जगावे है। जद अंधियारी रात वे सुनो जंगल वे रणभूमि में चारों मेर सुनसान और संकटरा बादल माथे मंडरावे, जद हिवड़े माए भय रो भाव जागे, ईसा समय में भयानक रस डर रो नी बल्कि हिम्मत और धीरज सु संकट रो आमो करण री प्रेरणा देवे है। जीवन में आड़ो बखत आवे जद धीरज रो हाथ पकड़ हिम्मत सु डट्यो रेवा में ही वीरता है। वीर तेजाजी री वीरता इन रस री याद दिलावे है।

घड़ी होवे और सुंदरता मिटाई जावे जद जन्म लेवे विभत्स रस। यो रस माने समाज में फैली कुरीतियां बुराइयां और पाप सो दूर रहनो सिखावे है। समाज में फैलिया अंधविश्वास घृणा और अरुचि रो भाव जगावे है। यो रस केवल घृणा उपजावा खातिर नहीं है बल्कि इनने दूर कर स्वच्छता और सदाचारी राह अपनावारी प्रेरणा देवे है।

और आठवो रस है अद्भुत रस। यो रस तो राजस्थान री हवा में महके है। राजस्थान सौंदर्य पावणारे मनुहार री परंपरा अठेरो पहरावो खाणो पीणो लोक संगीत लोक कला लोक संस्कृति अनोखी अनूठी और अद्भुत है। अठेरा वाद्य यंत्र भी अनूठा इनरी महिमा रो गुणगान आखा संसार तक पुगायो। अठेरा जन्मिया महान अध्येता कोमल कोठारी सा रावण हत्तो कामायचा मोरचंग अलगोजा भपंग खड़ताल अणाने कोई नहीं ओळखतो पहला अभे पूरो संसार अणारी ओळखाण करे है।

पर नमो रस शांत रस इनने समझणो वे तो थारी रात निरखो के मेवाड़ री झीला सू शांति सू बैठने बाता करो प्रेम सू बाता करो मन ने शांति मिलसी और यो सब नी कर सको तो दादू दयाल री बाणी सुनो।

पर नमो रस शांत रस इनने समझणो वे तो थारी रात निरखो के मेवाड़ री झीला स्यू शांति सु बैठने बाता करो प्रेम स्यू बाता करो मन ने शांति मिलसी और यो सब नी कर सको तो दादू दयाल री बाणी सुनो।

मारा वाला श्रोतागण, ई नवरस माणे सिखावे है कि जीवन एक रंग रो कोनी। यो जीवन अनेक भात भात्री भावना रो अनूठो संगम है। राजस्थान री लोक संस्कृति और लोक संगीत इन भावना ने पीढ़ी दर पीढ़ी संजोता आया है। आवो आपा सगला मिलने इन थाती ने आवा वाली पीढ़ियां ताई पुगावा। इन अरज अर सर्व सुखरी घनी शुभकामना वालारे आज रा आपना राजस्थान कार्यक्रम सु आज्ञा दिराओ आपरी रेडियो साथी बीना बाईसा ने। फेर मिलस्या। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे आपनों राजस्थान, जिसे प्रसारित किया जा रहा था हमारे जयपुर केंद्र से आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, भी रात्रि के 10:58 हुए हैं। कुछ ही समय पश्चात हमारे दिल्ली केंद्र से होगा प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच

0: भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।